0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आपके साथ रहेंगी भावना नैयर। सुबह 7:02 पर आप सुनेंगे संजीव श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप दिल्ली जगत की खबरों का आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सुनेंगे बेहतरीन गीत। सुबह 8:02 पर भावना नैयर आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:02 पर आप सुनेंगे संजीव श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें आप नए और पुराने गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 10:02 पर निहारिका भुवानिया आपके लिए लेकर आएंगे अंग्रेजी कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर। सुबह 11:02 पर आप सुनेंगे बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड जगत की खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में, जिसमें आप सुनेंगे बेहतरीन गाने। और दोपहर 12:02 पर निहारिका भुवानी आपके लिए लेकर आएंगी अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल। दोपहर 1:02 पर बबीता त्रिपाठी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय रहेगा आस्क द चॉकलेटर। इसमें अतिथि होंगे स्मृति भाटिया। दोपहर 2:02 पर आप सुनेंगे प्रियंका मामगिन के साथ कार्यक्रम आशियाना, जिसमें आज का विषय है सुरक्षित बचपन सशक्त कल। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर गीतांजलि सोनी के साथ, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा। इसमें आज का विषय रहेगा ओल्ड एज डेंटल केयर और एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर सुनीता गुप्ता। शाम 4:02 पर प्रियंका मामगिन आपके लिए लेकर आएंगी युवाओं का कार्यक्रम अल्फा जैन। शाम 5:02 पर दिल्ली शहर की खबरों से आप रूबरू हो सकेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स में, गीतांजलि सोनी इसमें आपके साथ रहेंगे। शाम 6:02 पर मुक्ति सैनी आपके लिए लाएंगी कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें श्रोता अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। शाम 7:02 पर आप सुनेंगे लिपिका दास के साथ कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक यू आस्क फॉर इट। रात्रि 8:02 पर आप सुनेंगे मुक्ति सैनी के साथ कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें नॉनस्टॉप डांस हिट्स का आप आनंद ले सकते हैं। रात्रि 9:02 पर विनीता बेदी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम आपकी याद आती रही, इसमें आप 90s के गीतों का आनंद ले सकते हैं। रात्रि 10:02 पर लिपिका दास आपके लिए लेकर आएंगी अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक, इसमें आप म्यूजिक मिक्स हिट सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं डिफरेंट जेनरेस के साथ। और रात्रि 11:02 पर सजेगी गजलों की खूबसूरत सी महफिल रंगे महफिल, जिसमें आज रहेंगे आपके साथ विनीता बेदी। तो ये थे आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉ जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा है कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। खेल की खबरों में, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसी के साथ ये थे मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर 15 सितंबर 2026 मंगलवार का दिन 102.6 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दरवाजे खोल दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए, ठंडी सी हवा को अंदर आने दीजिए, क्योंकि सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और हर सुबह अपने साथ बिल्कुल एक खाली कैनवस लेकर आती है जिस पर रंग भरने हैं आपको। और आज कौन सा रंग भरना है ये भी कहीं ना कहीं आप ही को ही तय करना है। हो सकता है आज का रंग थोड़ा पीला हो, उम्मीद का, थोड़ा हरा नई शुरुआत का, थोड़ा नीला सुकून का, और थोड़ा सा गुलाबी क्यों ना हो जाए खुश रहने का। सितंबर का आधा महीना बीत चुका है मेरे दोस्त, और देखिए साल हमें चुपचाप आगे लेकर जा रहा है। कल बप्पा घर आए होंगे, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगे गए होंगे। विघ्नहर्ता सुखकर्ता को आपने अपने घर में बड़े प्यार से विराजमान किया होगा, तो आज की सुबह भी

अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं। आज बातें होंगी आपकी, साथ में मेरी भी। कुछ बातें शायद आपसे जुड़ी होंगी, कुछ मेरी तरफ से होंगी, और इन बातों के बीच हमारे गानों का हम सफर लगातार हमारे साथ रहेगा। आज बातें आपकी मेरे जीवन से होंगी, पॉजिटिविटी की होंगी, सकारात्मकता की होंगी, एक ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत की होंगी, हमारे आपके नजरिए की होंगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोगों को उनके बारे में जाने बिना हम जान लेते हैं, है ना? हुआ है कभी कभी आपके साथ? गाना सुनते हैं, फिर बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, वो बातें भी करेंगे और साथ साथ मेरे आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात मेरे यानी भावना के साथ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे पता है आप बिस्तर छोड़ चुके हैं और अपने साथ 102.6 FM का साथ शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सुबह की एक बेहतरीन शुरुआत और कहीं नहीं होती, बस हमारे साथ यानी कि FM रेनबो के साथ होती है। और आज जब हम कह रहे हैं कि एक खूबसूरत सी शुरुआत आपने करनी है, तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे लिए और इस ब्यूटीफुल डे की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि अगर सुबह सुबह मुस्कुरा लेना तो पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है, तो क्यों ना फिर मुस्कुरा लिया जाए। और जिस भी आराध्य को आप मानते हैं उसको याद करके एक खूबसूरत दिन की शुरुआत कर लीजिए और सोचिए कि आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और दिन को और बेहतर बना सकती हूँ और प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। या फिर अगर आप व्यायाम कर रहे हैं इस समय और हमें आपका साथ मिल रहा है, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ। क्या होता है कि कभी कभी ना किसी को पहली बार देखकर हम अपने मन में एक राय बना लेते हैं, होता है आपके साथ ऐसा? होता है, हम सब ह्यूमंस हैं, ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं पहली नज़र में कहीं ना कहीं दिमाग में आने लगता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, या फिर अगर थोड़ी देर बात कर ले तो कहीं ना कहीं हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा है या ये ऐसी है। हाँ, बिल्कुल बनी होगी ना। तो क्या होता है कि कभी कोई कम बोलता है तो हम कह देते हैं बड़ा एटीट्यूड है इसमें तो, या कोई बहुत बोलता है तो हम कहते हैं बहुत लाउड है, बहुत दिखावा कर रहा है। कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है तो हम कहते हैं ये तो बहुत ज़िद्दी है। और कोई हर बात पर मुस्कुरा दे तो हम कहते हैं इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कह दो। तो कभी कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? सोचकर देखिए, है ना। कभी कभी मैं सोचने पर मजबूर कर देती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा और आपका साथ है, और ये टाइम पता है बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मी टाइम होता है और मी टाइम बहुत कम समय के लिए मिलता है दिन में। तो मेरे दोस्त, ये बड़ा अच्छा समय है, यहाँ हम बहुत कुछ अपने बारे में सोच सकते हैं, और कहीं कभी नज़रिया हमारा शायद सही नहीं जा रहा, जो हमें कभी पता नहीं चलता, उसको भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंड तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। तो कितनी जल्दी हम लोगों को छोटे छोटे लेबल्स दे देते हैं, है ना, इन्हीं लेबल्स में बांध देते हैं और फिर अपने मन में वही धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। लेकिन बताऊँ एक दिलचस्प बात, हमने उस इंसान को देखा कितना है, उसके बारे में फैसला इतना बड़ा कर लिया, मतलब अभी तो मुलाकात ही हुई थी, अभी तो बस जानना शुरू ही किया था कि मन में शुरू हो गया कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे होगा, ऐसा होगा। और कभी कभी हम अपने मन में कुछ ऐसी बातें सामने वाले व्यक्ति के लिए कर लेते हैं या सोच लेते हैं, जो बात में वो व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट निकलता है और हमें लगता है अरे मैं तो इसके बारे में ये सोचती थी या मैं उसके बारे में ये सोचता था, है ना। तो अपने पैमाने पर क्या हम परखने लगते हैं लोगों को बहुत जल्दी, और शायद ना बात सिर्फ दूसरों

नहीं है। कभी कभी हमें अपने अनुभवों और पुराने अनुभवों का चश्मा उतार कर ना सामने वाले को देखना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी है और कहानी का वो हिस्सा शायद हमें कभी दिखाई नहीं देता जहाँ से उसका व्यवहार शुरू हुआ हो। होता है ना ऐसा कभी कभी, गाना सुनते हैं और उसके बाद और बहुत सारी बातें करते हैं। सुनते रहिए 102.6 FM। सुप्रभात।

आप सुन रहे 102.6 FM सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार का दिन है और शुभकामनाएं तो इसी की कि आपका दिन मंगल में हो और हम सभी का दिन मंगल में हो। और मंगल कामना तो हम तभी करते हैं ना कि जब हम चाहते हैं कि हम अपने दिन में कुछ ऐसा करें जो हमारे दिन को और बेहतर बनाए, कल से और बेहतर। क्योंकि हम हर सुबह जब कहते हैं कि नई रोशनी लेकर आती है, अंधेरे के बाद जब नई रोशनी आती है तो वो नई रोशनी, नई किरण, नई आशा और नई उम्मीदें भी तो लेकर आती है। और ज़िंदगी में हम वो नए कलेवर भी तो भरते हैं, तो नए कलेवर के साथ अपने दिन की शुरुआत।

कीजिए। और आज हम बहुत छोटी सी लेकिन शायद तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, आपके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, कुछ मेरे कुछ आपके, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें कर रहे हैं। और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम कह रहे हैं कि शायद हमारे नज़रिए को बदल देता है सामने वाले के लिए, और हम पहली ही मुलाकात में उसके बारे में कुछ सोच लेते हैं और बाद में चलता है पता कि ये सोच जो मैं कर रही थी या कर रहा था ये तो बिल्कुल गलत निकली। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। मसलन पता है कैसे कि आपको कोई व्यक्ति बहुत एटीट्यूड वाला लग रहा है, अरे इसमें तो बहुत ईगो है ना, ऐसा लगता है बहुत घमंडी है, बाद में पता चला कि वो तो बस कम बोलता है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसका बिहेवियर है। और हर व्यक्ति अपना का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपने सोचने का नज़रिया होता है। शायद वो आपके जैसे उतना बोलता ना हो, लेकिन उसमें क्या एटीट्यूड हो, ये नज़रिया क्या सही है। आपको लगता है कि वो तो बहुत लापरवाह है, उसकी चीज़ें कभी इधर बिखरी रहती हैं कभी उधर बिखरी रहती हैं, केयरलेस है, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। लेकिन बाद में शायद ये सारी जो हम जजमेंट्स कर रहे थे या परसेप्शंस लेकर चल रहे थे उसके बारे में, वो पता चलता है कि शायद उस दिन उसका दिमाग ही कहीं और था और हमने सोच लिया कि वो तो बहुत लापरवाह है। आपको लगा कि आपकी कोई बात को इग्नोर कर रहा है, सुन नहीं रहा, मतलब आपकी आंखों में आंखें डाल के तो कोई देख रहा है लेकिन शायद आपकी तरफ अटेंशन ही नहीं है, है ना? ऐसा होता है, कई बार होता है। आप कहते हैं अरे आपने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, तो क्या होता है कि बाद में समझ में आता है कि शायद उसने आपकी बात उस तरह से सुनी ही नहीं जिस तरह से शायद आप चाहते थे। यही तो मुश्किल है ना मेरे दोस्त, शायद यही हमारा नज़रिया कुछ गलत शायद हो जाता है, बदल जाता है, होता है ना, सबके साथ होता है, शायद हमें पता ही नहीं चलता, ये शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं। और सुबह से अच्छा समय हो ही नहीं सकता जब इन बातों को हम करें और शायद सोचें, और फिर हमें अपने कुछ पुराने इंसिडेंसेस इवेंट्स याद आएं किसी के लिए, होता है। सोच कर देखिएगा कि हम व्यवहार दिखते हैं परिस्थिति नहीं, कि उसकी सिचुएशन क्या है सामने वाले की, और फिर उस एक व्यवहार से पूरी पर्सनालिटी को हम अपने दिमाग में गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। आज बस इतना से एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने साथ, है ना? और ये काम के बीच में कभी भी आपको लगे कि अगर किसी का कोई व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे तो तुरंत मन में ना फैसला देने से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बता रही हूं आपको, और मेरी बात आपको दिन में कभी भी याद आ सकती है। यही तो बात है कि जब हम बातें करते हैं ना तो कभी वो क्लिक कर जाती है, अरे उसने ये कहा था, हाँ तो क्या मैं उस इंसान की पूरी कहानी जानता हूँ या जानती हूँ, मैं तो अभी ही मिला हूँ, कुछ समय हुआ ही नहीं मुझे तो। अगर जवाब में नहीं आए ना तो शायद फैसला थोड़ा रोक देना चाहिए। और अब एक ऐसा गाना जो आपके सुबह को और थोड़ा हल्का कर देगा और सुकून भरा कर देगा और उसमें और पीस ले आएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद है, सुनिए आप भी। सुप्रभात, आप सुन रहे 102.6 FM मेरे साथ यानी भावना के साथ। मंगलवार का दिन है, इसी कामना के साथ कि हम सबके लिए ये मंगलवार का दिन मंगलमय हो।

0: आप सुन रहे हैं 102.6 FM, कार्यक्रम है सुप्रभात। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब लौटूंगी तो एक कहानी आपको सुनानी है और कहानी के पात्र हैं मीरा और कबीर। क्या है इन दोनों के बीच की कहानी और क्या उन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचा, ये सब इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हो, बने रहिए 102.6 FM के साथ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी बातें, और जो दिन की शुरुआत हो चुकी है ना उसे आइए और ब्यूटीफुल बनाते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

देखा लौट आई ना इतनी फटाफट, जैसा आपको बोला था अपने वायदे के अनुसार। और जब मैं आपको जा रही थी म्यूजिकल ब्रेक से पहले, तब मैं आपको कह रही थी कि कहानी आपको सुनाऊंगी, सो इट्स अ टाइम टू टेल यू अ स्टोरी, स्टोरी अबाउट मीरा एंड कबीर। मीरा और कबीर की ये कहानी है, सुनाती हूँ आपको। मीरा के ऑफिस में एक नया कोलीग आता है, नाम है उसका कबीर। पहले दिन से कबीर जो है ना बहुत कम बोलता है, मीटिंग में चुप, लंच में अकेला, किसी ने कुछ पूछा तो छोटा सा जवाब, और कभी कभी उससे बात करे तो बस सिर हिला के ना नॉट कर देता है, हाँ या ना। अब ऑफिस में लोगों ने अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दी। कबीर नया नया है और लोगों की नजरें उसी पर है। जब कोई नया एम्प्लॉय आता है या कोई नया सदस्य आता है घर पर भी, तो हमारा जो एक जजमेंट का चश्मा है ना, वो अपनी आप चढ़ जाता है हमारे आंखों के ऊपर और हम उसे परखना शुरू कर देते हैं, चाहे अनचाहे हो जाता है ऐसा। तो क्या हुआ कि कबीर के लिए भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कम बोलता था, ज़्यादा लोगों से गेट अलॉन्ग नहीं करता था, कम बात करता था। तो कम बात करते हैं तो फिर लोगों को लगने लगता है कि अरे कबीर में तो बड़ा एटीट्यूड है, किसी से घुलता मिलता ही नहीं, शायद ना खुद को बहुत बड़ा समझता होगा। मीरा ने भी कुछ यही सोचा, मुझसे तो बात करने की जरूरत भी नहीं समझता कबीर। फिर क्या होता है कि एक दिन प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी होती है, समय अनुसार ये प्रेजेंटेशन देनी होती है। तैयारी पूरी करके ये प्रेजेंटेशन बनाकर जो सारे अधिकारी हैं, मैनेजमेंट हैं, उसके सामने प्रेजेंटेशन देनी है मीरा को। तो मीरा की प्रेजेंटेशन की तैयारी ना पूरी नहीं होती। अब मीरा क्या करे, मीरा परेशान कि मेरी तो प्रेजेंटेशन पूरी हुई ही नहीं। क्या होता है कि कबीर उसके पास आता है, कबीर उससे कहता है, अगर चाहो तो मीरा मैं तुम्हारी स्लाइड्स बना दूं। मीरा हैरान रह जाती है। दोनों ने करीब आधे घंटे काम किया और काम खत्म होने के बाद मीरा ने पहली बार उससे पूछा, आप ऑफिस में इतना क्वाइट क्यों रहते हैं कबीर? कबीर मुस्कुराया और उसने कहा, वही इस पूरी कहानी की असली बात है मेरे दोस्त, सुनोगे? कबीर ने कहा कि मैं क्वाइट हूं, रूड नहीं हूं, बस इतनी सी बात, प्रेजेंटेशन बन भी जाती है और उसमें खूब सारी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन उस एक सेंटेंस, उस एक वाक्य ने मीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया अंदर ही अंदर, जो वो कबीर के बारे में धारणा बनाकर बैठी थी कि हमने कबीर को जाना ही नहीं था, बहुत ही कम जाना था, और या कितना ही जाना था, शायद बस 5%, और उसी से हमने पूरी कबीर की पर्सनालिटी को डिफाइन कर दिया था और फैसला 100% कर लिया था उसके बारे में। सोचा 5%, फैसला 100%। लेकिन कहानी यहां पूरी नहीं होती मेरे दोस्त, सुनते जाइए 102.6 FM, कहानी अभी अधूरी है।

तो मीरा, ये तूने क्या किया कबीर के लिए, क्या सोच लिया कबीर के बारे में? कबीर तो आपके लिए इतना हेल्पफुल, जब आपसे बातें करने आया तो आपको लगा कि मैंने तो बहुत कुछ उसके बारे में सोच लिया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कहानी का दूसरा हिस्सा भी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी में आगे क्या होता है? कहानी में आगे ये होता है कि कुछ दिन बाद मीरा और कबीर की दोस्ती बढ़ने लगती है। एक दिन मीरा मजाक में कबीर को कह देती है, आपको पता है कबीर, ऑफिस में आपके बारे में क्या क्या इम्प्रेशन है, लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। कबीर हंसने लगा। कबीर ने कहा, मुझे पता है। मीरा ने कहा, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी लोगों के बारे में ऐसे ही सोचता हूं। मीरा चुप हो गई। कबीर ने कहा, मैंने भी लोगों को जल्दी जज किया है, लेकिन एक समय बाद समझ आया कि हम सामने वाले का बिहेवियर ना देखते हैं, उसकी वजह नहीं देखते। यही हो जाता है शायद, और शायद हमें पता ही नहीं चलता। फिर उसने एक बात कही मीरा को कहा उसने कि किसी इंसान का एक दिन देखकर ना उसकी पूरी पर्सनालिटी मत बना देना। शायद मीरा से यही हुआ था। मीरा को लगने लगा था कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है, वो चुप रहता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कबीर तो बहुत फ्रेंडली था, बस कुछ समय देने की ज़रूरत थी। कभी कभी लोगों को खुलने के लिए भी समय लगता है। एक बारी में आपसे आके फ्रेंडशिप्स कर लें, आपसे रिश्ते बना लें, ये शायद आसान नहीं है सभी के लिए। सबकी अपनी पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर है, लेकिन उनके बारे में ये सोच लेना कि सामने वाला व्यक्ति शायद कैसा है, और बहुत जल्दी सोच लेना, इस पर आप गौर कर सकते हैं मेरे दोस्त। कितनी सिंपल सी बात है ना, और आज हम सिंपल सी बातें कर रहे हैं। आपकी मेरी जीवन की बातें होती हैं ये, और जब दिन की शुरुआत होती है तो ये बहुत ही साधारण सी, सरल सी दिखने वाली बातें आपके शायद दिल को छू जाती हैं। मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस बांट लूँ। क्योंकि क्या होता है कि कभी एक इंसान गलती तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है, तो आपकी सोच भी शायद क्या वैसी हो सकती है। हम वो एक्सपीरियंसेस तो शेयर कर ही सकते हैं, और इससे अच्छा मीडियम हो ही कह सकता है 102.6 FM के साथ, क्योंकि मेरा आपका साथ जो रहता है यहाँ पे एक घंटे के लिए। तो किसी का ना आज दिन ख़राब हो सकता है, शायद इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। किसी का मूड भी तो ख़राब हो सकता है, शायद जब वो घर से निकला हो शायद उसका मूड उतना ठीक ना हो, तो वो ऑफिस आके या फिर कहीं पे भी आके, बिजनेस में आके, अपनी दुकान पे आके, स्कूल कॉलेज में आके, शायद उस तरीके से आपसे बात ना कर रहा हो। कोई परेशान भी हो सकता है, किसी के घर पे शायद कोई ठीक नहीं है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो शायद कोई परेशान होता है, तो आपसे, आप जिस तरीके से बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं शायद वो ना कर रहा हो। कोई इंट्रोवर्ट भी तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि खुलने में टाइम लगता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो कोई बस अपने तरीके से जीना चाहता है, अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ। और हो सकता है मेरे दोस्त की जिसे हम ना एटीट्यूड समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी ही हो, जिसे हम इग्नोरेंस समझ रहे हो वो उसकी परेशानी हो, और जिसे हम एरोगेंस समझ रहे हैं ना शायद वो सिर्फ उसकी साइलेंस हो। इसलिए ना अगली बार आपको कोई वैसा ना लगे जैसा आप चाहते हो, तो एक पल रुकिएगा, शायद वो वैसा है ही नहीं जैसा आपने उसके बारे में सोच लिया है। हो जाता है ना ऐसा, बस इसी सोच को तो बदलने की ज़रूरत है। तो अगली बार कभी ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इन बातों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, शायद पर्सपेक्टिव बदल जाए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी मेरे साथ भावना के साथ, और एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो चुकी है। और हम बात कर रहे थे एक ऐसे इनविजिबल मेजरिंग स्केल की जो शायद हम सबके पास है, हमें पता नहीं होता शायद, और हम उससे सामने वाले को नापते रहते हैं। मैं होता तो ऐसा करता, मैं होती तो ऐसा नहीं बोलती, मुझे तो ये बात समझ आती है, इतना सिंपल तो है, यही सारी बातें आती रहती है ना मन में, बताते नहीं हैं हम, एक्सप्रेस भी नहीं करते, लेकिन दिमाग घूमता रहता है। जो चीज़ आपके लिए सिंपल है ना, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी उतनी ही सिंपल हो। मेरे दोस्त, हर इंसान अलग जगह से आता है, उसके अनुभव अलग हो सकते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, शायद उसके डर भी अलग हो, उसकी प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकताएँ भी अलग हो सकती हैं, उसकी खुशियाँ अलग हो सकती हैं। तो ये आप इनविजिबल मेजरिंग स्केल अपने साथ लेकर फिर क्यों घूमते रहते हैं? तो फिर एक ही पैमाने में सबको कैसे आप नाप सकते हैं? और ये बात रिलेशनशिप्स में भी बहुत काम आती है। ये सिर्फ वो नहीं है कि हम स्ट्रेंजर से मिले और हमने उसको अपने मेजरिंग स्केल से नाप दिया, अपने जजमेंट के चश्मे से नाप दिया। कभी कोई दोस्त आपका फ़ोन नहीं उठाता ना, तो आप सोचते हैं नाराज़ है। कभी कोई मैसेज का जवाब देर से आता है तो आप सोचते हैं बड़ा एटीट्यूड है इसमें। कभी कोई परिवार में कम बोलता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी पूछा सब ठीक है? क्या आपने उससे जाके पूछा आप ठीक हो, आपके साथ सब ठीक चल रहा है? लेकिन आपने तो पहले से ही अपने अंदर परसेप्शंस और अपने अंदर उसके बारे में धारणाएं बना ली, क्योंकि शायद वो आपके अनुसार, आप

कि एक्सपेक्टेशंस के अनुसार शायद आपसे वो व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ भी तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं ना, बहुत सारी उसकी भी पर्सनालिटी इश्यूज हो सकते हैं, शायद उसे टाइम लग सकता है। बस इतना सा सवाल कई गलत फहमियों को शुरू करने से पहले ही खत्म कर सकता है और रिलेशनशिप्स को और स्ट्रांग बना सकता है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। इट्स अ ट्यूजडे मॉर्निंग।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: और इसी के साथ वक्त चला है मेरे जाने का, लेकिन मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं संजीव, और आपकी मॉर्निंग और आपकी ट्यूसडे को और भी एनर्जेटिक और रिजुविनेट करने के लिए संजीव गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेके आ चुके हैं। और एक घंटे के बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का 2.0 वर्जन मैं लेकर आऊंगी। बने रही आप 102.6 FM के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स एंड हैव अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। बहुत खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपए द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर शुल्क नहीं लगा सकते। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से शुरू होने जा रहा है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय और समयबद्ध बताया है। उन्होंने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। झारखंड में सीआईडी ने कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 यानी 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी से लैस होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एशियाई ट्रैप चैंपियनशिप निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7:00 से खेला जाएगा। तो ये थे सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR की।

जी हाँ नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। भगवान पर विश्वास रखने से आपको खुद पर विश्वास करने में सहायता मिलेगी जो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, है ना। तो उस परम शक्ति पर जरूर विश्वास कीजिए जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो आत्मविश्वास, वो संकल्प हमारी संकल्प शक्ति को भी बढ़ा देता है, और जब उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो संकल्प से सिद्धि अवश्य होती है। तो सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 7 बजे से 8 बजे तक आपके साथ मैं रहूंगा, और उसके बाद 8 बजे उसके सेकंड पार्ट में, जैसा कि मेरी दोस्त ने बताया, वो अभी आपके पास आएंगी 8 से 9 बजे तक, और 9 बजे मैं रहूंगा प्रोग्राम जी दिल के तराने, गाने नए पुराने के साथ आपके साथ। लेकिन फिलहाल उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को, उस परम पिता परमेश्वर को नमन के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और ये है आपका अपना प्रोग्राम जी, जिसको हम सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। और जैसा कि मैंने कहा, वक्त हो गया है 7:12 की तरफ। सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है, 11 मिनट पूरे हो चुके हैं और वक्त की ये रफ्तार थमती नहीं है, बस दौड़ती जाती है। हमें इस रफ्तार को पकड़ना होता है, थामना होता है ना, लेकिन ये रफ्तार थमती नहीं है। लेकिन जब ये रफ्तार थमती है तो इतिहास बन जाती है ना। इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी बातें दर्ज हैं जो हम सब के उन महान, जिसे कहते हैं, कर्मों को दर्शाती हैं, जिसमें हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो हमसे पहले जो व्यक्तित्व रहे, हमसे पहले जो पीढ़ियाँ रहीं, उन्होंने जो विशेष कार्य किए, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें उसमें दर्ज हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें अच्छी बातें दर्ज कराते हैं या बुरी बातें। हम एक और बहुत बढ़िया से नगमा आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम हैं म्यूज़िकल योर्स, और उसके बाद आपको बताएंगे इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें और आज किन खास व्यक्तित्व ने जन्म लिया था और क्या क्या अपने उस विशेष क्षेत्र में किया, इसकी भी थोड़ी जानकारी देंगे। लेकिन पहले ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ल्यूसिड सा नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाश।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो दिल से दिल तक, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। वक्त हो गया है 7:20। सेकंड की सुई को मैं बात नहीं करता क्योंकि तेजी से बढ़ती है वो वैसे 20 सेकंड 21 सेकंड 22 24 25 लगातार बढ़ रही है। मैं उसके साथ दौड़ता हूँ लेकिन वो कभी कभी मुझसे आगे निकलता है, तो मैं कभी कभी कोशिश ये करता हूँ कि मैं वक्त से आगे निकल जाऊँ, लेकिन वक्त है कि मानता नहीं है ना और ये वक्त इतिहास के पन्नों में भी जुड़ा है, जहाँ हमारे जो इतिहास की बातें हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों ने विशेष दिन पर विशेष बातें की और उन विशेष जिनसे उनसे मिली जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का, प्रेरणा देने का काम करती हैं। जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो आज है 15 सितंबर 2026, लेकिन 15 सितंबर के दिन बहुत सारी खास बातें हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, तो कुछ बातों पर हम नज़र डाल देते हैं आज के दिन। भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के दिन। जहां इसके अलावा 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा यानी दूरदर्शन का शुभारंभ एक परीक्षण के तौर पर हुआ था आज के दिन, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे आपको दूरदर्शन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 सितंबर 1971 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। जी हां, 15 सितंबर 2008 को अमेरिकी वित्तीय कंपनी लीमैन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया था, जिससे वैश्विक मंदी आई थी आज के दिन। कुछ खास व्यक्तित्व भी आज के दिन जिसे कहते हैं उनका जन्म हुआ, जिसमें से मैंने पहले आपको बताया सर एम विश्वेश्वरैया, भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न सम्मान राजनेता। इसके अलावा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ 1876 में आज के दिन, बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार, और सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, अब आपको बताएं कि इसके अलावा 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली मुंबई, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, कि बंदरगाह पर पहुंचा था आज के दिन। तो बहुत सारी खास बातें हैं और बहुत सारे इतिहास के पन्नों में छुपे वो राज हैं जिसको हम खोल सकते हैं, लेकिन वक्त ये कहता है कि आपको एक गीत सुनाया जाए। और हम ये चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ विशेष करते हैं तो शुरुआत आज से कर दीजिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है और हो सकता है कि आपका वो किया हुआ वो जो कर्म है, बहुत उन्नत कार्य है, वो जो उत्कृष्ट कार्य है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और आने वाली पीढ़ियां एक दिन आपको याद करें, जैसे आज हम इन महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वेलकम बैक। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संचू। और आज एक बहुत ही खास दिवस है, बिल्कुल, और एक ऐसा दिवस जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, आज है दूरदर्शन डे, यानी दूरदर्शन दिवस। हम सबका प्यारा दूरदर्शन, हम सबका प्यारा दूरदर्शन जिसको हम बचपन से अपने दिल में, दिमाग में बसा कर रखे हैं, है ना। याद होगा आपको सुबह सुबह वो चलने वाली सिग्नेचर ट्यून, जब दूरदर्शन की बस्ती थी तो हम कैसे अपनी चाय की प्याले लेकर सामने बैठ जाया करते थे सुबह सुबह की वो कार्यक्रम दूरदर्शन के। बस ये समझिए, उस ज़माने में जब एंटीना लगा होता था छत पर, उसको उसके माध्यम से जो सिग्नल्स आते थे, हम दूरदर्शन देखा करते थे। आज दूरदर्शन दिवस के मौके पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन, जिसका अर्थ है दूर दृष्टि, संक्षेप में हम इसे डीडी कहते हैं, भारत का सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारक और भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर 1959 को स्थापित ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्वामित्व में है और प्रसार भारती के दो विभागों में से एक है। स्टूडियो और ट्रांसमीटर अवसंरचना के मामले में भारत के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक दूरदर्शन महानगरीय और क्षेत्रीय भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है। आप सब जानते हैं डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटर के माध्यम से भी इसका प्रसारण होता है। 15 सितंबर 1969 को दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारक के तौर पर मामूली सी शुरुआत के साथ जब इसका शुभारंभ हुआ था तो इसमें एक सिर्फ छोटा सा ट्रांसमीटर और एक अस्थाई स्टूडियो स्थापित किया गया था और

1965 में ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। और बहुत सारे लोगों को ये याद होगा मेरे ख्याल से, जो उस समय की के दौर के हमारे पीढ़ी है, कि जब ये ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में शुरू हुआ, जिसमें प्रतिमा पुरी जी द्वारा पढ़ा जाने वाला 5 मिनट का समाचार बुलेटिन शामिल था। उसके बाद सलमा सुल्तान जी आई 1967 में, जब दूरदर्शन में शामिल हुई, उसके बाद समाचार एंकर बनी गीतांजलि अय्यर, नीति रविंद्रन, रिनी साइमन 1970 के दशक में लोकप्रिय समाचार एंकर थी, कौन उनको भुला सकता है। बिल्कुल। और अब अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो आज इतने व्यापक स्तर पर दूरदर्शन अपनी सेवाएं दे रहा है, और हम यही चाहते हैं कि दूरदर्शन इस तरह, जिस तरह से दूरदर्शन का विस्तार इस वक्त पूरी दुनिया में है, और जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ दूरदर्शन की खबरें, दूरदर्शन के समाचार, दूरदर्शन के कार्यक्रम हम देखते और सुनते हैं, बस ये यूं ही चलते रहें और इसकी उत्कृष्टता यूं ही और आगे निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। सबको, ढेर सारे लोगों को, सबको, आप सबको दूरदर्शन दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी फिलहाल आप सुन रहे हैं मुझे आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, मैं हूं आपका अपना, और ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और हमारा चैनल है म्यूजिकल योर्स। बिल्कुल, हम आपको सुनाते हैं एक से बढ़कर एक नगमे। तो एक और बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत दिल में उतर जाने वाला गीत आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वक्त हो गया है 7:41 की तरफ सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है और हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास व्यक्तित्व की, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और जैसा कि मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुभारंभ में अगर आपने सुना हो तो बताया था आपको कि आज एक बहुत ही खास व्यक्तित्व की बर्थ एनिवर्सरी है। 15 सितंबर 1861 को जन्मे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को आज भी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, उनके सभी चाहने वालों की तरफ से और उन सभी कर्मों के लिए जिन्होंने उन सभी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम उनको समर्पण अर्पित करते हैं जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में हम सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में हमें प्रदान किया। अपने समय के इस बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं वरन विश्व की महान प्रतिभाओं में से गिना जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। बहुत ही सौम्य विचारधारा वाले इंसान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के मुद्देनहल्ली नामक एक स्थान पर हुआ था। अब देखिए ना कि एक बहुत ही साधारण परिवार से जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, निरंतर प्रयास करता है और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाता है और एक दिन अब इस कदर इस उपलब्धि को हासिल करता है कि हम उनके जन्मदिन को आज अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। सैल्यूट है भाई। और हम भी ये चाहते हैं कि हाँ, जो भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, नई पीढ़ी है वो हमारे अगर प्रोग्राम को सुन रही है, हमसे जुड़े जितने भी हमारे चाहने वाले हैं वो अगर हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो भी लिसनर्स हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबसे बस इतना से मन गुजारिश है मेरी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प ज़रूर लें कि हम अगर इस जीवन में आएँ तो कुछ विशेष करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस राष्ट्र में हम जन्मे हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारा एक कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के प्रति हम कितने समर्पित हैं। जिस भूमि में ने हमें जन्म दिया, जिस जननी के साथ हम पल रहे हैं, उस जननी के लिए हम क्या करेंगे, इस पर भी हमें विचार करना होगा और ज़रूर अपने जीवन में एक ऐसा काम करके आगे बढ़ेंगे, जागे जाएंगे कि एक दिन दुनिया हमको याद करेगी। फिलहाल आप हमें सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो एक और बहुत प्यारा नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, 10 मिनट से कम का वक्त रह गया है आपसे मुलाकात का, लेकिन इन 10 मिनट की मुलाकात में भी मैं आपसे दो व्यक्तित्व की बात जरूर करूंगा जो बहुत ही खास हैं। एक 15 सितंबर 1876 को जन्मे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। बिल्कुल आपको बताएं कि 15 सितंबर 1876 को हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में आपका जन्म हुआ। शरदचंद्र अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। शरदचंद्र ने 18 वर्ष की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास की और शरदचंद्र इन्हीं दिनों बासा यानी घर नाम से एक उपन्यास लिख डाला, यानी भूत के पांव पालने में दिखते हैं, है ना। पर ये रचना प्रकाशित नहीं हुई और कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर वे 30 रुपये मासिक के क्लर्क के रूप में वर्तमान म्यांमार यानी वर्मा पहुंच गए और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कथा साहित्य की प्रस्तुति जिस रूप में हुई, लोकप्रियता के तत्व ने उनके पाठकीय आस्वादन में वृद्धि ही की है। हम आपको बताएं कि शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के लिए एक ऐसे भारतीय कथाकार भी हैं जिनकी अधिकांश कालजयी कृतियों पर फिल्में बनी, है ना, और अनेक धारावाहिक और सीरियल भी बने। इनकी कृतियां देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत के साथ तो ये बार बार हुआ। शरदचंद्र जी के कुछ उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में कई बार बनाई गई हैं और 1974 में इनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित एक फिल्म बनी और उसके बाद देवदास को आधार बनाकर देवदास फिल्म का भी निर्माण 3 बार हो चुका है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी लेखनी में कितना जादू और कितना मोहनी रही होगी और किस स्तर से उन्होंने उस उत्कृष्ट साहित्य को अपनी लेखनी से कागज़ के पन्नों पर उन पन्नों पर उतारा पृष्ठों पर कि वो आगे चलकर फिल्मों के रूप में लोगों के सामने आए। नमन करते हैं हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, उनको अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने से, उनके सभी चाहने वालों की तरफ से, उनके सभी सुधी जो पाठक हैं उनकी तरफ से, और आपसे हम ये कहते हैं कि आपके पास भी अगर कोई मौलिक कला है, आपके पास भी अगर कोई अंदर हर किसी के अंदर छिपी हुई एक ऐसी जिसे कहते हैं योग्यता, विशेषता, गुण होता है जिसको वो अपने अंदर भीतर दबा के रखता है, अगर आपके पास वो योग्यता है और उसको आप समझते हैं तो उसको ज़रूर बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आपकी वो योग्यता आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप भी इस श्रेणी में आ सकते हैं, है ना। तो एक और बढ़िया सा नगमा आपके लिए। तनक दिन तुम तनक दिन तुम तनक दिन।

बिल्कुल सर, मैंने पूरे एक घंटे आपसे ताल मिलाई है 7 बजे से 8 बजे तक, और अब 8 बजे से 9 बजे तक भावना नायर बिल्कुल मेरे पीछे हैं, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ 8 से 9 बजे तक आपसे ताल मिलाएंगी, है ना। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और फिलहाल तो हम आपसे यही कहेंगे कि हर हाल में, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई, ज़िंदगी में जिसे कहते हैं कि संघर्ष और सफलताएँ सब एक साथ आती हैं, और हमको बहुत ही जिंदा दिली के साथ उनका सामना करना है। बस फिलहाल इसी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे, और जैसे कहते हैं ना, मस्त रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव को दीजिएगा इजाज़त। अगली मुलाकात आपसे होगी 9 बजे दिल के तराने गाने नए पुराने में। फिलहाल एक ये नगमा आपके लिए, और फिर आती है भावना आपके पास 8 बजे से 9 बजे तक। बाय बाय।

आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। वक्त है 8 बजे। सुबह के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। सरकार ने कहा, बैंक 2000 रुपये तक के यूपीआई लेन देन और रुपये डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क

नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत का अगला दौर शुरू किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय और समयबद्ध बताया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। झारखंड में सीआईडी ने कोचिंग सेंटर संचालक रंजीत कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। ओमान में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर अलगाइया पर हुए हमले को लेकर अमरीका और ईरान एक दूसरे के बयानों पर विवाद कर रहे हैं। यमन के ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नए हमलों की शुरुआत कर दी है। मौसम की खबरों में मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज से 17 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। खेल की खबरों में एशियाई ट्रैप चैंपियनशिप निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। जुड़े रहिए 102.6 FM के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: वायदे के अनुसार हाजिर हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी हम सफर अगले एक घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का 2.0 वर्जन यानी कि सेकेंड एडिशन लेके मैं भावना आपके साथ। और सुबह के घड़ी मिला लीजिए अब 8:04:22 हो रहे हैं। और अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे दोस्त, या तो आप घर से निकल चुके हैं या फिर अभी भी घर में खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि नाश्ता पहले करूं या पहले निकल जाऊं, क्योंकि अगर अभी नहीं निकला तो ऑफिस टाइम पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी कैसे। और अगर आप दिल्ली में हैं तो तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपने घर से समय पर निकल तो लिया है लेकिन अब मन में सिर्फ एक ही सवाल हो रहा होगा कि आज ट्रैफिक कहां सताएगा मुझे, कहां कहां घुमाएगा। तो भाई मेरे दोस्त, आज मंगलवार है लेकिन हम इसे ट्यूसडे टीयर्स नहीं बनने देंगे, बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे। एफएम रेनबो दिल से दिल तक की बातें करता है, तो ट्यूसडे टीयर्स नहीं, ट्यूसडे थ्रिलिंग होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज मंगलवार को मंगल बनाना है तो शुरुआत भी मंगल मंगल से ही होनी चाहिए ना।

तो मंगलवार का दिन मंगलमय हो और मंगल मंगल हो चुका है क्योंकि मेरा और आपका साथ जो शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे एडिशन में। और हम बात करेंगे इस दूसरे एडिशन में मौसम की, दिल्ली की सड़क और ट्रैफिक की। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या आप निकल चुके हो और ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो चुका है तो मेरे दोस्त आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। 9868107070 एक बार और बता दो, 9868107098 68। और आप मेट्रो की बात होगी, दिल्ली में हो रहे बदलावों की बात होगी, कुछ काम की बातें होंगी, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज होंगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा और थोड़ी हमारी आपकी गपशप होगी, यानी सुबह का फुल डोज आपको मिलने वाला है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। तो थोड़ी आवाज़ बढ़ा लीजिए, कॉफ़ी या चाय का पहला सिप जब ले रहे हैं या फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मेट्रो में बैठ चुके हैं, तो फ़ोन हाथ में नहीं मेरे दोस्त, रेडियो के साथ जुड़े रहिए 102.6 FM के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। इट्स अ ट्यूसडे।

तो इस सूरज का तो हम बहुत वेलकम कर चुके हैं और खुली बाहों से वेलकम कर चुके हैं। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और लगातार हमें मौसम विभाग कह रहा है कि आज बारिश आएगी, आज बारिश आएगी। थोड़ी बूंदाबांदी होती है लेकिन फिर से मौसम बदल जाता है, वहीं गर्मी हो जाती है। तो अगर आज के मौसम की बात करें ना मेरे दोस्तों, दिल्ली NCR में आज का मौसम भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बदला सा रह सकता है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश का इंतज़ार आज भी बना हुआ है। कल अगर बारिश का अनुमान था लेकिन राजधानी में बारिश नहीं हुई। हालांकि नोएडा और गाज़ियाबाद के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को ज़रूर मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में हल्की बारिश आज हो सकती है। इसलिए अगर आप ऑफिस, कॉलेज या जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो छाता लेना ना मेरे दोस्त, समझदारी रहने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि मॉनसून ना अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है, यानी कि अब बस टाटा बाय बाय कहने को तैयार है। बिल्कुल 19 सितंबर के बाद कहा जा रहा है मौसम इज गोइंग टू से टोटल बाय बाय। तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम और थोड़ा सुहावना हो जाए, थोड़ा रोमांटिक हो जाए और हम भी इस मौसम का आनंद ले लें जाते जाते। और मौसम की विदाई की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अगर आज के मौसम की बात करें तो कहा जा रहा है कि 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है, वहीं मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। अगर आपके पास ट्रैफिक से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। 9868107070 हमारा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, बता दें कि कहाँ कहाँ इस समय आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी, साथ साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना मेरे दोस्तों, फिर हम सभी को शेयर करना चाहिए। और अब बात ऐसी कि आपने हनुमान अंश तो सुना ही होगा, ऐसी मूवी जिसमें सोचा भी नहीं था कि इतनी ब्लॉक बस्टर होगी। मतलब सच में कमाल कर दिया हनुमान अंश ने, है ना, मतलब क्या ही बताएं। ऐसी मूवी जब लग रहा था कि कोई देखने नहीं आ रहा था शुरू में, लेकिन आप सारे रिकॉर्ड्स पार करती हुई नज़र आ रही है। और फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है, सिर्फ अपने शानदार विजुअल्स या एक्शन से नहीं बल्कि अपनी कहानी और हनुमान जी से जुड़े अपने जो भावनात्मक कनेक्शन है ना, उससे कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को जोड़ा है। और किसने सोचा था कि नीम करौली बाबा जैसे आध्यात्मिक संत के जीवन और उनकी भक्ति से जुड़ी कहानी बड़े पर्दे पर आएगी और दर्शकों के बीच इतना गहरा असर छोड़ देगी। हनुमान अंश ने वाकई कमाल कर दिया है। फिल्म की खासियत ना सिर्फ उसकी कहानी नहीं है बल्कि उसका जो स्पिरिचुअल भाव है ना, जो इसे नीम करौली बाबा और भगवान हनुमान की भक्ति से जोड़ता है। और आज तो मंगलवार भी है, और साथ ही आपको बता दें जो यही वजह है कि बाबा का जो आश्रम है ना कैंची धाम से लेकर देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक उनके भक्त आज भी उनकी गहरी आस्था से जुड़े हैं। तो मंगलवार का दिन है यानी बजरंग बली को याद करने का दिन है, तो आज की सुबह क्यों ना थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी भक्ति और थोड़ी एनर्जी के साथ शुरू की जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है हे खरारिया, हनुमान ने अंश की ही मूवी का है और साधु तिवारी ने

इसको लिखा है, संगीतबद्ध किया और अपनी आवाज़ भी दी है, और आजकल ये गाना खूब पसंद किया जा रहा है। आप भी इसको इंजॉय करिए, 102.6 FM के साथ जुड़े रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदमय रहिए। ये मंगलवार है, मंगल मंगल करने का दिन है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आप जुड़े हैं 102.6 FM रेनबो के साथ, यानी दिल से दिल तक की बातें हो रही हैं और 8:19 हो रहे हैं और सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है इस मंगलवार के साथ। और एक और आपको बात बताऊं, एक पॉजिटिव स्टोरी लेकर आई हूं आपकी दिल्ली से जुड़ी हुई है ना। ये कहानी ना मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है। बताती हूं आपको कैसे। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों पर बनाए गए अर्पण केंद्रों में लोगों ने अपने पुराने कपड़े जमा कराए हैं। कुछ समय पहले ये बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन पर अर्पण केंद्र बनाए जा रहे हैं, यानी कि आपकी अलमारी में जो पुराने कपड़े हैं जिन्हें आप नहीं पहन रहे हैं और वो बस धसे हुए पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें निकालिए। बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रिसाइकिल किया जा सकता है उनको, कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी ही पहल की शुरुआत दिल्ली मेट्रो पे हुई

और आपको बता दें कि 31 अगस्त तक 10 अर्पण केंद्रों पर लगभग लोगों ने 41,181 किलो से ज़्यादा पुराने कपड़े जमा कराए हैं। है ना, कितनी बेहतरीन पहल। और आप लोगों ने भी इसका साथ दिया और जमकर अपने जो पुराने कपड़े हैं वो जमा कराए। तो ज़रा सोचिए, जो आपकी अलमारी में कोई कपड़ा जो महीनों से पड़ा है, आप पहनते नहीं हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं, फिर सोचते हैं कभी काम आ जाएगा, आगे काम आ जाएगा, फिर पहन लूँगी, और वो कभी शायद काम नहीं आता और आप उसे नहीं पहनते, लेकिन वही कपड़ा आप किसी दूसरे के काम आ सकता है। कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल, अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग की दिशा में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो आपकी अलमारी की सफाई है ना, वो किसी दूसरे की मदद, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, और यही सर्कुलर इकोनॉमी की खूबसूरत बात है। पुराना आपके लिए बेकार हो सकता है, लेकिन वो एक मटेरियल के तौर पर किसी और की ज़िंदगी में काम आ सकता है और किसी की ज़िंदगी को संवार भी सकता है। तो आज ना, आपकी अलमारी में ऐसा कौन सा कपड़ा है, सोचिए, जिसे आप पिछले 2 साल से सिर्फ इसलिए संभाल कर रखे हुए हैं क्योंकि कभी तो पहनेंगे। भाई और बहन, मेरे दोस्त, अगर 2 साल में नहीं पहना तो शायद सोच लीजिए आप पहन पाएंगे या नहीं। अर्पण केंद्र है ना, वहाँ इसे जमा कराइए और एक सामाजिक पहल का हिस्सा भी बनिए। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दोस्तों याद तो है ना आपको, कल हिंदी दिवस था, 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस का दिन। एक ऐसा दिन जो हमें सिर्फ हिंदी बोलने की याद नहीं दिलाता बल्कि ये भी याद दिलाता है कि अपनी भाषा में किसी बात को समझना कितना ही ज़रूरी है। और हिंदी दिवस के ठीक अगले दिन ना, आपको बताएं, उसी दिन यानी कि बोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट से आई एक खबर इस बात की ओर उसको और खास बना रही है। कैसे, बताती हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने अब आम नागरिकों तक अपने महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों की जानकारी आसान यानी कि सरल भाषा में, हिंदी भाषा में पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। यानी अब अदालत के महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सार सरल हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही रोजाना करीब 15 से 30 मिनट के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। आपको बताने की संबंधित आधिकारिक फैसलों के लिंक भी साथ दिए जाएंगे। तो जरा सोचिए, अदालत का फैसला हमारे जीवन पर असर डाल सकता है, हमारे अधिकारों पर, हमारे जिम्मेदारियों पर, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर। लेकिन कई बार फैसला पढ़ते हुए सामने आती है ऐसी कानूनी भाषा कि आम आदमी सोचता है कि फैसले समझने से पहले शब्दकोश बुलाऊं या वकील। यही वजह है कि सरल भाषा में जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। और यहां हिंदी दिवस का कनेक्शन भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि हिंदी दिवस हमें यह संदेश देता है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि जानकारी और अधिकारों तक पहुंच का भी माध्यम है। अगर कोई नागरिक अपने देश की सबसे बड़ी अदालत के किसी महत्वपूर्ण फैसले को अपनी परिचित भाषा में समझ पाता है तो वह सिर्फ खबर नहीं समझ रहा, वह अपने अधिकारों को भी समझ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जिन्हें जटिल कानूनी भाषा समझने में मुश्किल होती है। तो कल हिंदी दिवस था और हिंदी को सिर्फ भाषा के रूप में नहीं बल्कि समझ और पहुंच की भाषा के रूप में भी देखने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि आखिरकार न्याय भी तभी ज़्यादा प्रभावी बनता है जब उसे समझने का रास्ता भी आम नागरिक के लिए आसान हो। तो है ना ये ब्यूटीफुल थॉट इन दिस ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग। तो आज की जो सुबह की ये ब्यूटीफुल थॉट है उसमें कहीं ना कहीं भाषा सरल होगी तो बात दूर तक जाएगी और बात समझ में आएगी तो अधिकार भी मजबूत होंगे। कितनी बड़ी बात है ये कि भाषा आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसको और मजबूत बनाना हम सभी का काम है। और सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण पहल कहीं ना कहीं हमारे सभी के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी।

तो दोस्त 102.6 FM आप सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ये ट्यूसडे का दिन है और दोस्त पिछले कुछ दिनों में आपने ब्रिक्स के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि किस तरीके से भारत ने उसकी मेज़बानी करी और सफलतापूर्वक वो संपन्न हुई और कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ दिल्ली में पहुँचे और भारत मंडपम में एक मेगा इवेंट हुआ। लेकिन इसके इतर म्यूज़िक और डिप्लोमेसी भी इसमें देखने को मिले, यानी कि हाँ ब्रिक्स की बैठकों में चर्चाएं तो रहती हैं, खासकर इकोनॉमी को लेकर, बिजनेस को लेकर, ग्लोबल रिलेशंस को लेकर। लेकिन इस बार ब्रिक्स से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर और वीडियो भी सामने आई जिसने माहौल को ना थोड़ा शुरू में भर दिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री जो है ना अनवर इब्राहिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्रिक्स डिनर के दौरान किशोर कुमार का वो मशहूर गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। ये गाना ना पता किस फिल्म का है, फिल्म तीसरी मंजिल का है। अब जरा सोचिए कि एक इंटरनेशनल गैदरिंग, दुनिया के अलग अलग देशों के नेता, गंभीर चर्चाएं, मीटिंग्स और डिप्लोमेसी, और उसी माहौल में गूंजता है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। यही तो है म्यूजिक की असली ताकत, यही तो है सुरों की असली ताकत। किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है इसमें, किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, किसी भाषा की जरूरत नहीं है। वो म्यूजिक ही समटाइम्स ना इट्स टाइमलेस, इट्स एवरग्रीन। किसी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की भी जरूरत नहीं है, सुर बस समझ में आ जाते हैं ना। तो ये वीडियो का वायरल होना एक खूबसूरत बात को भी दिखाता है, पता है मेरे दोस्त की, भारत का संगीत सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हमारे फिल्मी गाने, हमारे सिंगर्स, हमारी मेलोडीज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के दिल तक पहुंचती है। खासकर किशोर कुमार के गाने तो सदाबहार हैं, उनकी आवाज़ में जो वॉर्म्थ थी, जो इमोशन था, वो आज भी ना कितनी भी जनरेशंस बीत जाए वो उतना फ्रेश लगता है। और शायद इसलिए कुछ गाने पुराने नहीं होते, वो टाइमलेस हो जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कई बार 20-30 साल पुराना कोई गाना अचानक बजता है और हम कहते हैं अरे ये तो आज भी कितना अच्छा लग रहा है। यही तो होती है टाइमलेस म्यूजिक की पहचान। और सोचिए अगर एक मलेशियन प्राइम मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल डिनर में भारतीय फिल्म का गाना गुनगुना रहे हैं तो ये हमारी म्यूजिक की ग्लोबल रीच का कितना प्यारा उदाहरण है। और साथ ही कभी कभी डिप्लोमेसी बड़ी बड़ी स्पीचेस से नहीं, एक गाने से भी हो जाती है। तो चलिए आज आपको यही टाइमलेस गाना सुना देती हूँ।

0: ये फिल्म 1965 की फिल्म तीन देवियों का है और देखिए करीब 6 दशक बाद भी इसकी धुन और किशोरदा की आवाज़ में वही जादू है। ख्वाब हुई तुम या कोई हकीकत। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जल्द लौटती हूँ और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सफ़र ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। सुनते रहिए 102.6 एफएम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 FM। दिल से दिल तक बातें हो रही हैं और ब्रिक्स से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे ब्रिक्स में म्यूजिक और डिप्लोमेसी कैसे देखने को मिली। इसके साथ ब्रिक्स में एक और खास बात है और अट्रैक्शन है और वो है ब्रिक्स क्राफ्ट बाजार। ब्रिक्स क्राफ्ट बाजार में आप देखेंगे भारत की संस्कृति की झलक और 15 सितंबर यानी कि आज का वो दिन है जब ये ब्रिक्स बाजार लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको बताऊं मैं, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हुनर की विविधता यहाँ आपको देखने को मिलेगी अलग अलग देशों की। और राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में आज तक ये आयोजित इस प्रदर्शनी में 18 देशों के कारीगर अपनी पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ईरान की कढ़ाई, बेलारूस की बुनाई, चीन की बांस कला और अलग अलग देशों की सदियों पुरानी क्राफ्ट्समैनशिप। यानी दुनिया जब मिलती है तो सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती, कहानियां भी मिलती हैं। और यही तो दिल्ली है, इतिहास भी है, हुनर भी है, नई टेक्नोलॉजी भी है और हर सुबह एक नई कहानी भी है। सुनते रहिए 102.6 FM, यहां बहुत सारी कहानियां बनती हैं मेरी आपकी। और ये जो गानों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप तक लेकर आते रहते हैं और इसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट भी आपको देते रहते हैं और कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर ही ये सारी जानकारी आपको हासिल होगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: और अब आपकी सेहत से जुड़ी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ मेरे दोस्त। और हमारी किचन और हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है पनीर। हमें प्रोटीन्स तो चाहिए होते हैं और उसके लिए हम पनीर खाते हैं। पनीर इन एनी फॉर्म खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है तो पनीर के पराठे, सैंडविचेस या फिर खाली पनीर। तो पनीर हम कई तरीके से खाते हैं, फिर चाहे वो सब्जियों में हो या फिर सैलड्स में हो, किसी भी तरीके से पनीर खाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ ना आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में 2 तरीके के पनीर मिल रहे हैं। एक तो वो पनीर जो आपकी डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और वो दूसरा पनीर कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड है, जिसको हम एनालॉग पनीर के नाम से भी जान रहे हैं। तो ज़रूरी है ये जानना कि दोनों में फ़र्क क्या है, और आप उसकी स्मेल, उसकी पैकेजिंग और कहीं ना कहीं उसके टेक्सचर से ये पहचान सकते हैं कि कहीं ये एनालॉग पनीर तो नहीं है। आपको बताऊँ इस एनालॉग पनीर के बारे में। एनालॉग पनीर ना एक गैर डेयरी उत्पाद है, जो देखने और इस्तेमाल करने में सामान्य पनीर जैसा ही दिखता है, यानी कि हूबहू वो पनीर जैसा ही दिखता है। इसके बनाने के लिए दूध का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें दूध में मिलाने वाले पारंपरिक फैट और साइलेड्स नहीं होते हैं, और इसमें इनसे किया जाता है इसको तैयार, जिसमें वनस्पति तेल और वनस्पति फैट के साथ साथ सोया या मटर से मिलने वाले प्रोटीन से यह तैयार किया जाता है। साथ ही स्टार्च, डिटर्जेंट, चूना, पाउडर वाला दूध और केमिकल्स भी इसमें मिलाए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एनालॉग पनीर से बचे रहें, क्योंकि बहुत सारा नुकसान इससे हो सकता है आपकी सेहत को। और एनालॉग पनीर ना कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और हार्ट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप एनालॉग पनीर के बारे में जान लें, उसे पहचान लें, अगर कोई सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएं कि ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर असर डाल रहा है, तो देख लीजिए कहीं आप एनालॉग पनीर तो नहीं खा रहे, क्योंकि इससे उल्टी, दस्त या पेट दर्द हो सकता है, गले या फिर डिजेशन में जलन हो सकती है, मुंह, गले और जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें जलन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको सतर्क कर रही हूँ कि एनालॉग पनीर के बारे में आप ज़रूर जान लें कि कहीं जो आप पनीर खा रहे हैं वो सही पनीर तो है, एनालॉग पनीर तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम जागरूक रहते हैं तो हम अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, है ना। तो सेहत से जुड़ी ये जानकारी मुझे लग रहा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में आखिरकार फ़र्क क्या है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो।

तो प्यार होता होता कई बार है, और मुझे भी बार बार आप ही से ही प्यार होता है। और ये प्यार इसलिए है क्योंकि हम दोनों का संबंध ही कुछ ऐसा है, और ये प्यार जो है ना अटूट है। अगर आज आप दिल्ली में कहीं घूमना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि कला और नेतृत्व का एक खास संगम देखने को आपको मिलेगा डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। आज सुबह 11 बजे सेलिब्रेटिंग लीडरशिप विजन एंड सर्विस थ्रू आर्ट नाम से विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, और इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी यात्रा को दर्शाती 76 मूल पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी, और इसके साथ एक डिजिटल एग्जीबिशन भी लॉन्च की जाएगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कला दिलीप लखी की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन होने वाला है, और ये प्रदर्शनी 15 से 20 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप सभी के लिए खुली रहेगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो 15 जनपथ रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस प्रदर्शनी को देखने जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि खेल की दुनिया में ना कुछ ऐसे खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं जीतते बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है जसपाल राणा का। पिस्टल शूटिंग के इस दिग्गज खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवार्डी जसपाल राणा के जीवन और उनके शानदार सफर पर आधारित किताब मैवरिक जसपाल आज दिल्ली में लॉन्च हो रही है, और लेखक हैं इसके एस कन्नन और जी राजा रामन, जबकि किताब को प्रकाशित किया है विटिस्ता ब्लैक स्पाइन ने, और इस किताब का विमोचन आपको बता दें होने वाला है आज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा करने वाली हैं, और आज कार्यक्रम होने वाला है शाम 4 बजे दिल्ली के श्री इंस्टीट्यूशनल एरिया हॉस्का स्थित NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर के अल्फा हॉल में। और खास बात यह है कि जसपाल राणा से आप बातचीत करने का मौका भी आपको मिल सकता है, तो खेल प्रेमियों के लिए ये एक अहम खबर है। इसी के साथ वक्त हो चला है अब मेरा आपसे विदा लेने का। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सफर मेरा और आपका बस इतना ही था, लेकिन आपका मंगलवार मंगलमय हो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू कीप स्माइलिंग, ये मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। दिस इज भावना नैयर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा कि बैंक 2000 रुपये तक के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगा सकते हैं। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में शुभभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। झारखंड में सीआईडी ने कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नए हमलों की शुरुआत कर दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज से 17 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार और बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ बिल्कुल, दिल के तराने गाने नए पुराने में मैं आपके साथ पुनः हाजिर संजीव श्रीवास्तव संजू, और 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा और आपसे बात करूंगा मौसम की, आपसे बात करूंगा दिल्ली की, आपसे बात करूंगा यातायात की। अच्छी बात किसी ग्रंथ से, किसी पंथ से और किसी भी संत से अगर मिले तो सादर स्वीकार कर लेनी चाहिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ओए कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?
1: हाँ लेकिन वेजिटेरियन।

0: मच्छी पकड़ रही हूँ डिनर के लिए।
1: उस झंडे से मच्छी पकड़ रही हो?
0: हाँ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ताज़ी ताज़ी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: जी हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। यह है आपका आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ आपके साथ संजीव श्रीवास्तव संजू। और अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलिए। बिल्कुल जी, सड़कों पर चलना, सुरक्षा के साथ चलना, ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि दूसरे उन कम्यूटर्स की, उन सभी व्यक्तियों की सेहत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जो आपके साथ चल रहे हैं। तो अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए। और अगर हम अपनी दिल्ली की बात करते हैं तो आज दिल्ली में हम टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और यानी कि मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी का लेवल है 74%, हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में हवा चल रही है। फिलहाल मौसम जो है वो लुका छुपी हल्की है, हालांकि सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, उसमें दिल्ली भी शामिल है, शाम तक ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल तो अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन अगर संभावना बादलों की अगर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जब कब आ जाएं और कब मेघा बरस जाएं। तो आप बिल्कुल अगर घर से निकल रहे हैं तो ध्यान रखिए अपने हाथ में जो घर में आपने उस खूंटी के ऊपर वो छतरी टांगी हुई है ना, उसको ले जाइए, ले चलिए। और अपने मोबाइल को, अपने पर्स को किसी पॉली बैग में रख लीजिए या ऐसी जगह सुरक्षित जहां पानी के से भीगने से वो बच जाए, है ना। ताकि अगर आप टू व्हीलर्स पर चल रहे हैं तो ख़ासतौर पर बहुत ख्याल रखें, क्योंकि स्किड करते हैं बारिश में टू व्हीलर्स, और ब्रेक का बहुत सावधानी से ख्याल कीजिएगा। और सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो एक बहुत ही प्यारा नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में दिल में उतर जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं? इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
8: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
9: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
10: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
11: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
7: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ

0: बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

बिल्कुल जी, हमारी तरफ से कोई पर्दा नहीं है, हम पर्दे से बाहर आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और वक्त हो गया है 9:40। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपसे बता दें कि ट्रैफिक पर, क्योंकि पीक टाइम होता है ऑफिस का, आप लोग अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए हर कोई हड़बड़ी में होता है। हड़बड़ी का काम कहते हैं जल्दबाजी का काम, शैतान का काम। आराम से चलिए, अगर टू व्हीलर्स पर हैं तो बिल्कुल ध्यान से चलिए। हेलमेट को बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन हेलमेट का नीचे वाला जो बंद करने का जो हुक होता है उसे पूरी तरह से बंद नहीं करते, तो कई बार क्या होता है, मैंने कई मामलों में देखा है एक्सीडेंट केसेस में भी, कि हेलमेट निकल जाता है और तब सिर के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए पूरा एक तो वेरीफाइड हेलमेट को आप पहनिए, मजबूत हेलमेट पहनिए, थोड़ा सस्ते हेलमेट के चक्कर में मत रहिए, ताकि ये जो सेहत है, ये जो सर है, वो जो उसकी सुरक्षा है वो आपकी है। दूसरी बात, जब भी आप घर से निकलिए हेलमेट को पहनकर नीचे उसका प्रॉपर उसे बंद करिए, ताकि वो आपके सिर में पूरी तरह से रुका रहे। साथ ही अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो लाइट्स का, रेड लाइट्स का ज़रूर पालन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि रेड लाइट होने के बाद जब ग्रीन होती है तो उससे पहले एकदम से तेज़ी से गाड़ी को दौड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार दूसरी

तरफ से भी लोग जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसे में भी संभावनाएं रहती हैं कि दुर्घटना हो जाती हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ट्रैफिक की बात करें तो बिल्कुल जी, इस वक्त अगर आप नोएडा से होते हुए DND पर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, जहाँ से बारापुला का मोड़ है वहाँ थोड़ा ट्रैफिक है। इसके अलावा अगर आप एम्स से पहले थोड़ा चल रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन लगातार चल रहा है ट्रैफिक, उसमें रुकने वाली कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आप घर से निकलिए, समय से निकलिए और समय से पहुँचिए, और बिल्कुल कंट्रोल में स्पीड लिमिट को बनाकर चलिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथ साथ आपके परिवार में जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप शाम को घर से ऑफिस से घर पहुंचेंगे तो एक एक कप चाय आपके साथ हो जाए, उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा। बिल्कुल हमारे साथ सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने। आप, मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

10:05 में अगला प्रोग्राम होगा मैचलेस म्यूजिका। निहारिका स्टूडियो में आ चुकी हैं। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाजत। अगले मुलाकात तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
10: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्स ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों को आकर्षक और सुलभ छोटी वीडियो में बदलने के लिए नई तकनीक सरल AI को अपनाया। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। झारखंड में CID ने कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। यमन के ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नए हमले शुरू किए। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में भी बृहस्पतिवार तक कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर ये समय है बॉलीवुड ट्रेल्स का। बबिता त्रिपाठी की वाणी में आप सुनेंगे इसे। और बबिता त्रिपाठी यानी बीटी और बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बीटी, टोटल मिलाकर बात ये कि बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है आकाशवाणी रेनबो पर। तो आप सब इस बॉलीवुड की गाड़ी में सवार हो जाइए और चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया की सैर करने के लिए और जानते हैं कि हमारे फेवरेट स्टार्स कर क्या रहे हैं, कौन सी मूवीज़ रिलीज होने के लिए तैयार हैं, कौन सी बनने के लिए तैयार हैं और कौन किस पर कैसा काम कर रहा है। सारी अपडेट्स होती हैं इसी घंटे। और हाँ, और भी सरप्राइजेज जिसके लिए बस इस गाने के बाद आपको बताऊंगी कि क्या सरप्राइज है आपके लिए। तो फिलहाल गाड़ी में सवार हो जाइए, बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है।

देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो गाड़ी में सवार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर पीछे नहीं हटना चाहते, आप चाहते हैं कि हमें भी बॉलीवुड की दुनिया की सैर करनी है, तो आप गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ चलिए। हम आपको बॉलीवुड की दुनिया की सैर कराते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और यहाँ पर आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट तो होगा ही, एक सवाल भी होगा आप सबसे इस दौरान, जिसका जवाब आपको देना है और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए तैयार हो जाना है। बॉलीवुड सरताज बोले तो हमसे बात करने का पूरा मौका मिलेगा आपसे, हम बात करेंगे और आपसे हम डायरेक्टली कॉल करके बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं जी सब से बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप सबके मैसेजेस तो शामिल होंगे ही, तो आप सबको मैसेज भी करना है, तो उसके लिए आपको 11:30 बजे तक का वेट करना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरी बातों में ही जवाब भी छुपा होगा। आपको बस हम चाहते हैं कि यहीं चिपक कर बैठे रहना है और सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और हाँ, ये सारी की सारी बातें ऐसे नहीं आएंगी, पूरे एक घंटे धीरे धीरे आएंगी और एक एक करके आएंगी, जिनका आप आनंद उठा पाएंगे। इस मस्ती, इस धूम, इस धड़ाके में आप है ना हमारे साथ, आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर।

अरे भैया, बिजली तो गिरा रखी है एक मूवी ने, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है। आजकल क्या, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कितनी चर्चा करें इस मूवी की। हनुमान अंश की बात कर रही हूँ। अब इतना धमाल मचा चुकी है और छोटे से बजट का की बनी फिल्म 200 करोड़ी बन जाएगी, किस नहीं सोचा था। और अब तो भैया इसके परी निकल आए हैं, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं छोटा मोटा काम करने वाली, पैन इंडिया रिलीज़ होने की तैयारी में है और बड़ी जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। कहने सुनने की बात होती है कि भैया बड़े स्तर पर बड़े बड़े स्टार्स लेकर अगर आप फिल्म बनाएंगे तभी चलेगी। और कब कौन सी मूवी क्या इतिहास रचते कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बात साबित कर दी है हनुमान अंश ने। और इतिहास रचने के बाद अब ये दक्षिण भारत के थिएटर्स में भी रिलीज़ हो जाएगी। और तेलुगु में की बात करें तो तेलुगु फिल्म में तो 18 सितंबर यानी अब बहुत जल्दी ये रिलीज़ होने वाली है। तो भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो ये रिलीज़ होने वाली मूवी है, यहाँ के लोग अब कैसा रिस्पॉन्स करेंगे ये तो टाइम बताएगा। लेकिन अभी तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ और ही बता दिया है, और क्या बताया है वो मैं बताऊंगी। और मैं तो ये भी बताऊंगी कि भाई ज़माना कब बदल जाए कुछ नहीं पता, उल्टा घूम फिर के जो टाइम है ना वो आता रहता है। पुराना टाइम नए में और नए में पुराने टाइम नया होता है और नया हुए पुराने में तब्दील होता रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना।

इन सब से मैं यही कहूंगी, हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। जमाना कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी तो जमाना बदल गया है। हमारे जो हनुमान अंश के निर्देशक हैं उनकी बातों की चर्चा हो रही है आजकल। पता है वो क्या कर रहे हैं, हम सबको पता है। पता है क्यों? क्योंकि हनुमान अंश के बाद अब तो विशाल चतुर्वेदी के चर्चे हैं, और जब उन्होंने नई फिल्म का ऐलान कर दिया है तो चर्चा होना भी चाहिए भाई। अब क्या लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं? हनुमान अंश एक सिंपल सी फिल्म बनाई और वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर पाई, और उसके बाद जब वो नई फिल्म की बात करेंगे तो लोग तो क्यूरियस होंगे ही ना कि अब क्या लाएंगे, अब नया क्या लाएंगे, क्या कुछ उनकी फिल्म में होने वाला है। तो चलिए हम बता देते हैं, ऑफिशियली फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, राम बोला फिल्म का नाम है। और विशाल चतुर्वेदी ने कहा है कि ये फिल्म महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित होगी और उनकी कहानी हम सबको जानने समझने को मिलेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे महाकवि माने जाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उनकी जीवन यात्रा के बारे में शायद हम सब नहीं जानते हैं। और ये फिल्म कुछ इसी पर आधारित है, कुछ उनकी यही कहानी बताने के लिए तैयार की जाएगी। तो इस फिल्म के बारे में आगे की जो भी कहानी आएगी वो आप तक पहुंचती जाएगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहना है। शो चल रहा है बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

देखिए जी, न्यू तो एक कैरेक्टर आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये कैरेक्टर आमिर खान स्वयं करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है, और ये उड़ती उड़ती खबर मैं आपको चुपके से हमेशा की तरह बता ही देती हूँ और आज भी बता रही हूँ। तो आपको बता दूँ कि आर बाल्की एक निर्देशक है जिनकी चीनी कम, पा, की एंड का, बैडमैन, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट और घूमर जैसी बड़ी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं। इन फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं, और वो जब कोई फिल्म बनाते हैं, और वो भी जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ बनाएंगे, तो फिल्म में भी दम होना चाहिए। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऐसे ही किसी फिल्म के लिए हाँ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, भूमिका बन चुकी है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों कोलैबोरेट करने जा रहे हैं एक फिल्म के लिए, और प्रोडक्शन होगा साजिद नडियाडवाला का। और ये उड़ती उड़ती खबर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, तो हम इसको ऐसे ही मानेंगे, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर एक फिल्म बनाएंगे, और उस मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर होगा वो छोटा बड़ा नहीं होगा। पहली बार आमिर खान दिखेंगे सुपर हीरो के अवतार में, और जब वैसे तो हमारी नज़र में वो सुपर हीरो हैं, लेकिन हाँ इस तरह के रोल में उनको हम पहली बार देखेंगे, और हम होप करते हैं कि All is well और ये मूवी बनकर तैयार हो, आमिर खान इस मूवी में हो और हम उनको इस नए अवतार में देख सकें। क्या कहते हैं? सुनते रहिए बीटी विद बीटी, ऐसे ही धमाकेदार खबरें, नई नई खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको बता दूं, बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल ज़्यादा दूर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा और बॉलीवुड सरताज बन जाइएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल इज़ वेल।

कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आपको ऑल इज वेल बोलना है तो आपको ऐसे ही नहीं बोल देना है, आपको होंठ घुमाना है, सीटी बजाना है, उसके बाद बोलना है। होंठ घुमा, सीटी बजा, उसके बाद बोलो ऑल इज वेल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आती हूँ, फिर आपसे सवाल पूछती हूँ और देखती हूँ आपको आंसर पता है कि नहीं। सवाल कौन सा होगा जो आपने गेस किया है ना, वो वाला तो बिल्कुल ही नहीं है।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में। न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

ये आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और अब वही बात जिसका आप सबको इंतजार है, सवाल पूछ लिया जाए। और सवाल क्या है आज का बॉलीवुड सहताज बनने का? तो सवाल कुछ इस तरह से है, फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है? फिल्म चीनी कम के डायरेक्टर निर्देशक का नाम क्या है? ये है आज का सवाल। इसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज करके देना है हमेशा की तरह, और नंबर भी हमेशा की तरह सेम ही है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो बता देती हूँ, 9868107070 आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बताना है कि फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका नाम और आपके शहर का नाम सबसे पहले आना है, उसके बाद आंसर लिखना है, ताकि आपका सवाल सही या गलत जो भी हो मैसेज शामिल हो जाए। 9868107070 9868107070। सुन रहे आप बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, तो एंजॉय।

मैं तो ये कह रही थी कि तबाही मचने वाली है सिनेमा घरों में, पता है क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा जी, आने वाली जो मूवी है ना उनकी, वो कुछ इस तरह की है कि बस तबाही ही है। कहने का मतलब वो जो मैं कह रही हूँ उसका तात्पर्य ये कि उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि धुरंधर मूवी से भी बड़ी मूवी वो लेकर आ रहे हैं, कुछ छोटी मोटी मूवी नहीं। धुरंधर में तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया था, इस बार तो छोटा राजन भी शामिल है। ये सब उन्होंने जानकारी दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा आने वाली जो उनकी मूवी है जिसका अभी नाम फाइनल नहीं है, वो कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, धुरंधर से भी बड़ी मूवी होगी। और ये मूवी अंडरवर्ल्ड पर आधारित होगी जिसमें ना सिर्फ दाऊद रहेंगे बल्कि छोटा राजन भी रहेंगे। और कहानी में मेन बात जो दिखाई जाएगी वो ये कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए थे, और उसमें सौत्या नाम के एक शख्स की भूमिका थी। और साथ में ये भी कहा, सौत्या से याद आया, कि सत्या से भी ज़्यादा असलियत के करीब होगी ये कहानी। और साथ में और भी तमाम जो घटनाएं हुई थी उसके आसपास, वो सब इस मूवी में दिखाई जाएंगी। और काफ़ी ख़तरनाक वैसे सुनने में लग रहा है, देखते हैं मूवी में क्या होगा और कितनी बड़ी होगी, समय बताएगा। यह सब कुछ समय पर छोड़ दो बालक, फिलहाल एंजॉय करते हैं। बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी रेनबो पर।

अति सुंदर गीत, फिल्म का नाम बागी फोर, बागी फोर, नॉट फोर, इट्स फोर। तो अब आगे की कहानी ये कि गाने से मुझे कुछ बात याद आ गई। रामायण का पहला गाना रिलीज हो गया है, देखा गया? देखने वाली बात है भाई, सुनने वाली बात तो उससे ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी होते हैं आजकल। और आपको जब ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो क्यों नहीं देख रहे हैं। रिलीज हो गया है और इस गाने को आप देख सकते हैं। रामायण का गाना है भाई, छोटी मोटी बात ऐसे हो ही नहीं सकती। एआर रहमान ने म्यूज़िक को कंपोज किया है और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने आवाज़ दी है। अरिजीत सिंह, याद आया कि उन्होंने अभी गाना छोड़ दिया है, लेकिन ये गाना पहले ही रिलीज़ हो गया था। मतलब गाना नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ फिल्मों में गाना छोड़ दिया है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और एक और ख़ास बात, इस गाने की लिरिक्स जो है ना, वो कुमार विश्वास ने लिखे हैं। तो मतलब हर तरह से ये गाना ख़ास तौर से ख़ास बनाया गया है। और अब रही बात गाने की, तो जय जय राम टाइटल है और इसमें जो लिरिक्स हैं वो आपको बता ही दिया और सिंगर्स भी बता दिए। नए नहीं है, बहुत जाने माने और पहचाने और ज़बरदस्त इसमें नाम जुड़े हैं। और रही बात रामायण की, तो हम सब जानते हैं रामायण में क्या क्या हुआ था, लेकिन सब कुछ इस गाने में

झलक के रूप में हमें देखने को भी मिल रहा है, जैसे सियाराम के विवाह की झलक देखने को मिल रहा है, और साथ में स्वयंवर की बात भी देखने को मिल रही है, और साथ में किस तरह से उनका अयोध्या आने पर भव्य स्वागत हुआ था ये भी दिख रहा है गाने में, और वनवास के दिनों की भी कहानी से इस गाने को अंत किया गया है। इस गाने का तो ज़बरदस्त गाना है, आप चाहें तो इसका आनंद ले सकते हैं। ये गाना रिलीज़ कर दिया गया है और फिलहाल हमारा अगला गाना भी रिलीज़ हो चुका है, यानी चल चुका है। और आपको बता दूं कि सवाल का जवाब आप सबने दे दिया है, अब आप सबके नामों को लेने की बारी थोड़ी देर में।

0: आप सब सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, और बीटी विद बीटी में फिलहाल आप सबके सवालों के जवाब जो आ गए हैं उनके नाम तो एटलीस्ट शामिल कर ही लेती हूँ। और रही बात बॉलीवुड सरताज की, तो बॉलीवुड सरताज के लिए आप सब कमर कस लीजिए, किसी का भी कॉल अचानक आ सकता है और आप बॉलीवुड सरताज के लिए चुने जा सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक सवाल का जवाब ही नहीं दिया है या सवाल सुना ही नहीं है तो थोड़ी देर का मौका आपको दे देती हूँ। एक आध एड जब तक एड ब्रेक लेती हूँ, आप इतनी देर में अगर आंसर कर पाए तो कर ही दीजिए। पूछा मैंने ये था कि फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है, तो आप चाहें तो फटाफट अब भी बता सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070 पर, 9868107070। और फिलहाल मैं इस एड ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ और आप सबके नाम शामिल करती हूँ। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड फेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

यह आकाशवाणी रेनबो और आप सबके नाम हैं ये सलीम मलिक मेरठ से, तरुण कोहली सूरज कुंड मेरठ से एक बार फिर से, और रही बात अगले नाम की तो इन्होंने कहाँ से लिखा है, कान्हा ने मेरठ से ही लिखा है और सभी मेरठ वालों को बहुत सारा धन्यवाद। और रही बात अगले मैसेज की तो सोनिया विहार दिल्ली से कंचन लिख रही हैं और उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं और इस बार भी उमेश कुमार ने सबसे पहले आंसर ही कर दिया है अपना नाम बाद में लिखने का। एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि आपका नाम शामिल ना हो, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ना बड़ा स्मार्ट है, आपका नाम सबसे पहले लिखा रहेगा तो दिखा देगा, नहीं तो फिर मैं ढूंढूंगी नहीं, एक्चुअली जल्दी होती है हमें। हरीश गौर मेरठ से ही लिख रहे हैं और अनिल शाह तम नगर न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे मैसेज दिख रहा है उत्तम नगर के बाद कहाँ गए, ज्ञान प्रकाश का मैसेज दिख रहा है और ये कहीं से तो लिख रहे हैं। अनूप साहू भी कहीं से लिख रहे हैं और सुखलाल बाला भी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, इनका नाम दिख रहा है। और उसके बाद मैसेज दिख रहा है मिसेज धर्म भाटिया का, रोहतक से लिख रही हैं। और अगला मैसेज किसका है, अगला मैसेज है नवाब अहमद भारती का और ये बल्ली मारान से लिख रहे हैं। अगला मैसेज राजेश राकेश कुमार का है। उसके बाद राकेश कुमार जायसवाल मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, शिव विहार से फहीम खान लिख रहे हैं, फैज़ शिव विहार से लिख रहे हैं और प्रकाश गोगिया लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं नाम नहीं दिख रहा है जगह का। और महेंद्र सिंह औरंगाबाद से, मोहम्मद इम्तियाज़ सलमा बेगम जवाहर कैंप न्यू दिल्ली से, मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं मेरठ से और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी ये भी कहीं दिल्ली से ही लिखते हैं शायद, और क्योंकि नाम जगह का नहीं दिख रहा है। और जुल्फ़िकार बिहार से लिख रहे हैं और अगला मैसेज किसका है, राजकुमार संतानी का और ये मैसेज आता है महाराष्ट्र से, बसंत उमर मेरठ से, तौसीफ अहमद भी लिख रहे हैं श्रीनगर से लिख रहे हैं ये, और उसके बाद पवन का फरुखाबाद से। इतने सारे लोगों ने नाम अपना पहले लिखा था तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके नाम शामिल हो चुके हैं। और अगला प्रॉमिस बॉलीवुड सरताज बनाने का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने टाइमली फोन पर बात करने के लिए फोन उठा लिया और आपको कॉल लग गया, आप ही को कॉल मैंने मिला दिया, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज और हमसे बात करने का मिल सकता है मौका बस थोड़ी देर में। लेकर आती हूँ बॉलीवुड सरताज।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

0: और आकाशवाणी रेनबो पर ये समय किस बात का है, ये समय ये है कि हम आपको बॉलीवुड सरताज से मिलवाएं और हम आपसे लें विदा, लेकिन ऐसे नहीं, लौट कर जरूर आएंगे। उसके बारे में हम अभी फिलहाल नहीं बताएंगे, अभी आपको बताएंगे कि बॉलीवुड सरताज आज का कौन है, उनसे हम डायरेक्टली मिलवा ही देते हैं, उनकी आवाज अगली होगी, तो सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं हरीश और बोल रहा हूँ मेरठ से।
0: बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर हरीश जी।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत।
0: तो बॉलीवुड सरताज कितनी बार बन चुके हैं आप, कुछ बताएंगे?
1: मैडम जी हाँ, कई बार बन चुके, 2-3 बार तो आपने बना दिया है, और भी मतलब टोटल मिला के 7-8 बार हो चुका है जब से मैंने सुनना किया, शुरू किया कई साल से।
0: और पता है ऐसा क्यों होता है?
1: जी
0: क्योंकि सबको दिखता है कि पहली जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों में कुछ नाम है, उनमें हरीश गौड़ का नाम रहता है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो आपका नाम आज शामिल किया गया, वैसे काफी लंबे टाइम बाद मुझे लगता है आपको शामिल किया गया।
1: कई महीने बाद आज शामिल किया।
0: तो चलिए सबसे पहले आंसर ले लेते हैं। मैंने सवाल पूछा था, क्या पूछा था मैंने सवाल?
1: चीनी गम के डायरेक्टर कौन है? आर बाल की।
0: बिल्कुल सही जवाब, और कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से बॉलीवुड सरताज के लिए। तो हरीश जी आपको बहुत बहुत बहुत मुबारक हो।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो कैसा लग रहा है आपको?
1: मैम

0: तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से। वैसे थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत समय है, बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केटिंग में हूँ।
0: अच्छा,
1: और मेरठ से हूँ।
0: तो कैसे सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो?
1: मोस्टली चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए सुनते
0: हैं। अच्छा, चलते हुए सुनते हैं। उन लोगों से मतलब हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अक्सर गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेवल वाला काम है।
1: हाँ, वो
0: जरूर सुनते होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके हरीश जी, बाय बाय
1: बाय।
0: तो ये थे हरीश गौड़ आज के बॉलीवुड सरताज। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, लेकिन लौट कर आऊंगी 1 बजे। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आस्क चॉकलेटियर। और क्या पूछना है मुझे खुद नहीं पता, वही बताएंगे। हमारी जो गेस्ट हैं स्मृति भाटिया, वो हैं चॉकलेटियर, और वो बताएंगी कि क्या पूछना है और क्या जवाब है, वो दोनों ही बातें बताने वाली हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है ना, तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। वो खुद बोल रही हैं कि पूछिए मुझसे, मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई, इस शो को आप मिस मत कीजिएगा। और आज चॉकलेट्स पर बात करके हम देखते हैं कि क्या चॉकलेट खाना अच्छी बात होती है या गंदी बात। और इस शो से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, लौट कर आती हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: इतने लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 का 10वां संस्करण गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संवत्सरी के अवसर पर जनता को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में भी बृहस्पतिवार तक कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। आपके साथ हूँ एक बार फिर से मैं बबीता त्रिपाठी और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मीठा मीठा है, आस्क द चॉकलेटियर। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ गेस्ट होंगी स्मृति भाटिया जो कि चॉकलेटियर हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। स्मृति, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है, चॉकलेटियर।
2: बातें भी मीठी मीठी ही होने
1: मीठी मीठी ही होने वाली है और जब जब मीठी मीठी बातें होंगी तो आप सबके मीठी मीठे सवाल कहाँ गए भाई। आज पूरा का पूरा शो जो है चॉकलेट्स पर आधारित है, मतलब आप चॉकलेटियर अगर बनना चाहते हैं या चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आपके पास है तो फटाफट फोन घुमाइए और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना सवाल लिख कर भेज दीजिए और स्मृति से आप पूछिए कि भाई चॉकलेट खाना कितनी अच्छी बात है और अगर चॉकलेट खाना अच्छी बात है तो फिर बनाना भी अच्छी बात होगी, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इस तरह से करियर इसमें किस तरह से बना सकते हैं। और अनकन्वेंशनल करियर्स की बात कर रही थी निहारिका अभी इससे पहले, तो हम भी इसको कंटिन्यू करते हैं और आज जो टॉपिक है जो करियर है वो भी कुछ ऐसा ही है जो बहुत ज़्यादा सुना नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग बातें नहीं करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना ऐसे करियर पर बात की जाए और एक विकल्प के तौर पर आप इस पर विचार कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो 2342108 ये नंबर है और एक और नंबर है 2342108 जिसका इस्तेमाल करिए, अपना सवाल पूछ डालिए और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9868107070 9868107070। अभी तो मेरे पास एक सवाल पहला बहुत ही बेसिक है और वो ये है कि चॉकलेटियर आखिर होते कौन है।
2: तो चॉकलेटियर वो लोग होते हैं जो बहुत स्पेशलाइजेशन काम करते हैं चॉकलेट्स के ऊपर और चॉकलेटियर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, बीन टू बार या ओनली मेल्ट एंड पोर या डिजाइनिंग चॉकलेट्स, जैसे हम लोग स्पेशलाइज करते हैं चॉकलेट्स को डिजाइन करने में। और हमने 16 साल पहले ये शुरू किया था, उसका एक ही रीजन था कि हम अपने डिजाइन्स के साथ अपने फ्लेवर्स के साथ लोगों के फेस पे एक बहुत बड़ी मुस्कान लेके आए। तो वही आपके चॉकलेट्स को डिफाइन करता है क्योंकि बेकिंग एक पूरा अलग से फील्ड है और मिठाई बनाना अलग फील्ड है और चॉकलेट्स एक बहुत ही स्पेसिफिक निश कैटेगरी में आता है तो उनको हम चॉकलेटियर्स बोलते हैं।
1: तो बड़ा यूनिक, बड़ा अलग प्रोफेशन है, कम ही सुनने को मिलता है। तो आज तो मेरे पास बहुत सारे सवाल बन गए हैं, अभी तक तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपने इतने सारे ऑप्शंस बता दिए तो लग रहा है कि इसमें तो बहुत सारा स्कोप है और भी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इसका स्कोप है और किस तरह आगे बढ़ रहा है। और आपके सवाल के लिए जवाब मैंने पूछ ही दिया है, आपको नंबर बता ही दिया है कि आप सब भी पूछिए, आस्क द चॉकलेट डियर आज का टॉपिक है, इसका फायदा उठाइए। स्मृति से पूछिए कि आखिर आप सब के सवालों के जो जवाब है वो क्या है। 2342108 2342108 ये नंबर्स हैं जिनका आप कॉल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। हमारे साथ गेस्ट आज की स्मृति भाटिया जो कि चॉकलेटियर हैं, तो वो यही बताएंगी ना कि कैसे चॉकलेटियर बना जा सकता है। आप सब भी अगर इस नए प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं तो अपने सवाल पूछ डालिए, क्योंकि आज का टॉपिक है आस्क द चॉकलेटियर। तो चलिए आप फोन घुमाइए 2342-1080 या 2342-1084 और जो भी क्वेरी है वो पूछिए हमारे चॉकलेटियर दोस्त से, और व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 9868107070 ये है व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर। और अब मेरे पास जो सवाल है उसका जवाब ले लेते हैं। ये प्रोफेशन जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं यूनिक है, अलग है और कम ही सुनने को मिलता है। बहुत शायद ही मैंने सुना हो कि किसी ने कहा हो कि मैं चॉकलेटियर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा क्यों है?
1: क्योंकि कहीं ना कहीं सब ये सोचते हैं कि जो बेकर्स हैं या जो हमारे पास बेकिंग की शॉप्स हैं वो सब कुछ करते हैं। हाँ। पर ऐसा नहीं है, जैसे आजकल क्विजींस में भी ऐसी है कि कोई अगर ये टाइप का खाना बनाता है तो वो सभी बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। चॉकलेट

0: इसके साथ जब आप एक चॉकलेटियर हैं तो आप बेकिंग में कोई काम नहीं कर रहे हैं,
1: जी
0: आप पेस्ट्रीज का काम, केक्स
1: जी सर
0: वगैरह वगैरह, आपके ये सब चीज़ें फिर नहीं हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब क्विट करके ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया था बिकॉज़ मैं चाहती थी
1: इस
0: कि
1: उम्र
0: हम लोग
1: इस बात के
0: स्क्वायर्स,
1: लिए
0: चॉकलेट्स,
1: जी
0: बार्स, नट्स, इन सब चीज़ों से थोड़ा साइड में आके कुछ नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो वहीं से एक टर्म निकली, डिज़ाइनर चॉकलेटियर, जो उस टाइम पे बिल्कुल भी 16 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब फिर भी चॉकलेट्स का प्रोफेशन लोगों को माइंड में रहता है कि हमें चॉकलेटियर बनना है, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं था। सो अब हमारे पास 500 फ्लेवर्स हैं और हज़ारों डिज़ाइंस हैं जो हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो इसलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि ये एक निश है और जब आप चॉकलेट्स पे फोकस करते हैं आप उसी पे ही अपना पूरा ध्यान देते हैं कि मैं कैसे नई नई चीज़ें, कैसे रेसिपीज़, क्या डिज़ाइंस, क्या फ्लेवर्स, उसके साथ हम कैसे खेल सकते हैं। मतलब चॉकलेट्स को डिवाइन फूड बोला जाता है और उसके साथ आप इतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको रोज़ बनाने का मज़ा आ जाएगा।
1: और ये मजा खाने में भी बहुत आता
0: बिल्कुल,
1: है
0: हम तो बड़े ऐसे हुए हैं।
1: लेकिन होता क्या है कि हम पेरेंट्स से अक्सर सुनते हैं, हम क्या हम भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ऐसा कहा जाता है?
0: सो इसको दो पार्ट्स में कवर कर सकते हैं।
1: हाँ
0: अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पे चॉकलेट्स को ओरिजिनली, क्योंकि हमने बोला ये टेक्निकली डिवाइन फूड है, तो उस टाइम पे चॉकलेट्स को मेडिसिन माना जाता है, माना जाता था इनफैक्ट। सो उसका मतलब ये कि फीवर, बुखार को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स इसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे इन दी
1: अच्छा
0: ओरिजिनल वे।
1: ओके
0: फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल, स्किन के इश्यूज़ और बीपी वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली ट्रीट कर सकते हो अगर आप राइट फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हो। आजकल क्या है, एडल्ट्रेशन हर चीज़ में है, तो चॉकलेट्स को लेके थोड़ा सा लोग अब डरने लगे हैं। एंड सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हम सारे अक्सर चॉकलेट्स तब खाते हैं जब हमारी नींद का टाइम होता है,
1: अच्छा
0: तो हम बेड में बैठे हैं, कुछ तो अच्छा सा खाने को मन कर रहा है, कुछ तो क्रेविंग हो रही है और मूवी देख रहे हैं या कुछ भी। एक तो वो आजकल सब कहते हैं ना कि क्लिक पे सब ऑर्डर हो जाता है, तो बस मंगवा लिया, सोने से पहले हमने कुछ भी ऐसा खा लिया। तो ऑब्वियसली रात को सोने से पहले तो बोलते हैं कि 1-2 घंटे का गैप होना चाहिए, फिर हम इंडल्ज कर लेते हैं, बहुत सारी खा लेते हैं। सो डिपेंड करता है आपकी चॉकलेट्स आप किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में और क्या टाइप, वो आपकी सारी चीज़ें डिटर्मिन करता है। और बाकी अगर बच्चे चॉकलेट्स नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, हम बड़े होके चॉकलेट्स को नहीं छोड़ना चाहते और हम खुद बड़े हुए हैं ऐसे बचपन से।
1: और आज देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर मिठाइयों का सब्स्टिट्यूट चॉकलेट्स हो गए हो चुकी है। तो मिठाइयों का ट्रेंड सिर्फ इसी वजह से शायद कम हुआ है कि एडल्ट्रेशन उसमें होती है, अब चॉकलेट में भी है तो कैसे पहचानेंगे हम?
0: सो ये आपने बहुत अच्छा सवाल एक्चुअली पूछा है, क्योंकि आगे आगे हम देखेंगे, आई थिंक मुश्किल से 1 साल की बात है जहाँ पे हम देखेंगे चॉकलेट्स लैब में बनेंगी अब। और उसका मतलब है कि लैब बेस्ड कोको से हमारी चॉकलेट्स जो है मैन्युफैक्चर होंगी, और उसमें ये होगा कि एडल्ट्रेशन तो फिर होगी ही होगी, क्योंकि आपकी वो नेचुरल ट्रीज, प्लांटेशंस, कोको प्लांटेशन से नहीं बन के आ रही है। सो उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं, हम लेबल्स पे अगर ध्यान दें कि उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है, और हमारी उसकी लुक एंड फील से ही हमें आइडिया लग जाएगा कि वो कितना टेक्सचर में स्मूथ है, रूम टेम्परेचर पे क्या वो मेल्ट हो रहा है। मतलब आप जैसे ही उसको अपने मुंह में डालेंगे आपको वो फ्लेवर का डिफरेंस ही पता चल जाएगा, अगर आप चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा।
1: सवाल भी आने शुरू हो गए और मैं उनको चाह रही हूँ कि लेना, और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। इंटरेस्टिंग तो होंगे ही क्योंकि चॉकलेट्स की बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में भी ये सब सवाल थे और अभी हम वो बात कर रहे थे तो ऐसे सवाल आने भी शुरू हो गए, तो हम उनको लें। बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक इंटरेस्टिंग सा गाना भी है जो आपने कहा है कि वो आपको सुनना है, तो आपके साथ हम भी सुनते हैं और डांस करते हैं इस गाने पर। सुनते रहिए आप आस्क द चॉकलेटियर इस टॉपिक पर रेनबो हेल्पलाइन। हमारे साथ स्मृति भाटिया है चॉकलेटियर, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है 2342108023421084 ये नंबर्स हैं कॉल करने के लिए और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आज फिर लेट हो गए?
4: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
3: क्यों बैठे थे बाहर?
4: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
5: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: और रेनबो हेल्पलाइन में चल रहा है आस्क द चॉकलेटियर, इस टॉपिक पर शो। तो आज स्मृति भाटिया बताने वाली हैं, जो कि चॉकलेटियर हैं, कि क्यों चॉकलेट खाएं, क्यों ना खाएं, क्या फायदे हैं, और अगर इस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। फिलहाल डिपेंड करेगा कि आपके सवाल कैसे आ रहे हैं। जो अभी एक सवाल कॉल के जरिए मुझ तक पहुंचा है वो हम देखते हैं क्या है, और स्मृति जी उसका जवाब देती हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नवाब अहमद भारती बोल रहा हूँ, बल्ली मारान से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका नवाब जी आकाशवाणी रेडियो पर।
1: धन्यवाद
0: जी। सवाल बताइए।
1: मैं, मेरा छोटा सा सवाल है, उसमें कई सवाल छुपे हुए हैं।
0: हाँ,
1: मुझे ये जानना है कि चॉकलेट बड़ों को कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, और बच्चों को कितनी मिकदार में देनी चाहिए, उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, सही समय क्या है उसको खाने का।
2: नवाब जी, आपने बोला तो बिल्कुल सही, सवाल छोटा, उसके पीछे बहुत सारे सवाल छुपे हुए।
0: और शो कंप्लीट,
2: और शो कंप्लीट हो जाएगा
1: सवाल। सही बात है।
0: थैंक यू नवाब जी, अपना जो जवाब है ना वो अपने रेडियो पर सुन लीजिए।
1: ठीक है, थैंक जी, थैंक यू।
0: तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बड़ों को छोटों को कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, ये सवाल है।
2: सो चॉकलेट सबके लिए बनाए।
0: हाँ,
2: कोई भी एज ग्रुप हो सबके लिए बनाए, और सबसे बड़े बच्चे भी खाएंगे। सबसे बड़े बच्चे मैंने इसलिए बोला क्योंकि बड़े भी चॉकलेट खाते खाते बच्चे ही बन जाते हैं।
0: ये बढ़िया बात बोली आपने।
2: सो इंडल्ज नहीं करना, जिसका मतलब है कि थोड़े थोड़े पोर्शन में हम रोज खा सकते हैं।
0: अच्छा।
2: और अगर हम अपने लेबल्स को पढ़ें जिसपे शुगर कंटेंट सबसे कम हो, यानी कि डार्क चॉकलेट।
0: ओके।
2: सो डार्क चॉकलेट थोड़ा सा बच्चों को खाना मुश्किल होता है, वो थोड़ी बिटर होती है। सो अगर हम चाहें तो 40% और 50% कोको से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका टेस्ट बहुत मीडियम लेवल पे रहता है और बच्चे वो धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। बड़ों के लिए जितना ज़्यादा कोको का परसेंटेज हाई होगा उतना अच्छा है। 70%, 80%, वो धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होता है क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट उतना ही कम आता है। लेकिन क्योंकि शुगर है तो वो आपके हेल्थ के लिए तो अच्छी है नहीं। सो मिल्क चॉकलेट को और वाइट चॉकलेट को सबसे कम रखना चाहिए। और जितने भी हमारे पास कलर्स के साथ चॉकलेट्स बनती हैं या मीठे फ्लेवर्स के साथ बनती हैं, उसको भी हमें कम रखना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि रोज़ हम दो छोटे पीस, या अगर हम एक बार की बात करें तो 2 से 3 क्यूब्स उतना खाएं डार्क चॉकलेट का, इज गुड। लेकिन प्रेफर करें कि हम कोशिश करके दिन में ही खाएं। उसका रीजन है कि हम दिन में अपना काम करते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं, तो सब डाइजेस्ट हो जाता है, वो हर्ट नहीं करता। और अगर हम रात को सोने से पहले खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके, जैसे कि हम खाने के लिए भी बोलते हैं कि एकदम खाना खा के नहीं सोना चाहिए, तो वो चॉकलेट्स भी आपको हर्ट करेगी। मैं ये सबको बोलती हूँ कि हम खामखा में डिवाइन फूड को ब्लेम कर देते हैं कि चॉकलेट्स तो हमें बीमार करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मैंने जैसे शुरू में बताया, हार्ट डिसीजेज, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स, आपके जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी चीज़ों को चॉकलेट्स ट्रीट करता है। और कहीं ना कहीं मिथ है कि उससे एक्ने होता है, उससे हेडेक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: मुझे लग रहा है कि आपने जैसा बताया कि आप चॉकलेट बहुत पसंद करती हैं और आप चॉकलेटियर हैं तो क्यों नहीं पसंद करेंगी, लेकिन मुझे इस बात पे तब बिलीव कम होता है शायद, अब जब आप सिर्फ कहती, मुझे आपको देख के लग रहा है कि ये काफी कुछ काम करता है।
2: कोको बटर लगाओगे तो आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ रहेगी।
0: हाँ, और वो स्मूथनेस आपकी स्किन पर दिख रही है। और एक सवाल भी ऐसा आया हुआ है तो ले ही लेते हैं। पैंथर तोमर कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से चेहरे पर निखार या सुंदरता आती है, ये क्या बात सही है?
2: बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि हम क्या टाइप ऑफ चॉकलेट खा रहे हैं।
0: अच्छा।
2: अगर हम मिल्क चॉकलेट खाते रहे या वाइट चॉकलेट खाते रहे और बोले कि अरे मेरे फेस पे तो पिंपल आ गया सुबह उठ के, या फिर मेरे फेस का तो ग्लो ही नहीं आ रहा, स्किन मेरी और खराब होती जा रही है, तो वो तो नेचुरल है क्योंकि वो हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर हम जितनी रॉ फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट, कोको पाउडर की हाई परसेंटेज कंज्यूम करेंगे, उतना स्किन पे वो डिफरेंस आपको विद टाइम पक्का 100% दिखेगा।
0: अच्छा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि क्या चॉकलेट को फ्रिज में रखना सही है?
2: सो टेक्निकली बोला जाए, साइंस यही बोलती है कि चॉकलेट्स को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें और फिर कंज्यूम करें, तो सबसे अच्छा उसका टेस्ट और बेनिफिट उसी से आता है।
0: अच्छा।
2: फ्रिज में हम रखते हैं बिकॉज हमारे गर्मी इतनी होती है तो हमें रखना पड़ता है। सो 40 एंड अबाव में हम फ्रिज में रख सकते हैं, बट उसका बेस्ट तरीका इज रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट्स कंज्यूम करना। मैं खुद रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम करती हूँ।
0: ओके, फ्रिज में रखने से क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं?
2: मतलब वो आपको टेस्ट इतना नहीं आएगा क्योंकि अब वो इतना सॉलिड हो गया है। और अगर आजकल की चॉकलेट्स जैसे इतनी तरह की बनती हैं, वो कुछ ऐसी चॉकलेट है जो प्योर नहीं है, तो वो आपको इतना फ्लेवर उसका नहीं पता चलेगा, उसका टेस्ट इतना नहीं आएगा। एंड क्योंकि वो ऐसी चॉकलेट होगी तो वो बेनिफिट भी इतना नहीं देगी। सो आपके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे कोको मास, कोको लिकर, कोको पाउडर, देन वनीला, ये सब चीज़ें आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यही टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपकी प्योर चॉकलेट बनाती हैं, ना कि हाइड्रोजनेटेड फैट, पाम ऑयल, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। अब तो लेबल्स पे चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेटी, ये सब चीज़ें लिखने लग गए हैं मिसगाइड करने के लिए।
0: अच्छा, ये पैंथर तोमर का एक सवाल और भी है कि जो अभी हम बात कर रहे थे मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में, तो इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डार्क चॉकलेट क्या सेहत के लिए अच्छी है या मिल्क चॉकलेट?
2: डार्क चॉकलेट ही सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है। मिल्क चॉकलेट आप कभी कभी ले सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, कि क्रेविंग होती है हमें कुछ अच्छा सा खाना है। वो एडिक्टिव होती है क्योंकि अच्छा। उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, शुगर से थोड़ा एडिक्शन तो होता ही है फिर। बट अगर आप हेल्थ के पर्पज से, सेहत के पर्पज से खाना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डार्क चॉकलेट, एंड जितना हो सके 50% से ऊपर खाएंगे, 70-80% तो वो सबसे बेस्ट है।
0: तो चलिए, आपके सवाल कहाँ है भाई, आस्क द चॉकलेटियर इस टॉपिक पर। आज चॉकलेट के टॉपिक पर जब बात कर रहे हैं और चॉकलेटियर के खुद कह रही हैं कि हमसे पूछिए, जितने भी सवाल हैं वो पूछ डालिए। स्मृति भाटिया हमारे साथ हैं जो चॉकलेटियर हैं, रेनबो हेल्पलाइन में इस टॉपिक पर आज बात हो रही है। तो आप फटाफट फ़ोन घुमाइए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल भेज डालिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070 या फ़ोन करने के लिए नंबर चाहिए तो 2342108 या 2342108 आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, उन्हें आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: स्मृति जी से बात कर रहे हैं हम, जो कि चॉकलेटियर हैं, और हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो चॉकलेटियर कैसे बनी और हम क्या कर सकते हैं चॉकलेटियर बनने के लिए। आपने कैसे सोचा कि चॉकलेटियर एक प्रोफेशन हो सकता है?
1: चॉकलेटियर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
0: अच्छा।
1: मैं अपने आईटी करियर में, जॉब में बहुत खुश थी।
0: हाँ।
1: बट मुझे कहीं ना कहीं मन था कि मैं चॉकलेट्स, मुझे क्योंकि पसंद थी तो एज अ हॉबी उसको स्टार्ट करूँ। स्लोली वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे कुछ डिफरेंट बनाना था, सो वही मेरा फोकस एरिया था। अब कोई अगर चॉकलेटियर बनना चाहता है तो उसके लिए आप बहुत तरह के कोर्सेज आते हैं, पहले इतने अवेलेबल नहीं थे। अब डिग्री कोर्सेज भी आते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं।
0: अच्छा।
1: सो आप उनसे एक सर्टिफिकेशन कोर्स करके एटलीस्ट आप अपना बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं चॉकलेट मेकिंग का। और चॉकलेट मेकिंग एक बहुत कॉमन मिथ है कि कुछ नहीं होता उसमें, तो बस हमने उसको चॉकलेट के स्लैब्स को मेल्ट किया, उसको मोल्ड में डाला, उसको सेट किया, उसको सेल कर दिया। वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ चॉकलेट बिजनेस है।
0: अच्छा।
1: अगर आपको बिजनेस करना है तो आप उसमें अपना क्या USP लेके आ सकते हैं, यानी कि क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आ सकते हैं, क्या चीज है जो आपको अलग करेगी बाकी लोगों से, वो चीज अगर आप ध्यान देंगे अपने बिजनेस पे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से आगे लेके जा सकता है।
0: अच्छा।
1: एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे कि कुकिंग है या कोई भी फील्ड है, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ही। बहुत बारी आपकी शुरू शुरू में चॉकलेट्स बर्न भी हो सकती है, जल गई तो वो खराब नहीं होती, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, रीयूज कैसे कर सकते हैं, वो सब तरीके फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप आपको उस कोर्स में ये सब चीजें समझाई जाएंगी। चॉकलेट्स अगर, जैसे बोलते हैं कि एक व्हाइट लेयर आ जाती है चॉकलेट्स के ऊपर, सुबह चॉकलेट्स खराब है, वो खराब नहीं होती है, वो उसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज है ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, सो वो खराब चॉकलेट नहीं मानी जाती। सो आप अपने खुद का ये करियर बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए ये कोर्स करने के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, आपकी ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। कुछ लोग सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं, कुछ बड़ों को, कुछ सबको, या कॉर्पोरेट्स को, इवेंट प्लानर्स को, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है वो डिफाइन अच्छा। करके उसके हिसाब से मार्केटिंग करें। पैकेजिंग, हर तरह की पैकेजिंग रखना,

0: जिससे कि आप मार्केट में थोड़ा सा अलग से दिखें, कि स्टैंड आउट कर सकें कि हमसे ही क्यों लोगों को चॉकलेट्स परचेज करनी है. सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. आपका डिलीवरी टाइम कैसा है, आप कस्टमर्स की क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि नहीं, कस्टमर्स जो चॉकलेट्स चाह रहे हैं क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ पैसे अर्न करने हैं, क्वालिटी जाए भाड़ में. अगर वो फोकस एरिया है तो वो सब थोड़ा सा आपके बिजनेस को ऊपर नीचे कर सकता है.
1: हाँ, वो तो हर बिजनेस में है कि क्वालिटी मैटर्स.
0: सो क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस, ये सब चीज़ों पे ध्यान रख के कस्टमर फोकस रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे.
1: कोर्स कितने साल का होता है और ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा होता है, ये क्या दिल्ली में भी कर सकते हैं? पैंथर तोमर पूछ रहे हैं.
0: ये तो पक्का अपना करियर शुरू करके रहेंगे, इनके सवाल बहुत सारे हैं. सो आज के वर्ल्ड की बात करें तो अब तो बहुत ऑप्शंस हैं. आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं. अब आपके पास हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कोर्स आपका 1 दिन से लेके 3 दिन, 6 महीने, 1 साल, सब तरह के ऑप्शंस हैं. आप कितना डीप जाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस. मैंने पहले भी सेम चीज़ बोली है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अपने टेस्ट ऑफ चॉकलेट्स को डेवलप करेंगे, अलग अलग लोगों से टेस्ट करवाएं अपनी चॉकलेट्स, उनका फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक पे काम करिए. ना कि आप क्रिटिकल हो जाएं कि यार मुझे गलत फीडबैक कैसे आ गया. उस सब चीज़ों पे ज़्यादा काम करेंगे तो आप कर पाएंगे. बट कोर्सेज अब बहुत तरह के अवेलेबल हैं. बट आज भी ऑफलाइन कोर्सेज मेरी प्रेफरेंस अभी भी है, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको वो हैंड्स ऑन इतना नहीं मिल पाता जितना आप किसी के सामने रह के आप ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं.
1: हाँ, तो ये ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ज़रूरी है कि कितना, मतलब आपको कितना गर्म करना है, किस तरह से गर्म करना है, सब कुछ ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता. प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो ज़्यादा
0: बता सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज आएगी,
1: हाँ, वही
0: वो सामने रह के फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से आएगी. तो आज भी इस टाइम में भी मैं ये बोल सकती हूँ, मेरे लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू ऑनलाइन.
1: तो इसमें आपने जैसे कहा कि बिजनेस भी जैसे कई तरह का हो सकता है, इसमें भी कई वैरायटी होगी, क्या क्या किया जा सकता है?
0: सो चॉकलेट्स में अगर तो आप हर तरह की चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है. लेकिन अगर आप कोई कैटेगरी, जैसे कि आपने सिर्फ ट्रफल्स पिक किया है कि मुझे अच्छा, सिर्फ ट्रफल्स बनानी है, उसमें भी आप कम से कम 50 to 100 टाइप्स ऑफ ट्रफल्स बना सकते हैं. सो वो ही आपके लिए एक बिजनेस बन सकता है. या अगर आप बॉनबॉन्स पिक करना चाहें, रिलायंस पिक करना चाहें, ये इन इटसेल्फ सब कैटेगरीज ही आपके लिए एक प्रॉपर बिजनेस बन सकती हैं. जैसे हमारा फोकस इन सब पे है, क्योंकि हम है ही डिजाइनर चॉकलेटियर, तो हमें एटलीस्ट सारी कैटेगरीज तो रखनी चाहिए. सो हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, चाहे वो सेंटर फिलिंग है, चाहे वो बीन टू बार है, या फिर मतलब हमारा फोकस इन सब चीज़ों पे रहता है. पर आप चाहें तो आप इसमें से पिक कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ बॉनबॉन्स और रिलायंस करना है, सिर्फ ट्रफल्स करना है, सिर्फ सेंटर फिलिंग करना है, वो आप कर सकते हैं.
1: एक सवाल अभी भी वही, इज चॉकलेट हार्मफुल फॉर टीथ? महेश कुमार कह रहे हैं. टीथ की बात हमने शायद नहीं करी थी, बाकी तो बहुत सारे फायदे बताए आपने.
0: हाँ, सो टीथ की बात करनी रह गई. सो चॉकलेट्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे दांतों के लिए बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है. इम्पॉर्टेंट इज उसको रिंस करना. सो हम चॉकलेट्स चाहे दिन में खाएं चाहे रात को खाएं, एक बार खाएं या 10 बार खाएं, उसके बाद रिंस करना बहुत ज़रूरी है. तक क्योंकि आपके अगर वो दांतों के साथ चॉकलेट जो है वो चिपकती ही चिपकती है, आप जितनी भी कोशिश कर लें.
1: नवाब अहमद भारती भी यही कह रहे हैं कि कब खाना है ये बता दीजिए. तो मेरे ख्याल से आपने बता ही दिया, रात में अवॉइड करना है, बाकी कब अवॉइड करना है या खाना है आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए.
0: रात को ही अवॉइड करना है, वो भी सोने से एकदम पहले. अब लोग कहेंगे डिनर के बाद मीठा ना खाएं तो कैसे हो सकता है, पर आप डिनर के बाद बिल्कुल खाएं, बट वही गैप, कम
1: गैप
0: से कम 1 घंटे का, 1.5 घंटे का गैप हो तो थोड़ा सा सही रहता है.
1: चलिए, आप ही की पसंद का एक और गाना, फिर लौट कर आते हैं, चॉकलेट्स पर बात करते हैं. और मुझे लगता है कि ये बात शो के बाद भी जानी चाहिए, या शो के बाद बात नहीं जाए तो चॉकलेट तो जरूर घर जानी चाहिए आज.

0: तो हमारा पागल स्टुपिड मन बार बार कहता है चॉकलेट खाने को, तो अब कोई रोक टोक नहीं है, और एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हो गया इस शो को करने के बाद और ये इनकी बातें, स्मृति की बातें सुनने के बाद। नहीं, उससे पहले तो मुझे ऐसा ही लगता था कि चॉकलेट हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। वो आपने बता ही दिया कि वो जो इसको बदनाम किया गया है इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारी मिलावट हो जाती है, वो रास्ते में बाधा बनती है, तो इसी वजह से हम मना करते हैं। तो हमें एक लिमिट में हर चीज़ खानी चाहिए, और अच्छा भी होता है मुझे लगता है आपकी बातों से कि अब इसका ध्यान रखते हुए हम खा सकते हैं, है ना, गिल्ट फ्री होकर। तो अभी हम मेकिंग की बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में कोई जाना चाहता है तो किस तरह से तैयारियां करें और क्या मेकिंग प्रोसेस होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड करिए आप।
1: सो इसके प्रोसेसिंग में जो हम अभी तक बात कर चुके हैं उसके अलावा हमारे पास किस तरह के मोल्ड्स हैं, क्योंकि अब मार्केट में बहुत वैरायटी मिलती है, तो हम अपने मोल्ड्स के साथ अपने डिज़ाइंस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हैंडमेड चॉकलेट्स के साथ भी हम काम कर सकते हैं, जिससे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बन के आती हैं। उसकी पैकेजिंग, उसकी हम डेकोरेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं, क्या वो क्लाइंट्स को एकदम से अपील करेगा, और सबसे ज़्यादा उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, और उसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग, उसकी फोटोग्राफी, उसके बारे में

0: क्लाइंट्स के पास सही इन्फॉर्मेशन जाना, सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखना, हमारे मीडियम्स अब यही सब है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए. और इसके साथ साथ हम इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं. पैकेजिंग में हमारे पास, क्योंकि अब इन्वायरमेंट को लेके सब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है और होना भी चाहिए, सो उसमें भी इको फ्रेंडली ऑप्शंस बहुत आती हैं पैकेजिंग में. एंड उसके साथ हमारी पैकेजिंग के टाइप्स ऐसे होते हैं कि कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ हैम्पर्स हैं, कुछ बैग्स, पोटलीज, बहुत तरह की हैं. और पैकेजिंग के भी अब कोर्सेज आते हैं, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि प्रोफेशन पैकेजिंग एक स्पेशलाइज्ड निश बन गया है. सो उसके लिए भी आप सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजिंग हर किसी को नहीं आती. एक गिफ्ट रैप करना और एक गिफ्ट बॉक्स को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत फर्क है. सो अगर हम पैकेजिंग को भी अगर हम प्रेजेंटेबल बनाएं, उसके लिए भी थोड़ा सा कोर्स कर लें, रिसर्च करके आए, तो उससे भी हमारी जो है मार्केट बहुत इम्प्रूव हो जाती है.
1: ओके, यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा पैकेजिंग भी ज़रूरी है ना? प्रोडक्ट को तो, और प्रोडक्ट में भी क्या फिनिशिंग चाहिए, फ्लेवर्स पर किस तरह से काम किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा और अच्छा, क्योंकि फ्लेवर्स क्या होता है बहुत मायने रखता है. ज़रा सा अगर फ्लेवर का चेंज हुआ तो वो एक तरह से अट्रैक्शन बन जाता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है?
0: सो फ्लेवर्स का प्रोपोर्शन, उसकी शेल्फ लाइफ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और इसके साथ साथ मेरे लिए फूड एनर्जी बहुत मैटर करती है. अगर मैं कोई भी चीज़ गुस्से में जाके बनाऊंगी तो वो कभी अच्छी बन के नहीं आएगी, आपके वही इमोशंस उसमें जाएंगे. सो अगर आपकी फूड एनर्जी पॉजिटिव है, जैसे हमारी आदत है हम कुछ साथ साथ चैंट करते हुए बनाते हैं, तो वो आपकी पूरी वाइब्स, वाइब्रेशंस, एनर्जी सब चेंज हो जाती है. जितना प्यार उसमें डालेंगे उतना उसका फ्लेवर निकल के आएगा. और फ्लेवर का प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन के साथ शेल्फ लाइफ, जैसे अगर आप नट्स यूज कर रहे हैं चॉकलेट्स में तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी. अगर आप फ्रेश फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी 2-3 दिन ही होगी.
1: अच्छा,
0: तो ये सब चीजों का ध्यान रखना. और कोको पाउडर की लाइफ कितनी है तो आप वो भी,
1: हाँ ये जरूरी है किसी भी बिजनेस में कि किसी भी प्रोडक्ट को जो भी आप वो बना रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग प्लान करते हैं अपना बिजनेस.
0: उसकी लाइसेंसिंग है, फूड लाइसेंस है, GST है, लॉज, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंप्लायंस बिल्कुल करना चाहिए.
1: हाँ हाँ.
0: और आई थिंक किसी ने शायद ये भी पूछा था बीच में कि शुगर फ्री चॉकलेट्स का कैसा रहता है, वो हेल्दी होती है, कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो शुगर फ्री में भी आप इंग्रेडिएंट जरूर देखें कि उसमें क्या लिखा है. जैसे कुछ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मॉन्क शुगर अलाउड होती है, सो आप वो ले सकते हैं. तो आपके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं. सो वो पता करना, और अगर मेडिकली वो आपको अलाउड है इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, आप बिल्कुल उसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस के बेसिस पे बहुत चॉकलेट्स अब बनने लग गई हैं, डेजर्ट्स भी बनती हैं.
1: ओके,
0: सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप नहीं खा सकते, आपकी क्रेविंग जो हो रही है उसको होने दो.
1: ये सवाल भी आया हुआ है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बाजार में कई शुगर फ्री चॉकलेट्स भी आ रही हैं, तो चॉकलेट, इन चॉकलेट्स को क्या डायबिटीज पेशेंट्स भी खा सकते हैं?
0: आप अपने इंग्रेडिएंट्स को डॉक्टर, आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे क्रॉस चेक करवा लीजिए. सारे अच्छा. इंग्रेडिएंट्स आपको अलाउड नहीं होंगे. कुछ शुगर फ्री जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे किसी के कुछ नीज में इम्पैक्ट आ सकता है या ऐसे कुछ भी आ सकता है लॉन्ग रन में. तो अपने शुगर फ्री चॉकलेट्स के भी इंग्रेडिएंट्स जो लेबल पे हैं वो अपने डॉक्टर से क्रॉस चेक करके ही आप कंज्यूम कीजिए. और शुगर फ्री चॉकलेट्स कुछ बिल्कुल होती हैं जो सेफ होती हैं, आप बिना टेंशन के बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं.
1: अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं ले लेती हूँ कि अभी हाल ही में FSSAI ने पैकेट बंद खाने में ज़्यादा शुगर या नमक होने पर चेतावनी लगाने को कहा है, क्या ये नियम चॉकलेट पर भी लागू होगा?
0: बिल्कुल होगा. इसीलिए हमारे लेबल्स हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि लेबल्स में शुगर कंटेंट कितना लिखा है, और उसी के साथ हम ये अपनी चॉकलेट्स को कंज्यूम करें, बिल्कुल एप्लीकेबल है ये. इनफैक्ट आपने शायद बीच में बोला था, किसी ने डॉग्स के लिए भी पूछा है कि डॉग्स को चॉकलेट खिलानी चाहिए कि नहीं. प्लीज़ बिग नो, बिल्कुल नहीं, जहर है वो डॉग्स के लिए.
1: अच्छा, कोई भी मीठा या फिर
0: कोई भी मीठा, कोई भी नमक, ये सब चीजें जहर है.
1: तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम सबको

0: अपना ये जो शो है वाइंड अप करना चाहिए। हालांकि बातें इतनी मीठी मीठी हो रही हैं कि लग रहा है कि बंद नहीं करें, लेकिन क्या करें, जाना होगा। उससे पहले आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी, संजय मक्कड़, बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, पिंटू दीवाना, अशरफ अली, नवाब अहमद भारती, ये सब इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल क्योंकि हम कवर कर चुके हैं और टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो अभी फिलहाल इन सबका थैंक यू बोलते हैं। और आप सब जिन्होंने सवाल पूछा, हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा वाला धन्यवाद तो हमारी चॉकलेटियर स्मृति भाटिया को, जो इतनी सारी ना सिर्फ बातों का सोल्यूशन बताया, बल्कि उन्होंने आज गिल्ट फ्री भी कर दिया कि भाई चॉकलेट खाइए और दिल खोल के खाइए,
1: चॉकलेट खाओ, ऐश करो, जिंदगी को इंजॉय करो।
0: तो प्रियंका भी स्टूडियो में आ गई है और इनको भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगली बार से जब भी आए वो चॉकलेट लेकर आए, आई वोंट माइंड।
1: इसलिए मैं आज लेके आई हूँ पूरा बॉक्स आपके लिए।
0: तो थैंक यू सो मच इतनी मीठी मीठी बातें करने के लिए, इतनी मीठी मीठी बातें, बातों के साथ साथ इतने इस अलग तरह के बिजनेस के बारे में इतने बढ़िया से आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
1: मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और सबके साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप सबने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सबसे ज़रूरी होते हैं एक शो के लिए। हाँ। और बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं सब,
0: बहुत अच्छे सवाल, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी मेहमान स्मृति भाटिया, जो कि चॉकलेटियर हैं। आस्क द चॉकलेटियर, ये था आज का टॉपिक जिस पर आप सबने वाकई में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, धूम मचा दी। थैंक यू सो मच स्मृति स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से। और इसी के साथ मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, प्रियंका आ चुकी है ढेर सारी बातों के साथ, तो उनके साथ आशियाना में जरूर जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। फिलहाल एक और गाना स्मृति की पसंद का।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श में कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच का 10वां संस्करण गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों की सराहना करते हुए राष्ट्र निर्माण में कर्मयोगी बताया उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज संवत्सरी के अवसर पर जनता को शुभकामनाएं दी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होती, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में भी बृहस्पतिवार तक कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। और अंत में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं निशा भरद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम आशियाना में। और आज का हमारा विषय है सुरक्षित बचपन सशक्त कल। श्रोताओं, हर बच्चा ईश्वर का रूप होता है और उनका बचपन सुरक्षित और खुशहाल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के अधिकारों की, उनके सामने आने वाली चुनौतियों की और ये जानने की कि हम उनके भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR के चेयरपर्सन डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास जी। नमस्कार सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए।
1: सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जब हम बाल अधिकारों की बात करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि इतने छोटे बच्चों के भी अधिकार होते हैं, और किस उम्र से ये अधिकार शुरू हो जाते हैं?

0: अधिकारों की परिसीमा में कौन कौन से अधिकार आते हैं?
1: देखिए निशा जी, ये आपने बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है। 1948 में जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है और भारत की एक महिला है हंसाबेन मेहता, वो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं ड्राफ्टिंग के अंदर जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, उसके ड्राफ्टिंग के अंदर वो सम्मिलित थी। तो जो पहला आर्टिकल था उसका, उसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ था All men are born free and equal। आप मानसिकता देखिए, उस महान महिला ने पूरी विश्व बिरादरी को एक तरह से ललकारा, कहा महिलाएं बच्चे कहां जाएंगे, इसका जवाब नहीं था। और भारत की उस महान महिला के कारण आर्टिकल पहला जो था उसका, उसमें परिवर्तन हुआ, अमेंडमेंट हुआ और वो आया ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। तो आप देखिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो गंगोत्री है मानव अधिकारों की, सारे अधिकारों की, जिसको यूएन की साधारण सभा ने, जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया और उसी दिन मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं यूएन के, कन्वेंशन वगैरह हैं, बच्चे की एंट्री तो बहुत बाद में हुई है, तो बच्चे को तो भुला रखा था हमने। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखिए आप कब जाकर के बना है। तो बच्चे के साथ में यदि हम देखें तो आज के इस आधुनिक विश्व बिरादरी ने अन्याय किया है और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके की जागरूकता भारत में नहीं अनेकों देशों में भी आई है तो अब परिस्थितियां बदली हैं।
0: तो जैसे मैंने पूछा था कि कौन से अधिकार होते हैं जिनको हम मानते हैं कि बाल अधिकार में आते हैं और कौन सी उम्र से शुरू हो जाते हैं बच्चों की?
1: देखिए बाल अधिकारों को समझने के लिए आपको जो मूलभूत मानव अधिकार है उनको समझना होगा। ये सारे अधिकार जो बच्चों के हैं, ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी, उससे सारे के सारे निकल करके आते हैं कि आप उनको बचपन कैसा देते हैं, आप उनको सुरक्षा कैसे देते हैं, आप उनके पोषण का किस तरह से ध्यान रखते हैं, उनके कल्याण का किस तरीके से ध्यान रखते हैं, उनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से, उनके रिलेटेड जो डिसीजन है उसके अंदर किस तरह से रखते हैं। तो एक समग्र जो पूरा का पूरा है वो एक आर्किटेक्ट जो है वो चाइल्ड राइट्स के रूप के अंदर वो सामने आता है।
0: और किस उम्र से शुरू हो जाते हैं बच्चों के अधिकार?
1: गर्भस्थ शिशु से लेकर के 18 साल तक, जिनकी आयु पूरी नहीं होती है वहां तक बच्चों को अधिकार रहते हैं।
0: तो DCPCR की भूमिका आप कैसे देखते हैं चेयरपर्सन के रूप में, क्या है, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, कितना कुछ करना शेष है?
1: निशा जी मैं बताऊं आपको कि दिल्ली का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये जो भी करता है पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देती है क्योंकि भारत की राजधानी है और भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, माइग्रेट होकर के भी आते हैं। तो यहाँ पे आना और जाना बच्चों का ये लगा रहता है। हम यहाँ पे जो पहल करेंगे उस पहल का बाहर भी असर पड़ता है उन चीजों का। हमने ये संकल्प लिया है कि हम रिएक्टिव ही नहीं होंगे, हम प्रोएक्टिव भी होंगे। हम परिवारों के आने का इंतजार नहीं करेंगे और हम कर भी नहीं रहे। हमको यदि संचार माध्यमों से भी या न्यूज़पेपर्स में भी यदि हमको बच्चों से संबंधित यदि कोई प्रकरण पढ़ने को मिलता है, पब्लिक के डोमेन में आता है, हम उसमें भी स्वतः संज्ञान भी लेते हैं। तो हमारा जो काम है वो प्रोएक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है और उसके साथ साथ हम चारों तरफ ये देखते हैं कि हम किस तरह से उनका जीवन बेहतर बना सकते हैं।
0: बात करें दिल्ली की, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां पुनर्वास बस्तियां भी हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या पहल है आपकी?
1: देखिए दिल्ली के अंदर जो है चुनौतियां मल्टीफोल्ड है। इस तरीके से मैं कहूंगा कि दोनों माता पिता जो है उनको नौकरी करना आवश्यक हो जाता है, पीछे बच्चा अकेला छूट जाता है, एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि मध्यम वर्गीय या मैं कहूँ उच्च वर्गीय जो परिवार भी हैं वो बच्चों को साधन तो मुहैया करा देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते उनको, बच्चा फिर वही पीछे छूट जाता है। आप निशा जी कोई भी मकान लेने के लिए जाते हैं तो आप रियल्टर से आप ये कहते हैं मुझे अटैच्ड बाथरूम चाहिए। तो आज का जो युग है और पर्टिकुलर जो दिल्ली के अंदर हम जो देख रहे हैं, अटैच्ड बाथरूम्स, डिटैच्ड फैमिलीज, बच्चे रिश्ते भूलते जा रहे हैं, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, हम कहां से कहां जा रहे हैं। बच्चों को आपने साधन लाके दे दिए, वो उसमें देख क्या रहे हैं हम ये देख ही नहीं पा रहे। बच्चों को आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजते, बच्चा स्कूल में पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा किन की संगति के अंदर है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह के केसेज जो हैं वो आकर के और आपके अंतर्मन को हिला देते हैं एकदम से।
0: तो सर आप बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे केसेज हैं जिनके बारे में आप बताएंगे तो मानवता सोचने पर मजबूर हो जाएगी। कुछ रील्स हम भी ऐसी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम ऐसे वाकये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है और वो किसी प्ले स्कूल में है या कहीं पर है और उनके साथ ऐसे हादसे पेश आते हैं जो कि झकझोर जाते हैं अंतर्मन को और हम अपने आप से ये प्रश्न करने को मजबूर हो जाते हैं कि हम बच्चों को किस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं कि अपने बच्चों को हम किनके हाथों में सौंप रहे हैं, हम ये नहीं देखते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सुरक्षित है, कैसा माहौल सुरक्षित होगा, बच्चों को वहां भेजा जाए ना भेजा जाए, तो बहुत ही संकोच है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिवार भी सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। तो जैसे पहले बच्चा एक ज्वाइंट फैमिली में पला करता था, उन्हें एक संरक्षण प्राप्त होता था, तो आजकल बच्चा झिझकता है, माता पिता को आकर ये भी नहीं बता पाता कि मेरे साथ ये हादसा पेश आया। जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, उन्हें कई बार रिस्पॉन्सेज ऐसे मिल जाते हैं कि वो खुद से देखते हैं कि क्या हो रहा है बच्चे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, 8 जुलाई को हमने पदभार ग्रहण किया, उसी दिन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता हुई और बैठक के अंदर उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के ऊपर अपनी चिंता भी जताई और अपनी प्राथमिकता के बारे में भी बताया। अगले दिन हमने जितनी दिल्ली की बाल कल्याण समितियां हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, चेयरपर्सन, हमने मीटिंग बुलाई और 10 तारीख से हम जुट गए। दिल्ली का एक स्कूल है, मैं आपको बताऊं, वहां मैं बच्चियों के साथ में बैठा हुआ था, सेशन चल रहा था पोक्सो के ऊपर, बैक टच गुड टच उसके ऊपर, छठी या सातवीं कक्षा की बात है, 29 जुलाई का दिन था, मुझे आज भी वो दिन याद है। दो तीन बच्चियां थी, उनके आंसू गिर रहे हैं टपक टपक टपक टपक, काउंसलर से पता कर रहा है, मतलब देवर रेविस्ट बाय देयर ओन मैन, एक इस तरीके की घटना हुई। दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैं 1.25 साल के करीब, मुझे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ भी चेयरपर्सन के रूप में काम करने का मौका मिला, मेरा पहला दिन था। 14 साल की बच्ची, 5.5 महीने की प्रेग्नेंट, 32 किलो वजन है हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में, एक इस तरीके की घटना हुई। तो जो खुद बच्ची है, जिनको हम कंजक जिमाते हैं, एक पुलिस स्टेशन से 3 बच्चियां प्रोड्यूस की जाती, हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब ये हल्ला मचा रहे थे, 100 नंबर की कॉल थी पड़ोसियों की, हम लेकर के आ गए। हमें लगा कि नहीं, इतना आसान तो नहीं हो सकता, काउंसलिंग से फिर चीजें आती हैं, जब बच्चा थोड़ा एट ईज आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर, ड्रग पेडलिंग के अंदर बच्चे शामिल, और ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। दूसरा आपका हो गया ड्रग्स का एक इशू है, चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं, क्योंकि गरीब के लिए 2+2=4 रोटी होती है, वो भी चीजें देखनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने, आपने देखा भी होगा संचार माध्यमों से, इनसे भी, कि चाइल्ड बेगर फ्री दिल्ली बनाने का आह्वान किया और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने हमको DCPCR को दी। दिल्ली के अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर कोई बच्चा जो है वो भीख नहीं मांगे। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं इस चीज की कि बच्चों को भीख नहीं सीख दें, और हम उसके बारे में, हमारी कार्य योजना भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इस तरीके की चुनौतियां हैं यहाँ पे राजधानी के अंदर, इसके बावजूद कि यहाँ की जो पुलिस है वो सजग है और एक वेल इक्विप्ड भी है, सब कुछ है, पर फिर भी चुनौतियां हैं। तो बहुत कुछ करना है हमको, तो DCPCR के लिए चुनौतियां ज्यादा है, काम हमारे पास बहुत ज्यादा है करने के लिए, समय कम है।
0: तो हमें इन ऐसी चीजों से मुक्ति पानी है या हमें जागरूक होना है, अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी कि जैसे अभी आपने बताया कि इलीगल इंस्टीट्यूशन था जहां बच्चे पढ़ रहे थे और जहां इतना बड़ा वाकया पेश आया, तो ऐसे केसेस में कैसे देख सकते हैं अभिभावक कि कहां हम बच्चे को भेज रहे हैं, वो सुरक्षित जगह है भी कि नहीं, क्या कोई प्रोटोकॉल होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या चेकलिस्ट होती है जिस पर कि खरा उतरना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन को?
1: देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से इलीगल जो है स्कूल वो चली नहीं सकते, अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनके साथ में हम कार्रवाई करेंगे मिल करके, और हम ये भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि दिल्ली में ऐसा कोई दूसरा स्कूल नहीं हो जो बिना मान्यता के सैकड़ों की संख्या में बच्चों के साथ में पढ़ा रहा हो। लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि हम हर किसी भी समस्या का समाधान सरकार से चाहें तो वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारियां होती है, सरकार का कर्तव्य होता है, तो हमारे नागरिकों के भी जैसे अधिकार होते हैं तो नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं, बच्चों के भी अधिकार हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी ड्यूटीज बनती है। और मैं कहूंगा और भी नहीं तो बच्चों को समय ही दें, उनके साथ वार्तालाप करें। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में मेंटल हेल्थ की आ रही है, और मेंटल हेल्थ की इसलिए आ रही है हमने उनके रिश्ते खत्म कर दिए हैं। माता पिता समय नहीं दे पाते क्योंकि वो अपने जिंदगी में भाग रहे हैं, अब ये बेताशा दौड़ कहां लेकर के जाएगी, और इसका जो कीमत है वो बच्चे को चुकानी पड़ती है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने आपसे पूछा था पुनर्वास बस्तियां हैं दिल्ली में, और एक तरीके का हम देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड भी है। अभी आपने बताया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है समय से पहले, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों को एक्सेस नहीं है जहां होना चाहिए, जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए, तो एक डिजिटल डिवाइड हम देख रहे हैं। तो उस चीज के लिए कैसे काम किया जाना चाहिए सोसाइटी में कि डिजिटल डिवाइड जो है ये खत्म हो?
1: देखिए, इसके लिए स्कूल्स के जो टीचर्स हैं हमने उनको टारगेट करने का प्रयास किया है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको दोनों कैटेगरी के जो स्कूल्स हैं इन स्कूल्स को हम लोग टारगेट बना करके इनको साथ लेकर के चलेंगे। डिजिटल डिवाइड के अंदर दूसरी चीजें और भी हैं। डिजिटल के अंदर वो लोग भी हैं जिनकी नाम मात्र की शिक्षा हुई है और जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं। जो शुरुआत करने जा रहे हैं चाइल्ड वेगर फ्री डेली के अंदर, तो बच्चों का जो हम कैटेगराइजेशन दो तरीके से करेंगे, एक तो वो

0: बच्चे जिनको हम फॉर्मल एजुकेशन में डाल सके। तो जब फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम के अंदर यदि बच्चा चला गया तो उसके बाद में आप जो कह रहे हैं उसके सेफ गार्ड्स के लिए रास्ता मिल जाता है। एक वो बच्चा जिसको आप फॉर्मल एजुकेशन वाले में नहीं डाल सकते, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम डालेंगे स्किल वाले के अंदर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, उसको एम्पावर करेंगे वो बच्चा, क्योंकि उम्र में बड़ा होगा निश्चित रूप से। तो समग्रता के साथ में इन चीजों को हमको टारगेट करना पड़ेगा। फिर हमको ये देखना होगा जो आप जो स्लम एरिया या जिस तरीके की आप गरीबों की बस्तियों की आप बात कर रहे हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम किस तरह से उनको उनके साथ में जोड़ सकते हैं, वो भी हम करेंगे।
1: जब बात हुई डिजिटल डिवाइड की, तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चों का इंटरनेट एक्सेस, सोशल मीडिया पर उनका जो प्रवेश है वो उम्र से पहले हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या ठीक उम्र होती है सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में, कब देना चाहिए उन्हें?
0: देखिए, ये जो चर्चा है ये भारत में नहीं, पूरी विश्व बिरादरी में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, यूएस के अंदर भी इस तरीके की पहल, बाकी देशों के अंदर भी पहल चल रही है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 16 वर्ष जो है, उससे पहले बच्चों को नहीं पता होता, वो तरह से कोरा कागज होता है वो, तो 16 साल का तो कम से कम उसके अंदर वो होना चाहिए। क्योंकि आजकल जिस तरीके की ग्रूमिंग का है या जिस तरीके के खतरे आ रहे हैं सामने, तो हमारी कल की पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको कारगर प्रयास करने होंगे और जल्दी करने होंगे।
1: तो इस दिशा में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं कि उम्र निर्धारण की जाए बच्चों की, कि कब उनको इंटरनेट एक्सेस या सोशल मीडिया पर पदार्पण करना चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज के लिए आप नियम बनाएं या कानून बनाएं या उसकी तरफ आप जाएं, तो मुझे लगता है पहले समाज को इसके लिए तैयार करना चाहिए, ताकि उसका एनफोर्समेंट भी लेटर एंड स्पिरिट में हो। तो इस पे निश्चित रूप से हम लोग चर्चाएं करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो सबसे बढ़िया चीज होती है। आप पेरेंट्स को यदि पेरेंटिंग की उनकी एक जिम्मेदारी आप उनको समझाएं, समाज को समाज का भी रोल आप बताएं। हमने चाइल्ड बेगर फ्री दिल्ली की जैसे बात करी, समाज भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है उसके अंदर। हम समाज से अलग हट करके हम दिल्ली को चाइल्ड बेगर फ्री नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से जो आप डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स का, समाज का, जितने इसके घटक दल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके समग्र रूप से प्रयास करना होगा। इसके लिए नियमों की आवश्यकता होगी, नियम भी बनाएंगे, पहले यदि DCPCR को करनी होगी हम करेंगे।
1: देख रहे हैं कि इंटरनेट के आजकल के इस दौर में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है, तो ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है इसके एक्सपोजर से?
0: देखिए, दिल्ली के अंदर जो महिलाओं को और बच्चों को जो देखने का एक पुलिस की डेजिग्नेटेड यूनिट है, और जो DCP है वो बहुत संवेदनशील है, हमारी कई सारी बातचीत हुई है नेहा जी से। तो बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए स्कूलों के अंदर ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी जा रहे हैं, बच्चों को जागरूकता पैदा करने के लिए, बच्चों को एम्पावर करने के लिए, बच्चों के साथ सीधा संवाद करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग में होता क्या केंद्र बिंदु, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और उसी सिद्धांत के ऊपर काम हो रहा है।
1: जी, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को और आगे लेके जाएं, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना। आशियाने में मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR के चेयरपर्सन डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास जी। डॉक्टर व्यास, आपके साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अनेक विषयों पर आपसे हम खुलकर चर्चा कर पा रहे हैं।
1: जी निशा जी,
0: अगला प्रश्न आपसे ये है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी बच्चे को संकट में देखते हैं, जैसे बाल मजदूरी करते हुए, भीख मांगते हुए, या उसके साथ कोई भी अनाचार होते हुए अगर देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, कैसे कांटेक्ट करना है, हु इज द कांटेक्ट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो एक आम नागरिक को ऐसी स्थिति में आप क्या मशवरा देते हैं, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, मैं आम नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि वो 1098 को याद रखें, 1098 याद करने में भी बड़ा आसान है। कभी भी उनको बच्चों से संबंधित किसी भी तरीके की, चाहे मान लीजिए बच्चे माता पिता के झगड़े के अंदर पिस रहे हों, या बच्चे के साथ में स्कूल में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, बच्चे के साथ रास्ते में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, बच्चे को जबरन बाल मजदूरी के अंदर रखा हुआ हो, किसी भी तरीके का कुछ भी यदि नजर आता है, 1098 के ऊपर तुरंत संपर्क करें। और यदि आपको लगता है कि आपने जो प्रयास किया और वो फलीभूत नहीं हुए, आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी आप सीधा लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर टेलीफोन नंबर भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट के ऊपर ईमेल भी मौजूद है, आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो हम निश्चित रूप से रेस्पोंड करते हैं उसके अंदर। जितनी तरह के बच्चों के साथ में ये जो चीजें होती हैं, उनके लिए एक पूरा का पूरा SOP है, एक सिस्टम इन प्लेस है कि बच्चे का किस तरीके से उसका प्रोटेक्शन सुरक्षित किया जाएगा, बच्चे को किस तरीके से आगे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, और हर कदम पे बच्चे का उस डिसीजन में पार्टिसिपेशन होगा।
0: डॉक्टर व्यास, हम देखते हैं कि शहर के कुछ बाहरी या अर्ध शहरी इलाकों में आज भी बाल विवाह या कम उम्र में बच्चियों की सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आते हैं। ऐसे में आयोग की क्या पहल रहती है, पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं?
1: देखिए, बाल विवाह जो है इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 27 वर्ष कार्य किया है, और बाल अधिकारों से संबंधित प्रकरणों के अंदर मैंने फील्ड में जाके जांच भी की है। ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो इसको

0: आप ये सोचें कि हम कानून से पूरे देश के अंदर बाल विवाह समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी अभी 29 तारीख को बहुत बड़ा दिवस इसी के ऊपर होने वाला है, फोर्स्ड मैरिज के ऊपर, तो पूरी विश्व बिरादरी में इस चीज की चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ इस चीज का कि कानून है, कानून का पालन होना चाहिए और हमको करवाना भी है कानून का पालन। इसके साथ साथ हमको समाज में जागरूकता उस स्तर तक लानी होगी कि जहां माँ बाप कहें कि नहीं, हम बच्चे को गर्त में नहीं धकेल सकते, हम बाल विवाह में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि उनको भी हमको अपने साथ लेकर के हम चलेंगे तो कानून बहुत प्रभावी होगा।
1: डॉक्टर व्यास, देखा जा रहा है आजकल बच्चों पर पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया का असर और एकाकीपन बहुत बढ़ गया है, लोनलीनेस, और माता पिता को अपने बच्चों के साथ इस समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत रह सकें और उन्हें जो अकेलापन है या जो एक सोशल मीडिया के प्रति झुकाव जो बढ़ता जा रहा है बच्चों में, एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, उससे वो कैसे बचें?
0: निशा जी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। आप किसी भी घर में जाके देखेंगे, चार सदस्य चारों चार कोने में अपना मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करे, अलग अलग दुनिया के अंदर वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ वापस लौटना होगा। बच्चों को उनका बचपन देना होगा, बच्चों को दादा दादी भी देने होंगे, नाना नानी भी देने होंगे, चाचा चाची भी देने होंगे, ताऊ ताई भी देने होंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मशीनों से आप यदि ये सोचें कि इन चीजों से कि आप बच्चे का, आप उसको कल का नागरिक बनाएंगे जो इस देश को चलाएगा, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं होगा। तो इस दिशा के अंदर काम करना है। दूसरा जो मैंने आपसे बताया, आप दिल्ली में देखेंगे कि प्राय देखने को आता है रोडरेज की कई सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अपने अंदर बारूद लेकर के चल रहा है, उसको एक ट्रिगर की जरूरत होती है। तो माता पिता के साथ भी घर से बाहर निकलते हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं। बच्चा यदि जाता है माँ बाप को देखता है, बच्चे के अंदर भी ये चीज आती है। कोर्ट्स के इनके जजमेंट्स आने के बाद में काउंसलर्स का अपॉइंटमेंट हुए, काफी अर्सा हो गया। मुझे लगता है कि काउंसलर्स का सपोर्ट होना चाहिए स्कूलों के अंदर, वो है नहीं। और माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि यदि जरूरत है उनको तो ये नहीं सोचना चाहिए, स्टिग्मा नहीं महसूस करना चाहिए, उनको भी जो है साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की, अपने लिए भी उनको मदद लेनी चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि समाज में अभी भी वो टैबू है कि माता पिता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें भी किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और अपने आपसी मनमुटाव या मतभेद जो है वो सुलझा लेने चाहिए ताकि बच्चा जो है उनके साए में ना पले। तो चलते चलते दिल्ली के नागरिकों, माता पिता और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्गर दिल्ली और बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज बना सकें?
0: मैं दिल्ली के जितने निवासी हैं उन सभी का आह्वान करता हूं, उन सभी को निवेदन भी करता हूं कि हम सब मिलकर के आइए, वो सारे प्रयास करें जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उज्जवल हो, और आगे आने वाले समय में जब कभी इतिहास के ऊपर चर्चा हो तो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि हाँ, हम लोगों ने अपनी ड्यूटी जो है, अपना कर्तव्य जो है वो पूरा किया, और जो भी हम बेस्ट कर सकते थे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो हमने किया। मैं समझता हूँ यदि हम इतना करेंगे तो इस राष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओपी व्यास जी, आज आपने बच्चों के अधिकारों, उनकी समस्याओं पर इतनी खुलकर हमसे चर्चा की और महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता आज की इस चर्चा से प्रेरित होंगे और बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, बच्चे हो, माता पिता हो या फिर हो आम नागरिक, आप रखें ये नंबर ध्यान, 1098। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद निशा भारद्वाज जी।
1: इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति, नमस्कार।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363

विष्णु ही लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खिजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी

0: जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपकू आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपकू आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपकू आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस
3: मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
3: pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
3: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
3: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
7: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls

0: Now children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh yes, now let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Mammy. Right.
0: Mammy. Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Mammy.
0: Navya, Vahanya, Soham.
3: Me.
0: Lovish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
4: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds. Now you all know about the sounds of birds. Great.
2: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाई।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।
8: बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
9: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
8: अच्छा बाबू।
9: और सुन
8: जी,
9: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
8: हैं?
9: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
8: क्या कह रहे हैं बाबू? मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
9: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
8: अच्छा?
9: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
8: अच्छा?
9: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
8: वो तो ठीक है, पर बाबू।
9: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा, भाग यहाँ से। पहले मैं उन्हें फीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए।

0: धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
1: अरे अरे ये क्या करते हैं बोस बाबू, उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
0: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
2: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
0: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
2: धन्यवाद।
1: अब बताइए बोस बाबू
0: जी,
1: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
0: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
0: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
0: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
1: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
1: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
0: जी,
1: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
0: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय में?
1: वो व्यवस्था हो गई है, माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
0: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी, मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई, आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
1: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं?

0: पड़ गई। चारू तुम गई थी उसके घर?
1: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
0: फिर तुमने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
0: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
1: हाँ दीदी।
0: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
2: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
0: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
1: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
0: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
3: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
0: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
3: हाँ सो तो है।
0: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
3: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मेम दीदी अब मैं चलूंगी,
3: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
0: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
4: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्ना सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है ओल्ड एज डेंटल केयर, यानी बढ़ती उम्र में दांतों की सही देखभाल। दांतों की सुरक्षा तो हर उम्र में जरूरी है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दांतों की खास देखभाल की जरूरत होती है। कैसे होगी ये देखभाल, बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट। आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है 9868107070। इन नंबरों के माध्यम से आप आज के विषय से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौतम खटक, कंसल्टेंट डेंटल सर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ दांतों में समस्या क्यों बढ़ जाती है?
2: देखिए मैडम, जो हमारा शरीर है यह मशीनरी की तरह, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सारी जो मशीनरी के पार्ट जिस तरह सर्विसिंग चाहते हैं, इस तरह हमारे शरीर में भी जो जो ऑर्गन है उनकी सर्विसिंग और उनकी मेंटेनेंस और उनका ट्रीटमेंट और सब जरूरी है
1: जी। तो कैसी होगी ये मेंटेनेंस, ये आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक
2: जी।

0: हाँ, आपकी तबस्सुम, आपकी मुस्कुराहट लोग देखकर यही कहें, जैसा कि अभी आपने गीत में सुना, हम भी यही चाहते हैं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज डेंटल केयर पर, यानी बढ़ती उम्र में दांतों की देखभाल पर। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर गौतम खटक जी। उनसे आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-234-21082 और 011-234-21082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और कर रहे हैं आप 9868107070 पर। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
1: जी ओम कुमार बात कर रहा हूँ, यूपी मेरठ से।
0: बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
1: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार भैया
1: जी, मैं कह रहा हूँ 14 मेरी उम्र है। और जो मतलब चिल्ड में पानी जो पीता हूँ और क्या करे, वो पानी मेरे दांतों और जाड़ों में लगता है। जी
0: उम्र आपने क्या बताई सर, 40 साल उम्र है आपकी?
1: पानी पीता हूँ ठंडा, वो मेरे दांतों में लगता है। अच्छा, और जो गर्म चीज मैं खाता हूँ वो भी लगती है। तो इसमें बताइए कोई दिक्कत है क्या, बीमारी है और क्या करना चाहिए हमें इसमें?
2: जी ये कितने समय से आपको लग रहा है दांतों में ठंडा गर्म और जो भी?
1: ये लग रहा है मुझे कम से कम, जी हो गए मुझे 3-4 महीने हो गए।
2: 3-4 महीने। आपने उम्र कितनी बताई अपनी? 40 साल।
1: मेरी 14 उम्र है।
0: 14 तो 14 साल हो गई ना सर?
1: हाँ वही बता रहा हूँ,
0: 14 साल की उम्र है आपकी।
1: जी जी।
0: अच्छा, ठीक है, आपकी आवाज से हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। जी
2: देखिए, 14 साल की उम्र में सेंसिटिविटी के केसेस कमी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपके दांत अभी 14 साल की उम्र में सारे जो दूध के दांत टूटने के बाद पक्के दांत आ जाते हैं मुंह में, तो अभी से ऐसी कोई समस्या होनी नीचे, लेकिन किसी दांत में कोई कैविटी हो गई हो, कीड़ा लग गया हो, जिसे हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। आप किस तरह से उनको दांत को साफ कर रहे हैं, रगड़ने का जो तरीका है वो कोई गलत तो नहीं कर रहे, एक बार आप जाके दिखाइए। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, और उसी हिसाब से उसको देख के ट्रीट किया जाएगा।
0: जी आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है। जय राम, जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा जी का। इन्होंने, मैं सच कहूँ, जो सवाल मैं आपसे करने वाली थी वो इन्होंने सवाल पूछ लिया है, यानी मैं कहूँ तो इन्होंने मेरा सवाल जो है कर लिया है तुरंत, और अच्छा है कि इनके माध्यम से श्रोताओं को जवाब मिल सके। ये जानना चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में दांत में समस्या होती है, इसका मुख्य कारण क्या है और इससे कैसे बचा जाए?
2: देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे आप जो भी चीज़ हमारे शरीर में वो काम ना काम कर रही है, वो धीरे धीरे दांत घिस रहे हैं,
0: ठीक है,
2: और उम्र के बढ़ते के साथ हमारे कई बार कुछ समस्याएं भी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती हैं और हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उनमें धीरे धीरे दांतों की जो मसूड़ों की जो लेयर है वो थिन हो जाती है, म्यूकोज जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है मसूड़ों की, और इसीलिए धीरे धीरे वो यूज़ के हिसाब से एट्रिशन हो जाते हैं, दांत घिसते जाते हैं, तो उसमें ये समस्याएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा समस्याएं वो हैं कीड़ा लगने की और पायरिया की
0: जी,
2: जो हमारे हमें देखने को मिलती हैं, दो ये सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। तो इनको सही ढंग से ट्रीट, सही टाइम पर ट्रीट करना पड़ता है, तभी दांत लंबे टाइम के लिए चलते हैं।
0: ये ट्रीट कैसे हो आपसे आगे जानेंगे, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आप

0: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी हेलो मैम, मेरा नाम सना है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ।
0: जी सना जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
1: जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दांतों के जॉइंट्स में काफी जलन होती है जब मैं कुछ खाती हूँ। ये कभी कभी ही होता है, और कभी कभी जो मेरी राइट वाली जाड़ है उसके ऊपर की जो परत है वो फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है?
0: जी, मतलब गम्स की भी इनको प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब।
2: देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप उस दांत से चबा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे।
1: ये चबा तो लेती हूँ लेकिन चबाने के बाद बहुत ज्यादा जलन रह जाती है।
2: जलन, देखिए दर्द और
1: जी
2: जलन अलग अलग चीज़ें हैं। जलन जलन अलग चीज़ में होती है और दर्द अलग चीज़ में होता है। तो आप अगर जलन से वो कर रही हैं, और आपकी उम्र कितनी है?
1: जी 30
2: 30 साल। तो हो सकता है कोई आपको कोई ऐसी कंडीशन हो गई हो, जैसे वाइट लीजन होता है ल्यूकोप्लेकिया, कोई सफ़ेद अंदर मुंह के अंदर सफ़ेद रंग की छिल झिल्ली बढ़ जाती है साइड में दांत के कटाव से, या आप कोई खैनी वगैरह या गुटखा वगैरह ऐसी चीज़ें यूज नहीं कर रही उनसे, या दांत हमारे पैने होते हैं वो भी गाल को काट देते हैं, तो जलन शुरू हो जाती है।
1: जी गम्स में जलन होती है मेरे
2: हैं जी,
1: गम्स में।
2: गम्स में? हाँ, गम्स में जलन नहीं होनी चाहिए। या तो कोई चीज़ आपको सूट नहीं करी, वो आप यूज़ कर रहे होंगे, कोई मंजन वंजन ऐसा कर रहे होंगे, उससे भी हो सकता है। कभी कभी कभार हम ब्रशिंग ठीक ढंग से नहीं करते, उससे भी दर्द वर्द शुरू हो जाता है, जलन भी शुरू हो जाती है लंबे टाइम के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, कुछ इनको बताना चाहेंगे कि टूथ ब्रश या पेस्ट कैसा यूज़ करें, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर लेता है, तो थोड़ा सा एडवाइस इनको कर दें तो बड़ा
2: देखिए
0: अच्छा रहेगा।
2: देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम टूथपेस्ट करें। अब लोग ये तो पूछते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा करें, क्या करें, लेकिन लोग करते ही नहीं है। रात को जो हम सोते हैं, सबसे पहले, सबसे ज़रूरी है रात को सोने से पहले ब्रश करना, क्योंकि सारे दिन तो हम सुबह ब्रश करते हैं, तो उसके बाद सारे दिन कुछ ना कुछ मुंह में एक्टिविटी होती है। हम बात करते हैं तो भी मुंह में डिस्टर्बेंस हो रही है,
0: जी
2: जो मुंह में बैक्टीरिया हैं, हज़ारों किस्म के बैक्टीरिया हैं। और रात को हम खाना वाना खा के सो जाते हैं बगैर ब्रश किए, तो जो बैक्टीरिया उनको पूरा आराम से टाइम मिल जाता है बगैर डिस्टर्बेंस के, वो हमारे दांतों को पूरा डीके करते हैं, पूरा नुकसान पहुँचाते हैं।
0: जी
2: तो रात को जो ब्रश करना वो बहुत ज़रूरी है। और जो ये लोग बताते हैं ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी, पानी से खट्टा मीठा ठंडा गर्म जो भी दांत पे जो चीज़ लगती है, अदरवाइज दांत पे कोई चीज़ का सेंसेशन होना नहीं चाहिए,
0: जी
2: लेकिन ये होता है, तो उसके लिए मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करनी पड़ती है।
0: जी
2: नहीं तो नॉर्मल टूथपेस्ट के अंदर ये कि मेडिकामेंट मिलाते हैं, तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट बन जाती है।
0: ठीक। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है आकाश जी का गुड़गांव से। ये लिख रहे हैं कि जो दांतों की समस्या है और हार्ट की समस्या है, इनका कोई आपस में रिलेशन है क्या? अगर है तो कैसे बचा जाए?
2: देखिए, ये जो दांतों की समस्या और मसूड़ों की समस्या से बता रहे हैं, और हार्ट की समस्या से, तो हार्ट एक हमारे जो जो पायरिया जो बीमारी होती है, उसके अंदर कई हमारे बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करते हैं मसूड़ों में, जो ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद हार्ट की मसल्स को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो वो एक बार चेक कराना चाहिए और टाइमली उसको निदान देना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों के बारे में, तो सबसे पहली बात आती है कि नकली दांतों का इस्तेमाल करते हैं, डेंचर का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से उसको किया जाए? सबसे पहली एहतियात क्या होनी चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये, हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जो 70, 75, 80, 80 साल के भी जो लोग हैं, उनके दांत बहुत अच्छी तरह उन्होंने उनकी देखभाल की है
0: जी
2: सही टाइम पर, तो हमें भी देखकर उनको खुशी होती है। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो सीधा वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं अपना इलाज कराने। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 40, 40, 45, 45 साल के हैं, उनकी अगर आप ओरल हेल्थ देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या कर रखा है, मुँह में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, केयरलेसनेस, उनकी लापरवाही से ही काम बिगड़ता है।
0: जी
2: तो जितने भी लोग दांतों की देखभाल करेंगे, दांत जो हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है, ये ओरल कैविटी जो मुंह है हमारा, ये गेट वे ऑफ हेल्थ है। जितना साफ रखेंगे, सारी चीज़ें यहीं से मुंह के थ्रू ही अंदर जानी है शरीर में,
0: जी
2: जो जितना ये साफ रहेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये है।
0: तो सारी बातें जो हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर
2: सबसे
0: साहब
2: बड़ी
0: लगातार आपको
2: चीज़
0: बता रहे हैं।
2: लापरवाही है, लोग लापरवाही कर जाते हैं,
0: जी
2: उसी वजह से काम
0: अगर
2: बिगड़ता है।
0: शुरुआती दौर में ही इसका ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि
2: बिल्कुल
0: इस तरह की
2: प्रिवेंटिव
0: समस्या हो ही नहीं
2: होगी नहीं,
0: सकती। जी
2: बिल्कुल ठीक बात
0: फिलहाल यहाँ एक म्यूज़िकल ब्रेक और लेते हैं
2: जी।
0: डॉक्टर साहब, आगे की बातें करेंगे फिर।

0: रेडियो डॉक्टर में इस समय हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज डेंटल केयर पर, और आपका भी कोई सवाल है तो हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर गौतम खटक जी, उनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01132342 1080 01132342 1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9868107070। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएँ सर।
1: मेरा नाम चंदन कुमार है
0: जी। सर बताएं क्या जानना चाहते हैं।
1: मैम मेरे दांतों में होल होल बना हुआ है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका?
0: दांतों में होल है आपके?
1: हाँ जी।
2: हाँ चंदन कुमार जी, अगर आपके दांत में होल है तो उसमें खाना फंसता होगा?
1: हाँ जी, खाना तो फंसता ही।
2: तो आप चबा पाते हैं कि नहीं उससे खाना?
1: सर प्रॉब्लम होती है सर दांतों में,
2: देखिए अगर आपके दांत में कोई चबाने में दिक्कत नहीं है और होल होल बने हुए छेद बने
1: में थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
2: हाँ, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, और जो दांत आपके जिनमें कोई समस्या नहीं होल हैं, वो अभी एक सिटिंग में ही वो भरे जा सकते हैं, एक एक विजिट में। और अगर आप ज्यादा
1: खर्चे कितने जाएंगे उसमें
2: भैया? खर्चे का तो देखिए, जिस डॉक्टर के पास जाएंगे आप उसी हिसाब से बताएंगे, उस खर्चे का तो किसी का मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन आप सरकारी अस्पताल में जाइए तो सरकारी अस्पताल में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा
0: जी। तो आपने इन...

0: बता दिया है डॉक्टर साहब, गाइडलाइन दे दी है कि
1: जी
0: सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो खर्चे थोड़ा सा कम होते हैं, और अगर जिनको नहीं
1: खर्चे नहीं
0: पता
1: है
0: है,
1: सरकारी हॉस्पिटल में
0: हाँ, तो अभी जानकारी हो गई होगी
1: जी।
0: इनको और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये आपके माध्यम से जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया हुआ है तौसीफ अहमद जी का, श्रीनगर से लिख रहे हैं कि इनके फादर 65 ईयर्स ओल्ड हैं और रिसेंटली जो उनका आगे का दांत है वो टूट गया है, और ये जानना चाहते हैं कि उनकी केयर कैसे की जाए, क्योंकि उनकी कार्डियक हिस्ट्री भी है, स्टेंट उनको प्लेस्ड किया गया है 2016 में, तो किस तरह से देखभाल हो।
1: देखिए, इनका एक दांत टूट गया हो तो उसको रिप्लेस करना है। 65 साल की उम्र में एक दांत टूट गया तो एक्सेप्टेबल है और उसको रिप्लेस करना है। अब ये
0: हाँ
1: देखना है कि इनकी कंडीशन, इनको स्टंट डला है 2016 में,
0: जी
1: 10 साल हो गए उनको हो गए हैं। तो एक बार जो फिजिशियन, जो इनको कार्डियोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उनसे एक बार फिटनेस लेके कि वो तो दांत रिप्लेस हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। उनके कुछ टेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होंगी,
0: जी
1: ब्लड टेस्ट वगैरह के, ये कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ खाते होंगे, उनको इनके कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से उनको रिशेड्यूल करना पड़ेगा और दांत लग जाएगा।
0: जी आगे बढ़ते हैं, कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार
0: नमस्कार सर, अपना नाम बता दें।
2: सर। नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी।
2: जी, कमलेश चौधरी बोल रहा हूँ सर, मैं गाजियाबाद से।
0: जी कमलेश जी बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मैम मैंने आरसीटी कराया था, मेरा दांत नीचे वाला एकदम पीछे का वो
0: जी
2: हिलता है, उसमें आरसीटी कैप लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई चीज कड़ा चीज ना खा नहीं पाते हैं।
0: ठीक है
2: और एक बार बहुत बहुत पहले एक बार किसी डॉक्टर बताया तो बोल रहे थे उसमें क्या उसको निकलेगा, एक्सट्रैक्शन क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन होगा।
0: जी
2: और तो वही डॉक्टर सर से पूछना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे डायबिटिक भी है 10 साल से।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया। हम बाकी श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि अगर साथ साथ आपको कोई बीमारी है तो उसका जिक्र भी जरूर कर दें। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे।
1: देखिए, डायबिटीज़ में भी इलाज करना तो पड़ता है हर एक मरीज़ का। डायबिटीज़ एक अलग बीमारी है, लेकिन उसमें डेंटल केयर थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और
2: जी
1: उसमें कुछ हीलिंग थोड़ा कम होती है कई बार। तो अंडर एंटीबायोटिक कवर पहले आपका जो दांत, ये आपकी उम्र कितनी है?
2: 37 सर।
1: 37। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने आपको बताया कि ये दांत निकलेगा तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है आपको जो पहले आपने आरसीटी कराया वो सही ढंग से ना किया हो, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो अब जैसे आपके आप बता रहे हैं, नहीं तो आप एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाके, आपके एक्सरे वगैरह करके देखेंगे, अगर दांत दोबारा बच पाएगा तो बचाने की कोशिश रहनी चाहिए। है
0: जी मतलब इनको आराम होने की गुंजाइश है, जैसे
1: बिल्कुल।
0: कि आपने कहा।
2: मतलब
0: ठीक
2: सर ये हिलता है, जैसे कि ना मैं ऐसा जीभ से चेक करता हूँ, हिलता रहता है और बहुत कड़ा चीज नहीं खा पाता हूँ
1: अगर
2: उससे।
1: जीभ से भी हिल रहा है फिर तो चांस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ग्रेड 3 मोबिलिटी हो गई उसमें। जैसे ग्रेड 1 और 2 में दांत बचने के चांस हैं, अगर जीभ से हिल रहा है तो मजबूत दांत होता है पीछे का, तो नीचे का, पीछे का बता रहे हैं आप, तो ग्रेड 3 में तो लग रहा है गड़बड़ ज़्यादा कर लिया आपने, आपने डिले कर दिया
0: तो क्या
1: इलाज में।
0: इनको रिप्लेस
2: नहीं
0: करा
2: तो
0: लेना
2: सर
0: चाहिए,
2: बहुत
0: क्या
2: बहुत
0: एडवाइस करेंगे
2: जी
0: इनको।
2: जी
1: हाँ, ये दांत निकाल के हो सकता है कि फिर वो लगाना तो पड़ेगा। जब भी दांत कोई निकलता तो उसको रिप्लेस करा लेना चाहिए।
0: जी
1: सिर्फ हमें कुदरत ने 4 दांत दिए हैं जो फालतू के दांत हैं, जिन्हें अक्कल दांत बोलते हैं,
0: जी
1: विजडम मोलर्स बोलते
0: ठीक
1: हैं,
0: अच्छा
1: उनका कोई रोल नहीं होता बस।
0: ठीक है आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हमारे पास मैसेज आया हुआ है ललित भाटिया जी का, अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि आज विषय बहुत अच्छा है, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी 5 से ज़्यादा बार आरसीटी हो चुकी है और नीचे ऊपर के 4 ब्रिज लगे हैं, फिर भी इनको आराम नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे।
1: इनकी आरसीटी में समस्या है इसका मतलब, क्योंकि आरसीटी करने के बाद दांत ठीक हो जाना चाहिए था।
0: जी
1: तो अगर 5 बार अलग अलग दांतों की आरसीटी हुई है, या ये भी समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग दांत
0: हाँ,
1: की
0: उन्होंने
1: आरसीटी
0: बहुत
1: है।
0: शॉर्ट में लिखा है कि
1: हाँ
0: ऊपर नीचे के 4 ब्रिज लगे हैं।
1: हाँ तो फिर अलग अलग दांतों की होंगी, क्योंकि एक दांत की जो 4-5 बार आरसीटी नहीं होने का कोई सवाल नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, ढंग से रूट कैनाल नहीं हो पाता, तो उसको री आरसीटी करा के ठीक कराने की कोशिश करनी चाहिए।
0: जी
1: निकालना
0: बहुत
1: तो मजबूरी है, दांत को निकालना मजबूरी है,
0: एक
1: इलाज नहीं
0: वही
1: है।
0: विकल्प है कि
1: हाँ
0: उसको हटा के रिप्लेस कराया
1: हाँ
0: जाए, अदरवाइज कुछ जो है अगर सॉल्यूशंस होते हैं तो डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं आपको।
1: जी
0: डॉक्टर साहब अगर हम बात करें तो नकली दांतों से, जो हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं कि वो डेंचर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गम्स भी उससे प्रभावित होते हैं।
1: देखिए, हमारे जो कुदरती दांत हैं उन पे

0: मसूड़े उनके ऊपर, उनके ऊपर लिपटे होते हैं, मसूड़ा चारों तरफ से दांत को लिपेट के रखता है, और जो ये नकली दांत है ये उस डेंचर, उस मसूड़े के ऊपर ही टिकता है। तो जब भी हम यूज़ करते हैं डेंचर तो उस पे प्रेशर तो पड़ता ही है, तो फर्क तो रहता ही है नकली में और असली में।
1: जी, तो कैसे इनकी देखभाल की जाए और कैसे इनको सुरक्षित रखा जाए, आपसे आगे जानेंगे। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और फिर लेंगे हमारे अगले जो कॉलर हैं और हमारे जो मैसेजेस हैं।

0: डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौतम खटक जी, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं ओल्ड एज डेंटल केयर पर। अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: जी, पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम सर, आप नियमित श्रोता हैं हमारे, बताइए आज क्या जानना चाहते हैं।
2: आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार गौतम जी, नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब जी, आप ऑयल पुलिंग के बारे में तो जानते हैं ना?
3: जी,
2: तो बताइए फिर ऑयल पुलिंग किससे करनी चाहिए, कौन सा तेल लेना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए और ऑयल पुलिंग के क्या लाभ है, कृपया विस्तार से बताएं। थैंक यू।
3: देखिए, ऑयल पुलिंग में जो आपको ऑयल सूट करता हो वो कीजिए, और इसे मेनली लुब्रिकेशन का ही काम है। जैसे हमारे शरीर की मसाज होती है, उसमें सर्कुलेशन में इम्प्रूव करता है। और बाकी हम लोग ज़्यादा ऑयल पुलिंग के बारे में ज़्यादा वो नहीं करते, हम करते हैं मसूड़ों की मसाज करने के लिए, जो हम फिजिकली गम पेंट से लगा के मसूड़ों की मालिश करने के लिए बताते हैं। और एक चीज़ हम और बताते हैं, वार्म सलाइन गार्गल्स, जो गुनगुने पानी में नमक डाल के जिसमें आंसू जैसा टेस्ट होता है, उसके लिए।
1: ठीक, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको कर लिया जाए तो डॉक्टर साहब इशारा दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि समस्या आएगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगला हमारे पास मैसेज है वो है मोहम्मद इम्तियाज जी का, जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 40 साल की है और मुझे शुगर बीपी की समस्या है। वैसे मैंने 10 जुलाई को ही अपने दाँत की क्लीनिंग करवाई है। मैं किसी तरह का टोबैको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दांतों में 4 दांतों की सफाई नहीं हो पाती है। और दूसरा सवाल है कि हमें कितने मिनट्स ब्रश करना चाहिए।
3: इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग ये समझते हैं कि हार्ड ब्रश लो और उसे 10-10 मिनट तक मसाज करते रहो। वो सोचते हैं जितनी देर ब्रश करो, जितनी देर ब्रश करेंगे उतना जल्दी ज़्यादा साफ होगा, लेकिन ये उल्टा नुकसानदायक है। हमें ब्रश करना चाहिए, वैसे तो हर आइडियली हमें हर खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, पर दिन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो हमें सुबह और शाम 2 मिनट से 3 मिनट तक, सुबह 2 मिनट से 3 मिनट तक शाम तक ब्रश करना चाहिए सोने से पहले। और सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए या मीडियम ब्रश भी ले सकते हैं, हार्ड ब्रश तो कोई काम नहीं देता। और ये जो कह रहे हैं कि दांत के बीच में मैंने सफाई कराई और दोबारा मैल जम जाता है, तो वहाँ पर हो सकता है इनके दांतों में क्राउडिंग हो, दांत इकट्ठे हो गए हों, ऊपर नीचे हो गए हों, वहाँ पे सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती होगी, तो ये डेंटिस्ट के पास जाके अपना क्लीनिंग करा सकते हैं। पर वैसे हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि आप हर 6 महीने में जाके स्केलिंग कराओ। देखिए, लोग 20-20, 25-25 साल तक एक बार स्केलिंग कराने खुद ही साफ रखते हैं तो वो चलता रहता है। अगर आप खुद ही साफ रहोगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सफाई कराने के लिए।
1: हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद जी, थैंक यू। मेरा नाम आकाश है, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ।
1: जी आकाश जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
4: आपको पहले मेरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
4: मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दांतों का कनेक्शन दिल से भी है, हमारे हार्ट से?
1: जी आकाश जी, देखिए अभी आपने जो मैसेज में भेजा था उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, फिर भी अगर आप जुड़ चुके हैं तो डॉक्टर साहब
3: बता देता हूँ। मैं आकाश जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पायरिया जैसे बीमारी होती है मसूड़ों की ना, एक बड़े जैसे मसूड़ों में बीमारी है, एक है पायरिया, जिसे हमारे मसूड़े दांत का स्ट्रक्चर उसमें खराब नहीं होता, मसूड़ों के जो जॉइंट सिस्टम है उसमें गड़बड़ होती है, जिसे पायरिया बोला जाता है हिंदी में। तो उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो कई बार ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के हमारे हार्ट तक पहुंच जाते हैं, एंडोकार्डियम तक, तो उसमें हार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं
1: जी।
3: तो इसलिए ये एक रिसर्च में भी पाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कही सुनी बात नहीं है, ये रिसर्च में हुआ है ऐसा। तो उसका दिल से कनेक्शन यही है कि पायरिया की रोकथाम की जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए
1: जी। डॉक्टर साहब हमारे पास सुधीर

0: सिंह जी का मैसेज आया हुआ है कुतुबगढ़ से, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरी उम्र 45 साल की है, मेरे दांतों में गैप हो गया है, इसमें जैसे अमरूद के बीच कोई बीज होता है वो जैसे फंस जाता है, वैसे इनको समस्या हो जाती है। ये जानना चाहते हैं कि कैसे केयर की जाए दांतों की जो इनको समस्या का निदान मिल सके।
1: जी देखिए, पहले तो आप एक कुशल दंत चिकित्सक को दिखाइए आपकी समस्या,

0: भी यूज़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: दांत में बहुत सारी रेशे वाली चीज़ें फंस जाती हैं कई बार, तो उसमें डेंटल फ्लॉस एक आते हैं, डेंटल फ्लॉस से साफ करना चाहिए। वो मेडिकेटेड धागे जैसा होता है, उंगली में बांध के दोनों उंगली में, और हर दांत के बीच में जाएगा, चाहे आपके दांत के में गैप हो या ना हो, वहाँ पे वो जाके सफाई करेगा। और दूसरा ब्रशिंग, और तीसरा वार्म सलाइन गार्गल्स, गुनगुने पानी में नमक डाले कुल्ला करना। और जो दांत में अमरूद जैसे फंस जाते हैं, वहाँ पे कैविटी बन गई है, उनको आप एक प्रशिक्षित डॉक्टर से पास जाके, कुशल जो डॉक्टर हैं उनके पास जाके अपना फिलिंग हो जाएगी, उनमें दांत में भर जाएगा तो फंसेगा नहीं फिर कुछ।
1: हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम, मैं मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ।
1: जी इम्तियाज जी बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मैंने भी सवाल किया तो उसमें वो मैं बोल रहा था कि जैसे चारों दांत जो होते हैं लास्ट वाले, ऊपर वाले दो और नीचे वाले,
1: जी
2: वो उस दांत में मेरे सफाई की बात थी, इसके बारे में पूछ रहा था।
0: देखिए जो आपके आपके जो लास्ट वाले दांत बताएं, अगर वो अक्कल दाढ़ हैं और सफाई नहीं हो पाती तो आप उनको निकलवा दीजिए। मैं निकलवाने के पक्ष में कभी भी नहीं रहता, क्योंकि दांत निकालना एक मजबूरी है, दांत को बचाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो अक्कल दाढ़ जिसमें बता रहे हैं आप, मैंने पहले ही बताया वो कुदरत ने हमें एक फालतू दांत दिया है, उसका कोई रोल नहीं है चबाने में, और उल्टा सीधा वो कई बार गाल को काटता है। जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि उसमें खाना वहाँ तक ब्रश नहीं जा पाता, सफाई नहीं हो पाती, तो आप बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो अक्कल दाढ़ ही है तो वो निकालने का आपको एडवाइस करेंगे।
1: जी हमारे पास मैसेज आया हुआ है संजीव कुमार जी का, ये वाल्मीकि विलेज से लिख रहे हैं कि मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं 44 साल का हूँ, मेरे और मेरे छोटे भाई श्री अमन कुमार जी के दांतों में दिक्कत है, मैं OCD से ग्रसित हूँ, मेरा छोटा भाई सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है और कई महीनों तक ये ब्रश नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ इस वजह से इनको हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
0: देखिए अब ब्रश नहीं कर पाते तो समस्या तो है ही, तो आप प्रोफेशनल क्लिनिक कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, और माउथ वॉशेज वगैरह हैं उनका सहारा लें, केयर गिवर्स से सफाई कराएं, तो काम चल सकता है उनका।
1: जी जेवी पटेल जी का पुणे से हमारे पास सवाल आया हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरे दांत घिस गए हैं और मेरी उम्र 64 साल की है, क्या इनको एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब?
0: देखिए घिसना भी, दांत तो सबके ही घिसते हैं, जैसे जैसे दांत हम हमारे दांत आते हैं मुंह में, हम खाना चबाते हैं तो धीरे धीरे उनके एट्रिशन और घिसते रहते हैं, तो अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घिस गए तो एक हम नाइट गार्ड के लिए अप्लाई वो एडवाइस करते हैं रात को सोने से पहले के वो फर्दर ना घिसें, नाइट रात को सोएं तो नाइट गार्ड लगा लें तो दांत उसी लेवल पर रुक जाएंगे, आगे फर्दर नहीं बढ़ेंगे, तो वो भी प्रोफेशनल यानी इनको दिखाना पड़ेगा किसी डेंटिस्ट को।
1: ठीक है। ऋषि जी का दिल्ली से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि इनकी उम्र लगभग 45 साल की है और ये डायबिटिक हैं लगभग 20 सालों से और इनको दो दिन से काफ़ी दांतों में दर्द है, तो किस तरह से ये क्लीन करें अपने दांतों को और किस तरह का इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए?
0: दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि दांत में दर्द क्यों हो रहा है। सफाई डायबिटीज़ है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, दांत को साफ तो किया जा सकता है, आराम से खुद ही साफ कर सकते हैं, खुद साफ नहीं कर पाए तो डॉक्टर से साफ करें, प्रोफेशनल क्लीनिंग लें।
1: जी तो डॉक्टर साहब आपने इनको जो है समाधान वो बता दिया है कि थोड़ा सा डॉक्टरी एडवाइस के साथ साथ जैसा कि आप दे रहे हैं चिकित्सा भी डॉक्टर से मिलकर लें, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा जैसा कि आपने कहा,
0: दर्द नहीं होना चाहिए दांत में ना, जैसे वो कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब जैसे कि मसूड़ों और दांतों की सबसे बड़ी समस्या पायरिया जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अगर बढ़ती उम्र में इसकी शुरुआत हो जाती है तो केयर कैसे करें?
0: देखिए वो सबसे पहले हमें एक तो नियमित सफाई रखनी पड़ेगी और डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो हमें दवाइयाँ देंगे, सफाई करेंगे और सफाई करने की सलाह देंगे,
1: ठीक है,
0: उसी से हमारा इलाज होगा, मेन चीज़ यही है। कई बार फ्लैप सर्जरी या मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो फ्लैप सर्जरी से उनको वापस लाया जा सकता है, मसूड़े अगर फूल जाते हैं कुछ दवाइयों की वजह से या कुछ तो उनकी उनको काट के ठीक किया जाता है सर्जरी से, तो वो इलाज अलग अलग हैं, किस लोगों के किस तरह से प्रॉब्लम उसी हिसाब से इलाज किया जाता है।
1: हमारे पास अगला जो मैसेज है ये है प्रशांत कुमार जी का, ये पटना बिहार से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 41 साल की है, ये जानना चाहते हैं कि डाइट कैसे इम्प्रूव की जाए ताकि दांतों में समस्या ना आए।
0: डाइट
1: क्या डाइट हो?

0: डाइट
1: इनका फिर
0: ऐसा है,
1: तो आपने
0: हम
1: सवाल।
0: देखिए आप 41 साल के हैं, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप जो कुछ खाते हैं वो पौष्टिक तत्व ही खाएं। और हमारी सलाह ये है कि दो दो खाने के बीच में ना ऐसी चीज़ें ना खाएं जो चिपचिपी, जो दांतें चिपकती हों, बस यही है। और उस नियमित सफाई रखें।
1: जी, नियमित सफाई रखना डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम क्योंकि बुज़ुर्गों के बारे में ख़ास तौर पर आज बात कर रहे हैं, तो जो दांतों का इस्तेमाल, वो डेंचर का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सुबह शाम या जब भी खाना खाते हैं तब उसकी क्लीनिंग करें, दांतों की निकाल कर रख दें रात में, किस तरह से वो केयर करें, कुछ बताएं।
0: देखिए जो डेंचर की आपने बात की है, डेंचर एक हमारे मुंह में एड है, नकली नकली दांत यानी ओरिजिनल दांत का एक सब्स्टिट्यूट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो ओरिजिनल दांत है उनको तो हम बाहर निकाल के साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिफिशियल डेंचर है उनको तो हम बाहर निकाल के बड़े आराम से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से एक्सेस हो जाती है हमें उससे। और अच्छा सा उसमें वो टूथब्रश ले, उससे साफ़ रखें। और कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, कुछ टेबलेट्स आती हैं, उनको उनको डब्बी में या कटोरी में रख के डेंचर को पानी में डुबो के, और रात भर उसको टेबलेट में डुबो के रखें, तो सुबह हल्का सा भी पानी से भी निकालेंगे तो साफ़ हो जाएंगे।
1: जी, अगर लगा कि जैसे दांतों को सो जाते हैं तो कोई समस्या तो नहीं है बुजुर्गों
0: देखिए
1: के
0: ऐसा
1: लिए?
0: है, जैसे हम अपना कपड़ा पहन के सोते हैं रात को, इसी तरह दांतों का भी है।
1: जी
0: दांत अगर लगा के आदमी आदमी कंफर्टेबल आराम से सो रहा है और उसको कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दांत को रात को निकाल के ही रखना पड़ेगा।
1: जी
0: अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप रात कर लगा के बस ब्रश करके साफ करके और लगा के सो जाइए। और लेकिन आप लगाए अगर दांत मुंह से बाहर निकाल के रखेंगे तो उसको, जैसे मुंह के अंदर हमारा एटमोसफेयर है, नमी है, मॉइस्चर है, तो ऐसा उसको पानी के अंदर डुबो के रखना पड़ता है।
1: जी
0: और कई बार क्या होता है, ऊपर को भी ढकने ढकना रख ढकना पड़ता है उसको। कई बार चूहे जो है ना वो उसमें गेहूं की स्मेल, फूड की जो स्मेल आती है डेंचर में, उसको उठा के ले जाते हैं कई बार,
1: जी
0: तो ये बड़ी समस्या होती है कई बार कुछ लोगों के साथ।
1: हमारे पास अगला जो मैसेज है वो है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून, और आपसे सवाल किया है डॉक्टर साहब। मेरा जो सवाल है वो ये है कि टंग क्लीन करने में वोमिट आती है, और नीम क्या फ़ायदा करती है, क्या टूथपेस्ट बदलते रहना चाहिए, छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं कर पाते हैं, क्या करें, कई सवाल हैं इनके।
0: जी एक तो इन्होंने कहा है कि जो
1: टूथपेस्ट है
0: नहीं जो
1: उसको।
0: नी जीभ साफ़ करते हैं उसे वॉमिटिंग आती है।
1: टंग
0: देखिए
1: क्लीन।
0: जीभ का जो है ना, हमारे एक पीछे वाले जो पोर्शन, अगर हम ज़्यादा उसके तक जाएंगे तो हमें वॉमिटिंग सेंसेशन आएगी। तो हमें आधी से ज़्यादा जीभ जहाँ तक हमें कंफर्टेबल है उसी तक साफ़ करें। हम टंग क्लीनर लें, टूथब्रश लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बच्चे साफ़ नहीं कर पाते तो आप एक बार डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट है वो बच्चों के डेंटिस्ट है, वो आप उनके पास जाएं, वो आपको समझाएंगे कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। और माताओं का ही, जब तक बच्चे खुद समझदार नहीं होते तो उनके माताओं का ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे की देखभाल करें दांतों की।
1: जी, उनको ठीक से ब्रश कराएं,
0: जी
1: और ख़ुद भी माता पिता, जैसा कि आप बता रहे हैं, बढ़ती उम्र के साथ भी हमें ये समझ नहीं आती कि हमें कितनी बार करना है, जैसा कि अभी आपने बताया कि दो
0: मैंने
1: से तीन
0: बताया कि
1: मिनट
0: दो
1: का।
0: बार, एक बार सुबह उठ के ब्रश करें, सुबह अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हैं तो सुबह बेशक ब्रश ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लें, कोई दिक्कत नहीं है,
1: जी
0: लेकिन रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है ब्रश करना।
1: हाँ, अगर पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऑफिस में होते हैं
0: हाँ तो
1: या कुछ
0: कुल्ला कर लें,
1: और
0: कुल्ला कर
1: मजबूरी
0: लें,
1: हो
0: कुल्ला
1: सकती
0: तो
1: है
0: कर
1: जी, लेकिन रात में सोते वक्त ज़रूर करें
0: जी
1: ब्रश, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल एक म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं।

0: वार्षिकम।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज डेंटल केयर पर। अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, लगातार आपसे चर्चा चल रही है कि कैसे दांतों को स्वस्थ रखा जाए। मैं जानना चाहूँगी कि अगर दांतों की समस्या है तो किस तरह से अगर हम अपनी देखभाल को बनाए रखते हैं तो और क्या क्या जरूरी है एहतियात?
2: देखिए मैडम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी तकलीफ हो हम जरा सी तो हम उसको थोड़ा अहमियत दें, हम डॉक्टर के पास जाएं
1: जी।
2: अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो बार बार उसको डिले ना करें। जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा,
1: ठीक है।
2: और हम उसको डिले करेंगे तो नंबर ऑफ विजिट्स भी बढ़ेंगे हमारे डॉक्टर के पास जाने के, बार बार जाना पड़ेगा, इलाज का टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो उसको प्रॉब्लम
1: मतलब समय पर डिसीजन ले लिया जाए, बहुत डिले नहीं किया जाए। श्रोता हूँ लगातार डॉक्टर साहब आपको सचेत भी कर रहे हैं, साथ साथ
2: अपने आप को एक्सपेरिमेंटल ना करें। और आजकल मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग गूगल पे या यूट्यूब पे ही देख के सोचते हैं कि भाई हमारा इलाज हो जाएगा
1: जी,
2: तो उस पे ऐसे डॉक्टर वाली बात नहीं है। वो तो लोग अपने अपने कमेंट्स डाल देते हैं कुछ वैसे,
1: क्योंकि जो अल्प ज्ञान है वो ज्यादा खतरनाक करने वाला होता है। तो अगर आपको विधिवत जानकारी हो जाती है किसी विषय की, डॉक्टरी परामर्श,
2: अनुभवी डॉक्टर्स के पास जाएं और वो आपका इलाज करेंगे सही ढंग से, तो
1: डॉक्टरी परामर्श पर ही कोई भी स्टेप है वो लें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जैसे एक दो दांत किसी व्यक्ति के गिर जाते हैं, उस स्थिति में क्या उनको डेंचर लगाया जा सकता है या क्या विकल्प होता है?
2: देखिए, जब भी मैडम दांत निकलता है तो हमारा मेन पर्पस है उसको रिप्लेस करने का। अब ये डिपेंड करता है कि दांत कौन सा है,
1: ठीक है।
2: ठीक है, कई बार क्या होता है दांत सारे मुंह में दांत हैं और एक या दो दांत निकल गए, तो हमारे पास आजकल बेस्ट सॉल्यूशन है वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट लगवाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है और बस पेशेंट की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और वो बढ़िया काम देते हैं नेचुरल की तरह। और दांत जैसे निकालने, जो कुछ दांत होते हैं वो निकालने डालने वाले, कई बार पेशेंट के हड्डी नहीं है अंदर, इतनी मजबूत हड्डी नहीं है, उसके अंदर इम्प्लांट नहीं लग सकता, तो हम साइड के दांत पे ब्रिज बना देते हैं, आसपास के जो साइड के दांत की दो सपोर्ट लेके बीच में ब्रिज बन जाता है। और अगर आसपास के दांत भी नहीं है तो फिर हम रिप्लेसेबल वो दांत जो निकालने डालने वाले लगाते हैं
1: जी,
2: रिमूवेबल डेंचर्स, वो पार्शल भी बनते हैं, फुल डेंचर्स भी बनते हैं। पार्शल डेंचर में थोड़े थोड़े दांत लगते हैं, यानी उसमें जब एक दो तीन दांत निकल गए एक जबड़े में से तो पार्शल डेंचर बन जाएगा। वो पार्शल डेंचर फिक्स भी हो सकता है और रिमूवेबल भी हो सकता है। फिक्स मैंने आपको बताया ब्रिज की तरह और इम्प्लांट की तरह, और रिमूवेबल बताया मैंने को निकालने डालने वाला
1: जी। डेंचर किस स्थिति में आप एडवाइस करते हैं डॉक्टर साहब?
2: डेंचर मैडम तो लगाना ही, रिप्लेसमेंट तो करना ही है जब दांत के बगैर, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि लोग बगैर दांत के काम चला रहे हो, कहते हैं जी हम तो इससे सख्त से सख्त चीज भी चलाते हैं, वो तो कंडीशनिंग कर लेते हैं अपना, वो लोग मजबूरी में क्या करेंगे। लेकिन जब दांत निकलता है तो उसको रिप्लेस, जब भी दांत निकलेगा मिसिंग होगा दांत तो उसको रिप्लेस कराना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से दांत हमारे ऊपर नीचे वाले जबड़े एक दूसरे को रोक के रखते हैं दांत, और अगर एक एक जबड़े में से एक दांत निकलेगा तो नीचे वाला दांत बढ़ जाएगा, तो वो भी उस गैप को भरने की कोशिश करता है
1: जी। इस रिप्लेसमेंट के दौरान उम्र का भी कुछ ख्याल रखा जाता है, या जैसे किसी को कोई बीमारी है ऑलरेडी डायबिटीज से ग्रसित है तो किस तरह से क्या प्रिकॉशन लेके रिप्लेसमेंट होता है?
2: देखिए वो सारा वो पूरा, जब भी कोई दांत या सर्जरी करनी पड़ती है या डेंटल रिप्लेसमेंट करना पड़ता है डेंचर, तो उसमें पहले हम सारी मेडिकल असेसमेंट करते हैं पेशेंट की
1: जी,
2: और अगर फिटनेस लेवल होता उसी लेवल में काम करते हैं, नहीं तो फिर मजबूरी में काम करना पड़ता है
1: जी। बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं और आपको किस तरह से दांतों की जो समस्या है उसको निजात मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लगातार डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हैं उन पर अगर आप गौर कर लें तो आपको समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास जो मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है कि जैसे मैं हर रात को ब्रश करके ज़रूर सोती हूँ, रात में मसाज करके जिससे हम अपने गम को सही रखें और किससे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इनको एडवाइस चाहिए।
2: देखिए, जैसे हमारे शरीर की हम शरीर की मालिश करते हैं, ऐसे ही मसूड़ों की मालिश करनी ज़रूरी है ताकि जो उसमें रक्त संचार है वो सही ढंग से हो सके मसूड़ों में।
1: ठीक है,
2: तो हमारे जो मार्केट में कई तरह के गम पेंट आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, अब हम ट्रेड नेम आपको नहीं बता सकते यहाँ पर कि भी इसको करो या उसको करो, तो अच्छी कंपनियों के गम पेंट आते हैं, उनको हथेली पर रख के उनकी मसाज करिए मसूड़ों की गम पेंट से। और माउथ वॉशेज हैं, माउथ वॉश भी डाइल्यूट करके या अनडाइल्यूट करके उस पर डायरेक्शन लिखी होती हैं कौन कौन अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं सफाई के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर शुरुआत ही थोड़ा सा बता दें कि बच्चे को किस तरह से जो स्टार्टिंग होती है उसी समय माता पिता हैबिट डलवा दें तो आगे चलकर ये समस्या उत्पन्न ना हो।
2: जी देखिए, बच्चा जब 1 साल का होता है तो तभी से उसकी दांतों की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए, और माता पिता का से ज़्यादा माता का ज़्यादा रोल है क्योंकि बच्चा ज़्यादातर माता के साथ ही पलता है, माता ही उनका पालन पोषण ज़्यादा करती हैं।
1: जी
2: तो वो देखती हैं उनके जो भी समस्या है, शुरू में तो जीभ साफ रखनी पड़ती है बच्चे की, दूध पीता है, दूध पीते तो सो जाता है। फिर आगे आगे जैसे जैसे जो समस्याएं अगर बढ़ती हैं तो हर 6 महीने में हमें डॉक्टर के पास एक बार दिखा देना चाहिए, कोई समस्या बढ़ तो नहीं रही, कोई शुरुआत तो नहीं हो रही
1: जी,
2: और नियमित चेकअप कराएंगे, कोई बीमारी होगी टाइमली पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज सही टाइम पर हो जाएगा।
1: जी, ये तो शुरुआती दौर की बात हो गई श्रोताओं, और अब हम बात कर लेते हैं बुजुर्गों के बारे में। डॉक्टर साहब, अगर दांतों की देखभाल ठीक से ना की जाए और बीमारियां हो जाएं तो क्या आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है?
2: देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब हमारे दांत नहीं होंगे और हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन सही तरह से नहीं पहुँच पाएगा, और डिहाइड्रेशन होगा, मुंह में जीरोस्टोमिया यानी मुंह भी सूखेगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा
1: जी,
2: तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं
1: जी।
2: तो खाने को अच्छी तरह चबा कर और जब अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा तो सही ढंग से उसका यूटिलाइज होगा।
1: डॉक्टर साहब, क्या पानी पीना भी ज़रूरी होता है हमारे बुजुर्गों के लिए कि ठीक ढंग से?

0: वो पानी का सेवन करें जैसा कि सुनने में आता है?
1: देखिए, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी डिमांड नहीं करती पानी की। यूजुअली हम पानी तभी पीते हैं जब बॉडी डिमांड करती है, प्यास लग रही है, ये कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुजुर्ग लोगों में तो शरीर डिमांड नहीं करता पानी का। तो हमें उस हिसाब से देख कर ये रखना चाहिए कि हमने इतना पानी पीना है आज
0: जी।
1: अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी से और उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं। तो नॉर्मल आदमी में हमारी बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से पानी की एक मात्रा चाहिए होती है, उतना हम पानी रख लें डेली और उसको बराबर मात्रा में जब भी मन करे तो, लेकिन उसको ख़त्म करें
0: जी।
1: ये
0: क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि खान पान मतलब सॉफ्ट हो खाना, ये बुज़ुर्गों को जानकारी होती है, लेकिन पानी भी, आपने अच्छी बात बताई कि पानी की मात्रा भी होनी चाहिए।
1: हाँ, पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि उसमें
0: खान पान में भी थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं, क्या कुछ सॉफ्ट जो मुलायम है, दलिया है, इस तरीके की चीज़ों का लेना ज़रूरी है?
1: देखिए, दलिया तो हर उम्र में अच्छा है, दलिया एक अच्छा भोजन है, और आजकल जैसे और भी भोजन बहुत सारे हैं, जैसे पुलाव है अपना,
0: खिचड़ी है, पुलाव
1: खिचड़ी
0: है,
1: है
0: ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। ओट्स
1: जी,
0: भी आजकल
1: ओट्स भी
0: काफ़ी
1: हैं,
0: है।
1: चिया सीड्स हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें, और न्यूट्रिशियस भी हैं
0: जी। तो ये
1: तो उनका
0: आपके
1: रेगुलर
0: लिए
1: सेवन करें।
0: जी।
1: दलिया जो है उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है, तो जो ग्लूटेन फ्री वो लोग हैं जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, और इजीली
0: एक
1: डाइजेस्टेबल है।
0: डाइट चार्ट मेरे ख्याल से बनवा लेना चाहिए डॉक्टरी सलाह लेके, तब जो है इनके लिए सेहतमंद ये रहेंगे
1: वैसे
0: ऐसा।
1: हम शरीर की हम नियमित अपना वो करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो बॉडी अपने आप डिमांड करती है, और बॉडी को भी क्रेज होता है कि मैंने मुझे ये खाना ये करता है, तो उसी हिसाब से भोजन करें अपना, कोई दिक्कत नहीं है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत सारी जो अहम जानकारियाँ दी हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए लाभकारी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर गौतम खटक जी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की ओल्ड एज डेंटल केयर पर। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप किसी खास विषय से जुड़ी डॉक्टरी परामर्श चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसके नंबर्स लगातार हम आपको बताते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 का 10वां संस्करण गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होती, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर वक्त मस्त मलंग होकर आगे बढ़ रहा है और वक्त हुआ है 4:08 और पूरे 7 सेकंड। और कहते हैं कि वक्त बहुत कुछ बताता है, वक्त बहुत कुछ सिखाता है, वक्त बहुत कुछ समझाता है। और आज इस वक्त करियर पाथवेज में, क्योंकि अल्फा जेन प्रोग्राम है और करियर पाथवेज हमारे साथ है, तो आज हम बात करेंगे करियर इन सिविल इंजीनियरिंग की। जी हाँ, आज का दिन ख़ास है और आज के दिन की तरह ही ख़ास है हमारा आज का टॉपिक। आज है 15 सितंबर और हम सभी भारतीय सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय अभियंता दिवस की, नेशनल इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये दिन देश के महान इंजीनियर, विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में हुआ और उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े योगदान दिए, बहुत सम्मानित योगदान दिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाई। और उनकी जन्मतिथि पर, उनकी जयंती पर हम सभी सेलिब्रेट करते हैं विश्व राष्ट्रीय अभियंता दिवस। और यही वजह है कि आज हम करियर पाथवे में लेकर आए हैं, जी हाँ, करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से कोर्सेज कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे हम आज करियर पाथवेज में।

सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम आज, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग की वो शाखा है जिसमें इमारतों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशंस, स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुविधाओं को, जी हाँ, इनकी योजना बनाने का काम रहता है, प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शंस, निर्माण और रखरखाव यानी मेंटेनेंस से संबंधित जो भी काम रहते हैं उनके ज्ञान से अवगत कराया जाता है। उस ज्ञान को अर्जित करने में सहायक बनती है सिविल इंजीनियरिंग। और आज है सिविल, जी हाँ,

नेशनल इंजीनियर्स डे और आज हम अल्फा जेन में लेकर आए हैं करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप 12वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं क्लास में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद आप BTech या बैचलर इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना होगा? जी हाँ, ये तो 12th की बात हुई। 12th के बाद आपको करनी होगी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी जोर लगा के, क्योंकि बहुत टफ रहता है। लेकिन जब ठान लिया जाए ना, जो टफ चीज़ें होती हैं वो भी बहुत आसान हो जाती हैं। तो 12वीं में आपके पास PCM का कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे, जैसे JEE मेन या JEE एडवांस, या फिर राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं भी रहती हैं, आप वो भी दे सकते हैं। या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे संबंधित वो कॉलेज भी अपनी प्रवेश परीक्षाओं कंडक्ट करता है, तो आप उन परीक्षाओं के बारे में भी जान सकते हैं। आपने जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे क्लियर कर लिया है तो उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग, एंड इसके बाद शुरू होगी क्या? जी हाँ, या तो आप BTech कर रहे होंगे या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ चुके होंगे।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ पाथवेज। जी हाँ, करियर पाथवेज प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन सिविल इंजीनियरिंग की। आज 15 सितंबर है, बहुत ही ख़ास दिन है, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना दोस्तों, वो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और युवाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जी हाँ, हम सब भारतीय भारत के सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास, हम सभी भारतीयों के सामने है लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ऐसे में सिविल इंजीनियर्स विशेष भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। जी हाँ जनाब, और आज करियर पाथवेज में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है, जी हाँ, करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। 12वीं के बाद आप बीटेक कर सकते हैं या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और ये 4 साल का कोर्स रहता है। इसमें एंट्रेंस देना होता है जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस, और इसी के साथ साथ राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं रहती हैं, या फिर संबंधित कॉलेज जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी अपनी प्रवेश परीक्षाएं कंडक्ट करते हैं, तो आप इनके ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर बीटेक करने के बाद आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप एमटेक कर सकते हैं, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए जो योग्यता होगी वो होगी आपके पास या तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, गेट का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है ये, और इसको देने के बाद वही काउंसलिंग रहती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है एमटेक के कोर्सेज के लिए, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसकी अवधि 2 साल रहती है। आप इससे भी आगे बढ़कर और ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहते हैं तो इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, इसकी अवधि 2 साल की रहती है, और इसके बाद भी आप इस क्षेत्र में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के साथ आगे जाना चाहते हैं तो आप PhD भी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क से जुड़ सकते हैं या टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं करियर इन सिविल इंजीनियरिंग की।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्री

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: I experienced that too.

दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं इधर उधर भी जाते हैं तो हमारी नज़र वहाँ की जो इमारतें होती हैं, सड़कें होती हैं, बांध होती हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ ज़रूर हमारी नज़र जाती है। और एक ख्याल जो बात हमारे मन में आती है वो ये आती है कि किसने बनाया होगा इतने विशाल स्ट्रक्चर को, कैसे बनाया होगा और कैसे वो इंसान इस क्षेत्र में आया होगा, उसने क्या क्वालिफिकेशन अर्जित की होगी कि वो ये सब कुछ बना पाया। जी हाँ, और आज हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाया कैसे जा सकता है, कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो 12वीं के बाद आप किन किन कोर्सेज को कर सकते हैं उसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब अगर जाने की 10वीं के बाद भी सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आया जा सकता है तो क्या कहने। जी हाँ जनाब, 10वीं के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज लगभग 3 साल के रहते हैं और ये डिप्लोमा कोर्सेज आप ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी ये डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो एक संस्थान है वो भी कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाती है जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के कोर्स रहते हैं। जी हाँ, NSIC की बात की जाए तो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अंतर्गत कई तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और इसके साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD करवाया जाता है। और इसकी अवधि की बात की जाए तो इसकी अवधि सिर्फ 1 महीना रहती है, 1 महीने का ये आप कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए या तो आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BTEC या BE इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ आप CAD CAM एडवांस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर 2 महीने का ये कोर्स है NSIC से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग कर सकते हैं और आप कर सकते हैं एडवांस डिप्लोमा इन MEPF डिज़ाइन, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग डिज़ाइन से संबंधित एडवांस डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं NSIC से।

0: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
1: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हो, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर 9:00 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। हमारे साथ प्रोग्राम करियर पाथवेज, हम आज बात कर रहे हैं करियर इन सिविल इंजीनियरिंग।

0: जीन रिंग की। जी हाँ, आज है 15 सितंबर और आज है सर एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती। और उनके उन्होंने अपने काम के ज़रिए, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने काम किए, अपने काम के ज़रिए उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है वो केवल इमारतों, पुलों, बांधों और सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज की समस्याओं के समाधान और देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। जी हाँ, आज के दौर में इंजीनियर देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास की रीढ़ माने जाते हैं। सड़क, रेलवे, पुल, मेट्रो, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में और भी कई क्षेत्रों में इंजीनियर्स की भूमिका जो रहती है वो महत्वपूर्ण रहती है। और हमारे पास ये लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ऐसे में सिविल इंजीनियर्स बहुत कुछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज नेशनल, जी हाँ, इंजीनियर्स डे पर हम सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हैं। और अगर बात की जाए इस क्षेत्र में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, तो उसकी बात हम पूरे एक घंटे से कर ही रहे हैं। अब बात आ जाए किन किन इंस्टीट्यूट से हम ये जो कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के वो कर सकते हैं, तो कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को नई ऊँचाइयाँ दे सकते हैं। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और विशाखापट्टनम, यहाँ पर से आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली, बिट्स पिलानी, पिलानी राजस्थान, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पिलानी राजस्थान से भी आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। IIT रुड़की, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर केरला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर तमिलनाडु, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सालेम तमिलनाडु से भी आप कई कोर्सेज कर सकते हैं। और आप जब इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के हैं।
1: It's me on the track. Let's go.

हाँ जनाब, आज हमने बात की कि आप किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, किस किस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और बात की जाए कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होता है, जो जॉब्स रहती है, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोविंशनल सिविल सर्विसेज जो स्टेट लेवल की होती हैं, आप उनके एग्जाम्स दे सकते हैं और वह उससे रिलेटेड जो पोस्ट रहती हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप PWD, CPWD, जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, रेलवे, प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं और मेट्रो, कहीं भी आप जा सकते हैं। सिविल इंजीनियर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही वृहद है और बहुत ही ज़्यादा अपार संभावनाएं समेटे हुए है सिविल इंजीनियरिंग का ये क्षेत्र। आज नेशनल इंजीनियर्स डे के अवसर पर हम लेकर आए करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर निकालना शुरू कर दीजिए, ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप ढूंढेंगे वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा और आपके ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स आपके साथ रहेंगे। गीतांजलि सोनी।

नमस्कार, अब समय है रेनबो मुख्य समाचारों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चेन्नई के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा।

सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लोक जीवन का पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यह पर्व धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी, हम सबकी वाणी आकाशवाणी में आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं ना कि ये जो समय होता है इसमें हम सबकी जो वाणी यानी कि हमारी कॉन्वर्सेशन, एनर्जी, बातें एक दूसरे से मिलती हैं तो अलग ही मैजिक क्रिएट होता है। बिल्कुल, दिस इज द टाइम जब हम सब मिलकर जानते हैं हमारी सिटी में और क्या खास हो रहा है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं सिटी लाइट्स में आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ओवर द नेशन। और आज फिर नेशन का प्यार, नेशन की बातें जानने के लिए, समझने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है आप सबसे कहना, शुरुआत में कह देती हूँ कि देखिए अभी अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है तो आप जानते हैं थोड़ा सा टाइम वार्म अप में लगेगा, हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये मैंने डिसाइड किया है कि जो डेट है ना, यानी कि तारीख पे तारीख नहीं देंगे, आपको शुरुआत में याद दिला दूंगी। बिकॉज लास्ट वाले शो में मुझे मैसेज आया कि आप ना डेट और दिन हमें शुरुआत नहीं बता दिया कीजिए ताकि एक बार रिमाइंडर हमें अच्छे से हो जाए, एक घंटे के दौरान जितनी भी चीज़ें हम करना चाहते हैं उस डेट में कर लें। तो आज बहुत ही खूबसूरत डेट है, बड़ा प्यारा दिन है जी, बिल्कुल मंगलवार है, मैजिकल मंगलवार कह सकते हैं, टेंटलाइजिंग ट्यूसडे कह लीजिए। और 15 तारीख है, जिनके 15 तारीख के बर्थडे हैं, 6 नंबर, 5 and 1 6, न्यूमरोलॉजी भी आपको बता देती हूँ। ऑसम ऑसम डे है और बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जो सेलिब्रेशन हम सिटी लाइफ में आपके साथ करने वाले हैं उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा ओनली ऑन 102.6 मेगा माइंड ब्लोइंग हर्ट्स पर।

कितना प्यारा म्यूज़िक है, कितना लवली सॉन्ग है, और वाकई ना ऐसा लगता है सुन के कि हाँ खुश होना चाहिए। और ना खुश होने वाली बात क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं चलती हैं। हम लोग अच्छी हो रही होती है ना हमारे साथ, लेकिन हमें लगता है नहीं कुछ तो कमी है, समथिंग इज़ मिसिंग। क्लैप योर हैंड्स, शेक योर सेल्फ। जी बिल्कुल, जब बहुत ही ऐसा लगे ना स्लगिश सा, कई बार हम देखते हैं ना लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं, पैप अप कर रहे होते हैं, हम कहते हैं क्या कुकू हो गया है दिमाग में, लेकिन नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें शेक नहीं कर रही हैं, तो आपको अपने आप को शेक करना चाहिए, यानी कि अच्छे से हाथ अपने मूव करो, बॉडी मूव करो, रनिंग पे चले जाओ, जिम करो, या ज़ोर से जंप करो, डांस करो। प्रिडोमिनेंटली ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि जो बॉडी में स्लगिशनेस, हैवीनेस डिवेलप हो जाती है ना, वो चली जाए। इसीलिए तो बड़े लोग पहले कहते थे ना कि शुरुआत व्यायाम से होनी चाहिए। हम सब हंसते हैं इन बातों को लेके क्या बातें कर रहे हैं, व्यायाम मीन्स वॉट? तो व्यायाम का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाओ जुलाओ। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हो और रात तक मोबाइल हाथ में रहता है, बस वो फिर सारा दिमाग, जितनी भी एनर्जी है तो क्या मोबाइल में हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, उसी में चली जाती हैं। हम तो चाहते नहीं ना ऐसी एनर्जीज आएँ। एनी विच वेज, अभी की जो खूबसूरत बात यह है कि टेम्परेचर हालांकि 32 डिग्री है, बट पार्टली क्लाउडी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो गर्मी तो होगी उसमें। थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि जैसे मान लीजिए जैसे चिपचिपापन हो रहा है आपको, ह्यूमिडिटी हो रही है, बट बाय एंड लार्ज ये दो दिन आपको झेलना ही पड़ेगा, कोई बारिश नहीं आने वाली है। हालांकि लिखा होता है पार्टली क्लाउडी, बट नो, देर इज़ नो रेन। और जिनका आज फास्ट है वो 6:26 पे सनसेट हो जाएगा, तो जो सूर्य देवता के ढलने के बाद फास्ट खोलते हैं, मुझे फास्ट को तोड़ना कहना बड़ा ख़राब लगता है, खोलते हैं ना, तो उनके लिए टाइम बताना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही जो मौसम है उसका हाल लेट नाइट तक ऐसे ही रहने वाला है, मैक्सिमम 30 डिग्रीज, 29 डिग्रीज ये रहने वाला है। सो दिस इज़ वेदर फॉर यू माय फ्रेंड। बारिश हो सकती है आए, लेकिन नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, कल या परसों हो सकता है थोड़ी सी फुहारें आपको मिलें, बट आज के लिए तो ऐसा कुछ पता लग नहीं रहा। फिलहाल आपका क्या मिजाज है वो भी आप बताइए, क्योंकि आप हैं सिटी लाइट्स में, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ विद दिस गजब का दिन।

और फिर आपका वेलकम कर लेती हूँ। फॉर दोज हैव जस्ट ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ ओनियन स्टेशन ऑफ द नेशन। ट्रैफिक की बात मत करो, किसी चीज़ की बात मत करो, वो बातें करेंगे। बहुत सारे लोग इंस्टेंटली मैसेजेस देना शुरू हो जाते हैं कि भाई पहले ट्रैफिक का हाल बताइए। ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक का हाल तो आप जिस जिस कॉर्नर पर होंगे ना, आप घर से भी निकलेंगे आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आपके घर के बाहर आधे घंटे का जाम लगा है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा चैलेंज आजकल फील होता है, बिकॉज़ हम लोग के थोड़े टाइट स्केड्यूल रहते हैं। लोग जब पूछते हैं ना आप कितनी देर में पहुँचेंगी, मैं गूगल देवता से पूछती हूँ तो वो बता देते हैं डेढ़ घंटा लग रहा है। द मोमेंट यू कम ऑन रोड, तो आपको उस टाइम तो नहीं पता चलता ना कि आपके घर से नीचे निकलते ही कुछ दूर चलते ही किसी ने बहुत समझदारी से गाड़ी टेढ़ी लगा दी होगी या रेड लाइट ख़राब होगी, तो वो एक ऐड ऑन हो जाता है अनदर 15-20 मिनट्स। तो मतलब किसी को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। और आजकल ना इसी वजह से मैंने देखा है लोग इतना इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होंगे कि हम झूठे डिक्लेयर ना हो जाएं, लाइव कर देते हैं। सीरियसली मैंने देखा है लोग लाइव कर रहे हैं लोग लाइव कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से कि देखो जी हम लोग तो यहाँ पे हैं, पौने घंटे से जाम लगा हुआ है, हम लोग गुड़गांव हाईवे से इतनी दूर है। मतलब लोग लिटरली ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, बिकॉज वो रियलाइज़ करते हैं कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, प्रोफेशनल जगहों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। क्या करें भाई, समझ नहीं आता। इसका एक ही तरीका है, एक ही हमारे पास ऑल्टरनेट है, वो यही है कि भाई जितनी कम आप अपनी गाड़ियाँ निकालो। बार बार मैं बोल बोल के भी थक गई हूँ, हालाँकि मुझे पता है थोड़ा सा मेट्रो में प्रॉब्लम हुई थी येलो लाइन में, काफ़ी देर तक येलो लाइन डिस्टर्ब रही। 25-25, 30-30 मिनट जहाँ लोगों को पहुँचने में लगने चाहिए थे उनको 45 मिनट, एक घंटा लगा, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई थी। तो देखिए ये लेकिन कभी कभार की प्रॉब्लम होती है, एक रेगुलर इशू नहीं है ना। तो जहाँ पे आपको लगता है कि रेगुलरली आपको ट्रैवल करना है, ट्राई एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ मच बेटर आई थिंक।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

ऑलराइट जी, अभी मैं ये जो प्रोमो सुन रही थी फार्म टू सिटी का, तो मेरे दिमाग में बस वही बातें बार बार आ जाती हैं कि कुछ ऐसे विजुअल होते हैं ना, जब आप ट्रैवल करते हो आप देखते हो कई खेतों में लोग चावल बो रहे हैं, आप देखते हो बिल्कुल घुटने घुटने तक पानी है, इतनी धूप है, सब है। बाकी जो खेतों में कई बार जब आप ट्रैवल करते हो तब आप देखते हो, दिल्ली के आसपास तो ये नज़ारे बहुत ही मुश्किल होते हैं। व्हेन यू गो इन इंटीरियर्स, कहीं लंबे ट्रैवल पे जाते हो तब आपको दिखते हैं। और हर बार मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम ये देखते ना तो ऐसा लगता है, बताओ कितनी मेहनत से सब्जियाँ उगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे किसान। लेकिन जब खाने की बात आती है ना तो हमारा पूरा नज़रिया बदल जाता है। खाना वेस्ट करने में हम मिनट नहीं लगाते हैं, खाना देख के मतलब आधा टाइम तो ये क्या है, ये भिंडी टिंडे तोरी क्या चीज़ है, हर रोज़ ही चावल बन जाते हैं, मतलब इतनी ईजीली हम चीज़ों को नकार देते हैं। जबकि अगर आप देखो ना, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट, और इसमें खाली ये नहीं है एफर्ट की बात है, इसमें पैसा भी बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, आप मौसम पे डिपेंड करते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें वैसे सभी समझदार हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबको पता होगा ये बातें, लेकिन क्या होता है ना, कॉन्शियसनेस हमारी हट जाती है ओवर द पीरियड, हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंसियरली सोचते नहीं हैं। तो मैंने तो ये प्रण लिया हुआ है, वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, मैं ये चीज़ें रीइटरेट करती ही रहूँगी, बताती रहूँगी लोगों को कि भाई देखिए, जो चीज़ें हम बहुत बहुत ईजीली हमें अवेलेबल हैं और हमें लगता है अले अले मार्केट में जाके, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी सारी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, हम उसी को दिमाग में रख के चीज़ें करते हैं और एक मिनट में घर से ऑर्डर करते हैं, घर में सामान आ जाता है। लेकिन जो सामान बना रहा है, उगा रहा है, हमारे लिए तैयारियां कर रहा है, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। सो डू थिंक अबाउट इट, जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं ये सोच के ऑर्गेनिक है, तो उसके प्राइस के बारे में ज़्यादा ना सोच के उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे उस बारे में सोचें। और जितने भी हमारे आर्टिजन्स होते हैं, जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। ये जस्ट मैं कहना चाहती हूँ, मेरे दिल में आ गया तो मैंने कहा कि मैं बोलूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज सिटी लाइट्स इज़ ऑल अबाउट द टुगेदरनेस ऑफ सिटी, और हमारी सिटी में क्या बेहतरीन तरीके से हो सकता है, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, विच कैन रियली राइज एंड शाइन फॉर पीपल टू कम। एंड ऑब्वियसली जितने भी हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए ना। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, बढ़ावा दीजिए थोड़ा सा।

बैंग बैंग बैंग बैंग, ये तो गाना सुनते ही ना, मतलब वो जो एरा था ना ऋतिक का, डांस का, मूवीज का, वो बहुत ही डिफरेंट था।

अभी चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन कुछ जो मेमोरीज़ होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. ये एक गाना, और अभी जो मैं नेक्स्ट प्ले करूँगी ना आपके लिए, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना, वो ज़्यादा है जो मैं नेक्स्ट प्ले करूँगी, तो आपको सुनना पड़ेगा कौन सा है. बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ ऑल्सो अ फन सॉन्ग. और देखिए इसमें कुछ लाइन्स आ रही थी ना, जब तू मेरे साथ चल, तो नाचते गाते वाला पूरा सिस्टम है इसमें, तो भाई जिस हिसाब से डाइवर्जन हो जाते हैं कभी भी कहीं से भी, जो ट्रैफिक का हाल चल रहा है, अगर आप ऐसे ही नाचते गाते साथ चलते रहें तो अच्छा है. अगर उसमें गुस्सा गिला लड़ाई झगड़ा करेंगे तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, मूड ख़राब करेंगे वो अलग. तो एक खबर दे देती हूँ आपको. ख़ास कर जो फरीदाबाद से सराय काले खां आते हैं ना, तो उनके लिए स्पेशल ख़बर है ये, क्योंकि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो NHAI और वो वाला नहीं खुला था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो जैतपुर से सराय काले खां आश्रम उनका एक कैरिज वे खोला था बीच में ट्रायल, वो उन्होंने बंद कर दिया. उसका रीज़न ये वो है क्योंकि वहाँ पर सराय काले खां महारानी बाग और आश्रम के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया था, इसलिए जो उसका ट्रायल खोला था कैरिज वे का वो बंद कर दिया गया. तो ये इनफैक्ट मंडे को अचानक बंद हो गया था, तो जितने लोग आ रहे थे उनको पता ही नहीं था, काफ़ी परेशानी हुई उनको. तो मुझे लगा एक बार आपको रिमाइंड कराना बनता है कि अगर आप कोई ऑल्टरनेट रूट ले लें, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. जो ऑल्टरनेट रूट है वो जो एक्सप्रेस वे का DND से होते हुए जयपुर जाते हैं ना, फरीदाबाद जाने वाला रास्ता है, वो खुला हुआ है, वो आप जा सकते हैं वहाँ से. बाकी आप लोग तो बिल्कुल ही प्रो हैं, कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रैफिक होता है सराय काले खां से, वो रिंग रोड ये 3 लेन में मिल रहा था, जिससे कि बहुत ज़्यादा जाम बन रहा था वहाँ पे. और आजकल तो बस पूछे मत, 11-11, 10-10 मिनट के जो रास्ते थे वो पौना घंटा 1-1 घंटा ले लेते हैं. अब इसमें फिर मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, वो क्या बात है, क्या मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना, क्योंकि आज वो मैं भुगत के आ रही हूँ भाई. तो इसीलिए सुनिए, जानिए और क्या चीज़ें हैं, हमारी सिटी क्या कर रही है और क्या रिमाइंडर मांग रही है, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को ओनली ऑन सिटी लाइट्स. और यही वो गाना है जो आप सुन रहे हो. ये मैं अभी प्ले करूँ या बाद में कर दूँ, क्या करें, मन तो बहुत है सुनने का. चलो ये वाला मैं बाद में प्ले करूँगी, अभी मैं दूसरा वाला प्ले कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरा जो ट्रू ब्लू, जो मुझे बहुत किसी भी टाइम मैं सुन लूँ तो मेरा मूड ना थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मैं थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करेंगे, अभी तो 5:35 होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अभी हमें ज्वाइन करेंगे, मिलेंगे, फिर उनको भी कोई ना कोई ऐसा रॉकिंग गाना सुनने को मिलना चाहिए ना, जो मुझे बहुत पसंद है. खैर कोई बात नहीं, ये भी गाना आप लोगों को किसी टाइम में बहुत पसंद था, ये भी सुनिए. यू डू एंजॉय दिस वन ऑल्सो, एंड आई एम योर ओन गज़ब की गीतांजलि सोनी.

0: बस ऐसे गाने हैं ना, चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, इसी वजह से आप देखते हो बहुत सारे लोग पहन के घूम रहे होते हैं ना, बिल्कुल कलाई से अपने कंधे तक, वो एक स्ट्रेच फैब्रिक तक होता है जिसको कहते हैं कि यूवी प्रोटेक्ट फैब्रिक, वो पहन के घूम रहे होते हैं वो, ताकि वो चिट्टियां कलाइयां चिट्टियां रहें। खाली लड़कियों की नहीं है भाई, लड़के भी ऐसे करते हैं जो बाइक चलाते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। और आपको पता है इवन जब हम बाहर जाते हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पर खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस लाइक सिंगापुर, या फिर आप इधर जाओगे वियतनाम साइड ना, तो वहाँ आप देखोगे पूरा बॉडी सूट्स आते हैं यूवी प्रोटेक्टिव। जी हाँ, इतना कॉन्शियस हैं वहाँ पे लोग कि वो पूरा बॉडी सूट पहनते हैं जिससे कि जो सन रेज हैं वो आपकी बॉडी को पियर्स ना करें, रंग आपका काला ना पड़े, सांवला ना पड़े, इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। तो जो चिट्टे रंग से, गोरे रंग से जो फैसिनेशन है तो सालों पुराना है। और आपके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ ना, ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं चिट्टा गोरा होने की, ये मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत लोगों को। खैर, इसके बारे में किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी जो मुझे बात करनी थी, आज जब मैं आ रही थी इतनी, एक तो वैसे ही आपको पता ही है रोड्स की कंडीशन क्या होती है कई बार ट्रैफिक की वजह से, और ऊपर से रेड लाइट ये नहीं ख़राब है, चल रही है रेड लाइट चल रही है, लेकिन डिसाइड करते हैं लोग कि नहीं हमें तो ग्रीन लाइट हमारी निकल रहा था पूरा ट्रैफिक, अब पीछे जो होता है ना, जैसे एक ग्रीन लाइट का ट्रैफिक निकल रहा है उसके पीछे लगातार ट्रैफिक आ रहा है, अब रेड लाइट है आप रुक जाइए, या ऑरेंज येलो हो रही है आप थोड़ा स्लो करके रुकने की, ना ना ना ना, दे डिसाइडेड कि भाई चाहे हमारी रेड ही हो जाए हम तो चलाते रहेंगे, हम क्यों रुके जब हमारे सामने वाले ग्रीन रुक रहे हैं। अब जिनकी ग्रीन हुई है चौराहे में, वो कहते हैं हमारी ग्रीन लाइट हुई है तुम रुके नहीं, हम तो बीच में गाड़ियां घुसेड़ेंगे। वो इतना ज़्यादा मैसिव ट्रैफिक जैम हो गया कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, साइकिल तक के निकलने की जगह नहीं थी। सो आप इमेजिन कीजिए, जो क्रॉसिंग एक मिनट में क्रॉस हो सकती थी वहाँ पे लोग 15-15, 20-20 मिनट में क्रॉस कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तू तड़ाका हो रहा है। तो एक जिसे कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो सभी को परेशान करता है। बट मुझे ये समझ नहीं आता, हम सब लोग क्लेम करते हैं बहुत समझदार हैं, हमें पता है, लेकिन क्या हो जाता है ये, हम ऊँट की तरह या फिर चीटियों की तरह बिहेव क्यों करने लगते हैं, जहाँ पे एक चीटी जाएगी सब फॉलो करेंगे, ऊँट अगर सीधा चलता रहेगा सब फॉलो करेंगे। आपके अपने दिमाग है ना, अगर कोई एक गाड़ी निकाल ली है जिसने ग्रीन में रेड में, तो वो आगे अपने आप ही पकड़े जाएंगे, या फिर आजकल तो हर जगह कैमरा है, आप क्यों बैंड वैगन में शामिल होना चाहते हैं। अगर आपने आज ये सेम प्रॉब्लम्स फेस की हैं तो प्लीज़ बी द वन हु डजंट डू इट, मैं इतना चाहती हूँ, प्लीज़ डू इट फॉर अस। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी।

0: रेनबो पर।
1: जी बहुत सारी चीज़ें रेनबो पर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए उन लोगों के लिए खास कर क्या होता है ना, जितने लोग पहले एयरपोर्ट आते थे नोएडा से, उनको पता है कितनी दिक्कत होती थी। फिर लकीली हिंडन एयरपोर्ट वहाँ खुल गया तो लोग खुश हो गए कि चलिए एटलीस्ट वो जो जर्नी है वो थोड़ी ईज आउट होगी, अब इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट होता है ना, बहुत टाइम निकाल के चलना पड़ता है। मैं तो उन लोगों को कहती हूँ, मानती हूँ उनके हैट्स ऑफ, जो डेडिकेशन होती है, जो ऐसी टीयर टू सिटीज से आते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंस एंड द टाइम दे नीड, ओ माय गॉश। उनकी तो घूमने की डेडिकेशन को मैं सलाम करती हूँ। खैर, तो अभी क्या था कि जितने लोग हिंडन से ट्रैवल कर रहे थे खुशी खुशी, तो दो जो ऐसी जगहें थी किशनगढ़ और गुजरात की, वो फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी वहाँ से। तो लोग जो कि छोटी फ़्लाइट लेना चाहते थे, जाना चाहते थे, जिनको उससे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट था, वो थोड़ी परेशानी में आ गए थे। तो अच्छी बात ये है, उनको दोनों फ़्लाइट्स को दोबारा शुरू करने का डिसीजन लिया गया है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दोस्ट जो कि जाना चाहते हैं। तो हमेशा ऐसा होता है ना, जब चीज़ें कहीं से बंद होती हैं तो ऐसा लगता है अरे परमानेंटली अब क्या होगा। अभी क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चल रही होती हैं कि कहाँ से क्या चीज़ सूट कर रही है, कैसे फाइनेंशियली वाइबल है, कैसे लोगों के लिए फिजिकली वाइबल है। तो अभी तो हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। सो अगर कोई चीज़ इंस्टेंटली बंद होती है तो एकदम से रेज ना दिखाएं, और ख़ास कर रोड रेज तो बिल्कुल मत दिखाएं। अभी रिसेंटली आपने केस देखा है ना, बाइकर को मार दिए टक्कर। इमेजिन क्या ही चल रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब लोग ये भी नहीं देखते हैं कि सेम जेंडर के लोगों से लड़ रहे हो तो बराबरी का मुद्दा भी है। एक लड़की बाइक चला रही है, आप लोग गाड़ी में हो, आप उसको टक्कर मार देते हो, जस्ट फॉर व्हाट रीज़न, इट्स लाइक ईगो ट्रिप, क्या चल रहा है ये सब। थोड़ा सा आई थिंक सेंसिबली हम सबको बिहेव करने की ज़रूरत है। एंड राइट नाउ मुझे लगता है वो टाइम आ गया है, क्योंकि मैं ना जब ज़्यादा थोड़ा सा इमोशन में बहने लगती हूँ ना, देश को लेकर, मैनरिज्म्स को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर, तो मैं भी अपने आप को चिल करने के लिए एक ऐसा गाना हमेशा अपने लिए रखती हूँ जो मैं सुनूं और बिल्कुल हवा का रुख बदल दे। ये वही गाना जो मेरे लिए हवा का रुख बदल सकता है। इट्स अ नॉटी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, यू लाइक इट आई एम श्योर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, बहुत सारी चीजें जनहित में, आपके और हमारे हित में जारी होती रहती हैं, लेकिन क्या हम मानते हैं उन्हें? भाई, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है। और बिल्कुल अच्छा, मुझे पता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी और आपकी राय कुछ चीज़ों में एकदम मैच करती है। जैसे मैंने कहा, ये गाना लिटिल, अगर आपने इसको वर्ड बाय वर्ड सुना होगा ना, क्या होता है, वी गेट सो कॉट अप इन दी मे बी म्यूजिक कि हम वर्डिंग के बाद सुन नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग, एक पेप तो है उसमें। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सड़क में कहीं फंस गए हैं, गुस्सा आ रहा है, खासकर मैं बताती हूँ, बार बार मुझे शाम को ये चीज़ रिपीट करनी होती है, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, या फिर एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ वो लोग जो इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, जो कि शिफ्ट में काम करते हैं, एवरीबडी स्ट्रगलिंग विद द ट्रैफिक बॉस। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, पानी पीजिए, एंड आप रेनबो सुनते हैं ना, तो उसमें आपको मज़ा आता ही है। सो थोड़ा सा जस्ट शेक ऑफ योर लोड एंड जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज आप सुन रहे हैं, एक बार फिर बता देती हूँ, सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ओवर द नेशन। और नेशन के वो लोग जो चार धाम की यात्रा के लिए बुकिंग करा चुके थे, लेकिन ड्यू टू मानसून, आपको पता है, इतना सेफ तो नहीं होता, हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना होता है, तो प्रशासन पूरी पूरी कोशिश करती है कि पूरी सेफ यात्राएं हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दी गई थी। और आज से, यानी कि इस मैजिकल मंगलवार से, यात्रा फिर से शुरू हो गई है। तो हाथ दोनों जोड़ के अच्छे भाव के साथ आगे बढ़िए, जिनकी यात्राएं, आई विश देम, एंड वी इन फैक्ट फ्रॉम आकाशवाणी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रिप। और अच्छे से खुशी खुशी जाइए, खुशी खुशी आइए, और सुनते रहिए व्हाट, सिटी लाइट्स, और क्या।

0: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
1: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
2: जी और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं आप सिटी लाइट्स में, बिल्कुल बहुत सारी चीजें तो पता चल गई आपको, बट इन केस यू नो यू हैव जॉइंड इन लेट तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हालांकि देखिए ट्रैफिक अपडेट हमने दे दिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दी, चाहे वो फ्लाईओवर्स की थी, चाहे वो फ्लाइट्स की थी या फिर चार धाम यात्रा की थी, बट अभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको कि जो आप MMM अपने मैसेजेस की वेट करते हैं तो मुक्ति सैनी इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो, वो जल्दी आपके पढ़े जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जब आप स्टक हो जाते हैं कहीं, यानी कि जैसे आप हाईवेज में जा रहे हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो एक जो नंबर होता है 1033 वो तो हम सभी जानते हैं ना, वो आप हमेशा डायल करते हैं, और जिनको नहीं पता तो आज उनको पता चल गया होगा कि ये नंबर होता है 1033 विच इज़ अ हेल्पलाइन नंबर। अब इसमें कैच सिर्फ इतना आता है कि क्योंकि ये सारा मैनुअल काम है तो थोड़ा समय लगता है आने में, तो अभी ये भी एक अच्छा अपडेट है कि वैसे तो AI से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं AI इज़ टू स्मार्ट टू हैंडल, बहुत सारे लोगों की नौकरियां ख़तरे में हैं, बट देखिए कुछ चीज़ों के लिए AI अच्छा भी है। जैसे इसमें AI को इस्तेमाल करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा रहा है जिसमें इंस्टेंटली आपकी हेल्प हो जाएगी, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें वो समझ के आपको इंस्टेंट एज सून एज आपकी लोकेशन ट्रेस करके हेल्प पहुँचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे फिर आपकी गाड़ी की हेल्प हो या किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो, सो दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो देखिए टेक्नोलॉजीज के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। राइट नाउ जो प्रो है स्टूडियो में आने का वो ये है कि आप और हम मिलके ढेर सारी बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, थोड़े से दिल तक कनेक्ट होते हैं, और कॉन ये है कि एक टाइम लिमिट होती है, हमें जाना पड़ता है, क्या करें भाई, कुछ चीज़ें ओनली कुछ समय के लिए हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो जाते जाते आपके गज़ब की गीतांजलि आपको सिर्फ इतना कहना चाहती है कि देखिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, और अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यू आस्क फॉर एक्सटर्नल हेल्प। कोई भी चीज़ आप अपने हाथ में ना लें, दैट कुड बी डेंजरस। बस इतना कहना चाहती हूँ फ़िलहाल के लिए। अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी को दीजिए इजाज़त इस वायदे के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे और जो बातें कही हैं प्लीज़ सड़क पर एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशोर बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना

68वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक शतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में लोक जीवन के पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। तो हो रही है बहुत देर से देर कि कब आएंगे हम आपके लिए ऑन एयर और अब कब अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक पहुंचा देंगे। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए और फिर देखिए चमत्कार जादू सा यहाँ हो जाएगा कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पहुंचेंगे हम तक और हम करेंगे आप तक, आपके अपनों तक पहुंचाएंगे 9868107070 पर। तो आज कुछ थोड़ा सा मजेदार हो जाए, क्योंकि मूड जब बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है ना, हैप्पी होता है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा करने का दिल करता है। आपके साथ ऐसा होता है? भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मेरे साथ होता है तो मेरे सभी श्रोतागणों के साथ ऐसा हो ना हो, लेकिन करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए मूड को कर लीजिए एकदम झकास, एकदम बढ़िया सा। और वैसे ये सवाल सुनकर शायद आपका मूड बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको एक दिन के लिए अपने बॉस की कुर्सी मिल जाए तो सबसे पहला ऑर्डर आप क्या देंगे? यानी कि एक दिन के लिए आपको आपके ऑफिस में बॉस बना दिया जाए तो फिर आप क्या करना पसंद करेंगे? अगर बिजनेस है तो वहाँ के मालिक अगर आप बन जाएं, वो कुर्सी आपको मिल जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे, क्या ऑर्डर उस समय आप देंगे, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए 9868107070 पर। आप कहेंगे भाई हम तो बॉस नहीं बनना, हमें ये नहीं करना। नहीं, इमेजिन तो कर सकते ना, कल्पनाओं में जीना भी कई बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप करने को तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन अगर सोचिए ना, अगर हम कर पाएँ तो थोड़ा सा बियॉन्ड द बाउंड्री सोचते हैं, थोड़ा सा अपनी जो कहते हैं ना, जो बाउंड्रीज हमने सेट किया उसको तोड़ के, थोड़ा सा आगे तोड़ के देखते हैं कि क्या वाकई में क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसा हो भी सकता है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो भी श्रोतागण अभी अभी जस्ट हमारे साथ जुड़े हैं तो 9868107070 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए अपने बॉस की कुर्सी मिल जाए, यानी कि एक दिन के लिए आप बॉस बन जाएं, तो फिर पहला ऑर्डर आपका क्या होगा, बताना है हमें, हमारे साथ जुड़ जाना है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्ज दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। और मुझे तो आपके मैसेजेस का इंतजार रहने वाला है और एक ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। लेकिन अगर इस सॉन्ग को आप इस मैसेज से कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे।

अगर आपको एक दिन अपने ऑफिस में बॉस की कुर्सी मिल जाए तो फिर आप क्या ऑर्डर करेंगे? सबसे पहले क्या आप चीज़ है ऐसी जो मनवाना चाहेंगे या जो भी अपने एम्प्लॉयज़ को कहना चाहेंगे? तो ये मैसेज हम तक पहुंचा है महाराष्ट्र से। ये हमें विजेंद्र गहलोत का मैसेज आया है। वो लिखते हैं कि चाय के ऑर्डर दूंगा कि भैया चाय बनाई जाए। वाह, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी आपकी एक वो है। मैं अपने ऑफिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलकर हाईटेक बनाने का ऑर्डर दूंगा। प्रवीण चौहान का खरगोन मध्य प्रदेश से ये मैसेज आया है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपका सवाल जानकर। फिर भी मेरी सोच यही है कि यदि मैं एक दिन के लिए अगर मैं बॉस की कुर्सी पर बैठ जाऊं तो मैं सबसे पहले अपने मालिक होने का फर्ज अदा करूंगा। वही सोच जो सबके लिए होनी चाहिए, इज्जत और सम्मान, ना कोई भी भेदभाव, ना कोई जूनियर ना कोई सीनियर, सिर्फ एक ही प्यार के साथ काम करें। सोनू का बिजनौर से ये मैसेज आए। क्या ऐसा हो सकता है सोनू? ताकत मिली है ना, जिस दिन आपको मिल जाए ना, तो कुछ ना कुछ, मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचिए ना, कि कुछ अगर करने को मिले तो फिर आप क्या करेंगे। ये है वेस्ट बंगाल से। डिसिप्लिन सही करना होगा, ये ऑर्डर देंगे। सुकलाल का मैसेज हम तक पहुंचा है। भाई बहुत ही बढ़िया बात है। निहाल सोलन का हिमाचल प्रदेश से आया है कि मैं बॉस बन जाऊंगा एक दिन के लिए, तो सबसे पहले ऑर्डर सभी एम्प्लॉयज की 20% इंक्रीमेंट लगा दूंगा। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, ये कुछ किया आपने और बस वो लागू हो जाना चाहिए। फिर बॉस चेंज भी हो तब भी चेंज नहीं होना चाहिए।

ये है। वैसे तो ये संभव नहीं है, पर अगर ऐसा अवसर मिल जाए तो मैं सभी कर्मचारियों के समान व्यवहार करूंगा, बॉस और अन्य कर्मचारियों में कोई ऊंच नीच नहीं रखूंगा। भीरूलाल का ये मैसेज हमें आया उज्जैन मध्य प्रदेश से, और ये मैसेज है, अरे अरे अरे थोड़ा सा गैप अगर आप मैसेज में देते हैं, हम बॉस बन गए तो सभी कारीगरों को प्यार से संभाल कर रखेंगे, किसी को ऑर्डर नहीं देंगे। ये हमारे पास यशवंत का मैसेज आया है महाराष्ट्र से। अरे आप तो ऐसे लग रहे मौके को गवा देंगे। वैसे एक मैसेज हम तक आया था हिमाचल प्रदेश से, शायद उन्होंने कहा था कि भाई सभी की इंक्रीमेंट वो कर देंगे 20%, तो ये मौके पे चौका मारना हुआ, ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। ये है कि एक दिन के लिए बॉस बनने का मौका मिला तो जो अच्छे काम बॉस नहीं कर सके वो ईमानदारी के साथ करके दिखाना है। चलिए मैसेज आया है आदिल कमर तस्दीक अली का, मुजफ्फर अली का मैसेज हम तक पहुंचा है। ये है, अगर मुझे बॉस की कुर्सी एक दिन के लिए मिले तो मेरा पहला ऑर्डर टीम सदस्यों में डर ख़त्म करूंगा, उन्हें दोस्त की तरह कभी भी अपनी समस्याओं को बताने के लिए कहूंगा, उनका निवारण के लिए उम्मीद रखते हैं तो संभव हो सके। गलतियां होने की कमजोरी नहीं बल्कि उन्हें आगे से रोकने के लिए क्या करेंगे, जैसे टेंशन नहीं खुशी ऑफिस और कर्मचारियों में रहे। कर्मचारी धंधे से ज़्यादा कीमती मानता हूं क्योंकि टैलेंट इनमें है, जिसे कंपनी चलती है और सभी लोगों का घर भी चलता है। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज आया है। ये मैसेज हमारे पास आया, विल एनालाइज द केसेस ऑफ द कास्ट। इतने सारे आपने नाम लिखकर भेज दिए हैं आप मैसेज, तो लिखते एक दिन के लिए अगर बॉस बना दिया जाए तो हमें अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आइडिया, जानकारियां, मार्केट रिसर्च करेंगे, प्लानिंग करेंगे और बजट भी तय करेंगे, काफ़ी सारे बिजनेस की बेहतरीन सीख लेंगे और न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे। राजकुमार का महाराष्ट्र से ये मैसेज हम तक आया है, एक दिन के लिए अगर हमें बॉस की चेयर मिल जाए तो स्टाफ के साथ हमारे एटीट्यूड एज आ स्टाफ मेंबर की तरह होगा। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी का ये मैसेज आया है, भाई बहुत कुछ कर सकते हैं अगर एक दिन के लिए आपको बॉस की कुर्सी मिल जाए तो, भाई क्या कुछ कर सकते हैं सोच के देखिए, एकदम जवाब देने की जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी समय। अगर सोच के देखिए एक दिन आपके बॉस की कुर्सी आपको मिल जाए तो क्या कुछ आप बेहतरीन, खास, सबसे अलग हटकर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो थोड़ी सी कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। देखिए इमेजिन की दुनिया बहुत बड़ी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता, उसमें हम अपने राजा हैं या रानी हैं या राजकुमार हैं या राजकुमारी, जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं। तो सोच के देखिए और कुछ ऐसा हमें बताइए जो लगे वाह ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। 9868107070 पर आप भेज सकते हैं अपने दिल की बात, हम तक पहुंचा सकते हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और प्लीज़ ट्रैफिक है थोड़ा सा रुक जाइए, इत्मीनान रखिए, संयम रखिए, सब कुछ आप तक पहुँचेगा, आप भी अपने घर तक पहुँचेंगे, लेकिन सुरक्षित पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है।

0: जी हाँ, आपको भी हक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपको अपने बॉस की कुर्सी मिल जाए एक दिन के लिए, तो बस उस पावर को महसूस कीजिए और वो सब करने की सोचिए जो आप करना चाहते हैं। देखिए कितना मजा आएगा। 9868107070 पर भेज दीजिए अपने दिल की बात, वो खुराफात जो आपके दिमाग में इस समय चल रही है, ये सोच करके हाँ फाइनली आपको वो सीट मिल गई है, वो कुर्सी मिल गई है। फिलहाल मैं लेती हूँ यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके मैसेजेस के साथ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
6: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं, और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
5: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे।

0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक हम पहुंचते रहेंगे सीधा आप तक। चलिए सब मिलकर पिज्जा खाते हैं ऑफिस में मंगाकर, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट कल्चर से डिफरेंट होकर। शैलजा का नीमराना से ये मैसेज आया है और ये मैसेज है कि अपने बॉस की सीट पर बैठ जाऊं तो सबसे पहले मैं सभी के लिए सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा जिससे कि सभी एम्प्लॉय खुश हो जाए और दिल लगाकर काम करेंगे। किशन और नीलम का, स्वाति का, किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से ये मैसेज आया है। ये है कि आज के टॉपिक पर कहना चाहूंगी, अगर मैं एक दिन के लिए बॉस बना दिया जाए तो मैं ऑफिस में कॉफी का ऑर्डर दूंगी एंड सभी एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेवियर रखूंगी। अगर कोई अच्छे से काम करते हैं तो प्रमोशन दूंगी। अंशिका हस्तिनापुर से ये मैसेज हम तक पहुंचे। सिर्फ एक दिन के लिए बात की जा रही, तो एक दिन में आप क्या चमत्कार, क्या कुछ खास कर सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं या जो भी आप करना चाहें बताइए। मैं कंपनी में एक दिन का बॉस बना तो मैं सारे कर्मचारी की तनख्वाह सम्मानजनक कर दूंगा ताकि वह किसी अभाव में ना रहे। देहरादून से आलोक पवार का और मिनी का ये मैसेज आया। भाई बहुत ही बढ़िया बात, जहाँ सैलरी बढ़ने की बात है तो वहाँ तो खुशी हो ही जाती है और सभी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ रही पता चल रहा है मुझे। आई विल इम्प्लीमेंट वर्क फ्रॉम होम एंड आई विल ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर दैट एंड आई विल इन्फॉर्म माई सबॉर्डिनेट दैट आई ओनली वॉन्ट रिवेन्यू हाउ एंड वेन इट इज जनरेटेड दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम कंसर्न विद रिवेन्यू, यू डिसाइड हाउ टू वर्क एंड वेन। नेहा का गाजियाबाद से ये मैसेज। स्मार्ट वर्क जो आपने नेहा यहाँ पे डाला है ना, जो काम किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और ये इतने सारे मैसेज हैं, अगर आप एक भी मैसेज भेजेंगे तो भी वो हम तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ इतने सारे मैसेज भेज के कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें। एक दिन के लिए बॉस की कुर्सी मिल जाए तो मैं सारे स्टाफ की रुकी हुई पगार बांट दूंगा। और ये है बाबुल कश्यप का मैसेज हम तक पहुंचा है। भाई धन्यवाद, बहुत ही अच्छी सोच है कि अगर किसी की सैलरी या पगार रुक रही है तो वो आप समय पे पहुंचाते। मैं तो अपने बॉस की अपनी जगह खड़ा कर दूंगा। ओहो, मैं अपने बॉस को अपनी जगह खड़ा कर दूंगा तो वो खुद से समझ जाएंगे। नवाब अहमद भारती का बली मारन से ये मैसेज आया है और ये मैसेज है, मुझे अगर बॉस बनने का एक दिन का मौका मिले, अगर जो वर्क अपने एम्प्लॉय को करना है उसे बेहतर स्वयं करके अपने एम्प्लॉय को प्रेरित करूंगा ऑर्डर दे के, क्योंकि चाहे बॉस हो या एम्प्लॉय, वो तो अगर एक काम को बेहतरीन कर सकते हैं, टीम बनाकर काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट बेहतर आता है। एक सिंपल और मोटिवेशन रिलेशनशिप होना चाहिए बॉस और एम्प्लॉय के बीच। रोहित सिंह चौहान का ईस्ट दिल्ली से हमको ये मैसेज आया है। तो चलिए भाई, कुछ खास कुछ खुराफाती अगर आप करना चाहते तो वो भी बता सकते हैं। आई वुड टेक माई ऑफिस स्टाफ लाइक क्लीनर्स हेल्पर्स ऑन अ हॉलीडे ट्रिप एंड फीड दैम गुड फूड एंड गिव दैम गुड क्लोथ एंड मेक दे इन्जॉय द होल डे। राम एंड मेहर का मैसेज बेंगलोर से ये मैसेज। भाई बहुत ही सही बात है, ट्रिप पर ले जाना बनता है, मतलब बनता है। एक दिन का बॉस बन जाने पर जो सैलरी का असमानता है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। जो बहुत नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको भी सही सैलरी पर लाऊंगा। अजय कुमार का मोहाली पंजाब से ये मैसेज आया है। अच्छी अच्छी सोच आ रही है आपके यहाँ पे। ये है कि ऑफ डे की बात करूंगा और छुट्टी कर दूंगा, तुम भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ और बॉस भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, सभी के बल्ले बल्ले हो जाए। प्रदीप सलूजा का जनकपुरी से हमको ये मैसेज आया है। तो अगर आप भी कुछ खुराफाती करना चाहते हैं, अगर एक दिन आपको बॉस की कुर्सी मिल जाए तो वो क्या खुराफात होगी बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। कहाँ पे? प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। वैसे ये भी एक नशे की तरह आपके सर पे चढ़ रहा है कि वाकई में बॉस की कुर्सी जैसे आपको मिल ही गई है। चलिए ऐसा ही सोचिए और प्यारे प्यारे मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए।

जी हाँ, अभी तो आप बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये खुमारी आप पे से उतर ही नहीं रही है कि फाइनली हमें बॉस बना दिया गया है या हमें एक दिन के लिए बॉस की कुर्सी मिल गई है। कोई बात नहीं, बस इसी खुमारी में रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन जवाब हमें बहुत चाहिए। इफ़ आई बिकम द बॉस फॉर अ डे, माई ऑर्डर विल बी दैट एवरी स्टाफ विल गो फॉर एन आउटिंग ऑन एवरी फ्राइडे, सो दैट्स एवरी वंस मूड बिकम फ्रेश एंड द Tiredness of work goes away. ये तो बनता है, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो ब्रेक की बात

मजा आ रही है ना, ये मच नीडेड है कि भाई सैलरी भी डिडक्ट नहीं होगी, सैलरी भी कट नहीं होगी और आप जाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए फ्राइडे नाइट जाकर। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, बार बार एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ये है हम अपने बॉस को रिमाइंड करवाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही साल हो चुके हैं।

बढ़िया हैं, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बताइए आपने अभी तक प्रोग्राम में क्या सुना, कि हम क्या पूछ रहे हैं आपसे। कुछ नहीं कर सकता, मैं रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, ये हमारे पास सनी कपूर का मैसेज आया। एक दिन के बॉस बनने पर सबसे पहले मैं अपने साथियों की जो शिकायतें हैं, जो ग्रीवेंस हैं, उनको सुनूंगा और उनको दूर करने का प्रयत्न करूंगा, ताकि किसी को किसी से कोई शिकायत ना रहे, वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सके। कैलाश शर्मा का गुरुग्राम से ये मैसेज है। भाई, जिन जिन्होंने छुट्टी देने का जो वादा किया ना, मुझे लग रहा है काश आपके ऑफिस में हम होते तो कितना मजा आता, लंबी लंबी वेकेशंस पर जा सकते। भाई, ये तो बनता है ना बॉस होने के नाते, ये कि काम तो हमें करना ही है। देखिए, कहीं हम जा रहे हैं, एम्प्लॉय हैं कहीं के, तो काम तो हमें करना है, लेकिन जो ब्रेक है ना, वो बनता है कि नहीं बनता है? वो बनता है। 9868107070 पर बता दीजिए कि अगर एक दिन के लिए आपको अपनी बॉस की कुर्सी मिल जाए, कि आप ही बॉस है अपने ऑफिस के, तो आप सबसे पहला क्या ऑर्डर देना चाहेंगे और क्या होगा वो और क्यों होगा, बताइए। हमारे साथ जुड़ जाइए, कुछ बेहतरीन से जवाब पहुंचा दीजिए। समय अब जो है ना, अपनी गति से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, तो इतना ही समय हमारे पास है, जल्दी भेज दीजिए अपने मैसेजेस।

वैसे आजकल के मौसम की क्या बात की जाए, मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत ही प्यारा हो चुका है। थोड़ी बहुत जो गर्मी अब है ना उसको संजो के रख लीजिए, क्योंकि सर्दी जब आएगी ना इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, फिर आप कहेंगे कि सर्दी बहुत है, बहुत ही सर्दी, घर से निकला नहीं जा रहा, कोई काम नहीं हो रहा, ये चीज़ें नहीं हो रही। तो भाई मौसम बदलता रहेगा, मौसम अपने तरीके से आता रहेगा और हम सभी को उन्हीं मौसम का इंजॉय करना है और उनके साथ बने रहना है। और जिस तरीके का मौसम है उस तरीके का खान पान, उस तरीके के कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हम हर मौसम को बहुत ही बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा कम तो होता ही रहेगा, क्योंकि भाई मौसम है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में चलती रहेंगी। लेकिन सबसे ख़ास जो ये है, आज की अगर बॉस की कुर्सी मिल जाए तो फिर आप क्या करना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए जो आप बहुत टाइम से सोचते हैं, और आप सोचते हैं बस ये कुर्सी हमारे पास हो तो फिर हम चमत्कार कर देंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे, हम कुछ वैसा कर देंगे। ये मैसेज हमारे पास आया है कृष्ण कुमार मिश्र का, दिल्ली से। वो लिखते हैं कि एक दिन के लिए बॉस बन जाऊं तो मैं सबको यही कहूंगा कि जो भी करना है वो करो, किसी को भी छोटा नहीं समझूंगा। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात। और ये मैसेज हमारे पास आया है पुनिया का मैसेज है, और वो लिखती हैं कि अगर मैं एक दिन की बॉस बन गई तो मैं लंच ब्रेक 1 घंटे का कर दूंगी। वाह ये हुई ना बात, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं यकीनन कि मतलब कुछ लोगों के मैसेज इतने सटीक आए ना, उनको देखकर उनके मैसेज को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप जॉब करते हैं और आप कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ देख रहे हैं। अगर मैं बॉस बनी अपने ऑफिस की, नीलिमा का ये मैसेज आया है कि अगर मुझे एक दिन की कुर्सी मिली और मुझे बॉस बनी तो मैं कहूँगी कि मैरिड वीमेंस को 3 बजे ऑफिस से हर रोज़ छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि 3 बजे तक का ही उनको ऑफिस रहेगा। वाह क्या बात है, मतलब नए नए कानून से बनाने की सोच रखी है, बस वो कुर्सी आपके हक़ में आ जाए ना, तो आज ही आप बहुत चीज़ें ऐसी हैं अपने ऑफिस की बदल कर रख देंगे और अपने फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो करना चाहेंगे। फिलहाल ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए वेट कर, अगर अभी भी आप कुछ कहना चाहते हैं कि अगर अभी जो भी श्रोतागण हमारे साथ जस्ट जुड़े हैं, जस्ट जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप बता सकते हैं अगर आपको एक दिन के लिए अपने बॉस की कुर्सी मिल जाए, एक दिन के लिए आप बॉस बन जाए तो आप ऐसा क्या ऑर्डर देंगे जो आपको लगता है कि आप बने तो आप देंगे ही देंगे डेफिनेटली। बताइए और जुड़ जाइए हमारे साथ 9868107070।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी हाँ, अब समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ये है कि मेरठ से श्वेता वत्स का मैसेज है, एक दिन बॉस बनने के बाद मैं सबको एक दिन की सैलरी दूंगी आगे तक, जिससे उन्हें सब याद रखें। और ये है मैसेज कि भाई अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है तो अब तो समापन की ओर है प्रोग्राम। और ये है कि ये हमने मैसेज पढ़ लिया, आप दोबारा बार बार मैसेज हमको कर रहे हैं, तो चलिए समय भी समाप्त हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा क्या रहेगी हमारे साथ। 7 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट लिपिका के साथ, उसके बाद 8 बजे रहूंगी मैं आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर, और प्रोग्रामों का गीतों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा खास आपके लिए। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, क्योंकि बेहतरीन गीतों का साथ यहीं पर है। तो मुक्ति मिलेगी आपसे कब? जी हाँ, मैं मिलूंगी आपसे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, ढेर सारी मस्ती होने वाली है, बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला होने वाला है, और आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते कि प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग होंगे। तो गैस करना भी क्यों है भाई, हम तो एंजॉय करने आ रहे हैं, अपनी थकान को दूर करने आ रहे हैं। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुंचाए कि एक दिन के लिए अगर आपको आपका बॉस बना दिया जाए, फिलहाल बॉस अगर बन जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि ब्रेक दीजिएगा और साथ में वेकेशन पर ले जाइए मुफ्त में फैमिली के साथ में, तो ये सबसे बेहतर होगा, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। फिलहाल ये आखिरी सॉन्ग खूबसूरत।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Welcome back. You are tuned to a program of requested music on FM Rainbow 102.6 MHz called You Asked For It with me, Lipika Das. The next track is also from the 1980s. This is by Susan Vega. The song's called Luca. It's a very haunting and a brilliant and deeply brave pop folk classic. And the song handles a very heavy subject of abuse with quiet and devastating dignity. Let's listen to Suzanne Vega's Luca, and the song is requested by another very dedicated listener from Delhi, and this is Rollin.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: Welcome back. Just 5 more minutes to go, and here is the second last requested track. A message from Colonel Ankur Mehta in Chandigarh. Dear Lipi Kama, my family joins me in conveying greetings to the entire team, FM Rainbow, in chanting a choice of songs, enjoying their daily broadcast in Chandigarh. Thank you very much, Mr. Colonel Ankur Mehta in Chandigarh. We also have a lot of more messages. Sudha Parthath is also tuned into the program, and so is Animesh in Bangalore. Soumin Ghosh is tuned in all the way from Panchkula, and for Sumit in Noida, for all of you, here's a song by Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. With the song, I'm also taking leave for now. My name is Lipika, and I will return at 10 p.m. for more music. Stay tuned to FM Rainbow. Thanks for joining me.

0: नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल ने कहा कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविराम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशोर बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां संस्थापना दिवस मना रहा है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की 125वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में लोक जीवन का पर्व नुखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व धन की नई फसल आने पर मनाया जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जा रहा है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, फिलहाल आप ये बताइए कि आपको क्या हुआ है। थकान से इतना ज्यादा चूर हो गए कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस कुर्सी पर बैठ गए हैं आराम से, या फिर बेड पर लेट गए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, या तो ठंडा सा पानी पी लीजिए, या फिर चाय की चुस्की लीजिए, या घर में जो गर्मा गर्म खाना इस समय बन रहा है उसकी खुशबू से अपने आप को तरसताजा महसूस कीजिए। अगर ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है तो 102.6 को थोड़ा सा ट्यून इन कर लीजिए और वॉल्यूम अप कर लीजिए, और फिर देखिए आप कैसे झूम जाते हैं, कैसे एकदम रिफ्रेशिंग हो जाते हैं। कभी कभी मूड है ना, बहुत सारी चीज़ों से उथल पुथल सा हो जाता है, घूम सा जाता है, कंफ्यूज सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, लेकिन अगर उसके अलावा हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो वो जो खुशबू है, जो आबो हवा है, वो इतनी खूबसूरत है, इस पर ध्यान जाता ही नहीं है। देखिए मैं तो जब घर में एंटर करती हूँ, चाहे मूड कुछ भी चल रहा हो, चाहे मेट्रो में ट्रैफिक हो चुका हो, मेट्रो रुक रुक के चल रही हो, मेट्रो भर चुकी हो, या फिर रिक्शे वाले सही से रिक्शा नहीं चला रहे हैं, या फिर सवारी भरने में इतना टाइम लगा रहे हैं कि ऑलरेडी हम लेट होते जा रहे हैं, लेकिन जब घर में हम एंट्री करते हैं तो खाने की खुशबू से जो मन एकदम चेंज होता है ना, जो दिल एकदम चेंज होता है ना, बस लगता है झट से कपड़े चेंज किए जाए और बस थाली लगाकर बैठ जाओ, ढेर सारा खाना खा ले, बाकी सब कुछ दुनिया में होता रहेगा सो होता रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्जित दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, तो मस्ती है तो सब कुछ है और म्यूजिक के बिना सब कुछ अधूरा है, ये मान लीजिए। कुछ भी परेशानी है, कुछ भी अच्छी सिचुएशन है ना, दोनों में म्यूजिक ही काम आता है, आपका कोई अपना नहीं रह जाता है। वही बड़ी गहरी बात मैंने यहाँ पे कह दी है, चलिए कोई बात नहीं, गहरी और बड़ी और छोटी बातें यहाँ चलती रहेंगी आपके लिए, आपके साथ, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है आपका साथ। अगर वो यहाँ पे है तो हर प्रोग्राम, हर चीज, हर घंटा, हर मिनट, हर पल बेहद खूबसूरत होता जाए।

मुझे भी पता है आपका दिल आ गया है 102.6 FM रेनबो पर, क्योंकि आपका दिल सिर्फ और सिर्फ यहीं से जुड़ा है, क्योंकि हम भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं दिल से दिल तक। म्यूजिकली ऑर्ड्स पहुंचते रहेंगे आप तक, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आपके साथ बने हुए हैं। कहां पर? न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, सभी प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहेंगे और आप अपने आप को एकदम तंदुरुस्त ताज़ा महसूस करते रहेंगे। ना केवल सुनने से, थोड़ा सा काम आपको भी करना होगा, आपको पता है ना आपको क्या करना है। जी हाँ, या तो वॉक करनी है या फिर जाकर एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करवानी है, कहते हैं कुछ अपने शरीर के लिए होमवर्क करना है। भाई ऑफिस के होमवर्क, स्कूल के होमवर्क, बिजनेस के होमवर्क, बहुत सारी चीज़ें हम होमवर्क जो है ना वो दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। वर्क वर्क वर्क, होमवर्क होमवर्क, सब करते रहते हैं, लेकिन अपने शरीर का भी जो होमवर्क है वो कभी किया? वाह क्या वर्ड निकाला है ना, शरीर का होमवर्क। जी हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कार्य को नहीं किया ना तो फिर सारे कार्य मान लीजिए कि अधूरे हैं।

0: ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और भी बेहतरीन गीतों के साथ में, साथ ही साथ बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला भी जारी रहेगा खास आपके लिए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: मंगल भवन मंगल हारी,
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: Thank you.

यहाँ फिलहाल आप तो अपनी नींद नहीं उड़ाना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि प्यारी सी सुकून सी नींद आपको आए और आप अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकें। वही जो कल की चिंता हमें लगी रहती है, आज क्या हो रहा है उसकी तो हमें परवाह ही नहीं है कि आज तो लगभग बीत ही चुका है और अब क्या होने वाला है उसकी भी परवाह नहीं है, मतलब जीना ही नहीं चाहते हैं, बस क्या कल क्या करना है, कल कल कल के लिए बहुत सारी प्लानिंग है और सोच भी लेते हैं, लेकिन उसकी आपाधापी में आज को हम नहीं जी पाते हैं। तो वही आज को जीना बेहद ज़रूरी है और अगर कल खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए अपने आप को खूबसूरत बनाना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अच्छा खाना है और अच्छी सोच रखनी है और एक्सरसाइज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। चाहे आप योग कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं वो कर सकते हैं और आजकल तो इतनी रील्स कह लीजिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, या फिर ढेरों इंस्टीट्यूट ऐसे ही हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। होते ना कई बार अपने आप से मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन कहीं पर अगर हम पैसा खर्च कर देते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल करता है कि चलिए सब कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप पहल स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगर जिम जाना आपको पसंद नहीं है तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी, बहुत सारे पार्क ऐसे जो ऐसी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, कहीं फुटबॉल चलता है, कहीं वॉलीबॉल चलता है, कहीं बैट बॉल चलता है, बहुत सारे गेम भी इस तरीके के आयोजित किए जाते हैं कि सभी लोग उसमें इकट्ठा हो सकें। जैसे कि साइकिलिंग की जाती है, रनिंग होती है, वॉक होती है, ये सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव देखिए। वही आपको बेहतरीन बनाना है, इसी वादे के साथ आपके साथ रहती हूँ प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में, क्योंकि म्यूज़िक ही मस्ती चलती रहेगी और जब सॉन्ग्स आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ कर आते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि बस अगर इन पे थिरकना है, इन पे डांस करना है ना, तो दिल खोल कर करना है। वैसे ही अपनी ज़िंदगी को भी एकदम दिल खोल कर जीना है, ना कोई परेशानी ना कोई टेंशन, क्योंकि आप हैं अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी के साथ प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में।

मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ चलिए और कुछ तो कर लीजिए, या तो आप चलायमान बन जाएंगे या आप किसी ना किसी एक्सरसाइज में चले जाएंगे। वैसे आप इतना मत सोचिए कि मैं इतना भी ज़्यादा कोई एक्सरसाइज या योग जिम मेडिटेशन नहीं करती हूँ, लेकिन करती हूँ लेकिन उतना नहीं करती। बस मेरा जिम मेडिटेशन योग अगर कहीं छूटता है तो वो सिर्फ कुछ चीज़ों से छूटता है। जैसे कि आज हम ऑफिस में बात कर रहे थे कि मुक्ति तुम एक बार में कितने समोसे खा सकती हो, तो मैंने कहा कि मैं 3 समोसे अच्छे से खा सकती हूँ, उसके साथ मैं जलेबी भी खा सकती हूँ और काले वाले गुलाब जामुन गर्मा गर्म भी खा सकती हूँ। बस ये होता है ना, किसी न किसी की कमज़ोरी होती है ना। अब आप सोचिए, मेरा जहाँ जिम है उसके जस्ट सामने एक स्वीट शॉप की दुकान है, वहाँ पे वो गर्मा गर्म समोसे भी बनाता है, जलेबी भी बनाता है जिस समय मेरा जिम जाने का समय होता है। तो मेरे सर ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर तुझे वेट कम करना है तो तुझे बस समोसा छोड़ना होगा, उसके अलावा तू कुछ भी खा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और देखिए, कहीं ना कहीं कुर्बानी कुछ करनी पड़ती है। आप भी सोचिए थोड़ी सी कुर्बानी और उसके बाद आप जी भरकर खा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बढ़िया से करनी है। तो देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता अगर आपने सोच लिया है तो। फिर क्या कुछ करना है, दिल थोड़ा सा धुक धुक करेगा, थोड़ा सा धक धक करेगा, लेकिन फिर सब कुछ शांत होता जाएगा और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी की तरह।

वादा किया था आपसे बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रहेगा और वो सब मैंने आपके लिए कर दिया है और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी जाने का नहीं, बिल्कुल भी बने रहना है आपको आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और अब से कुछ ही देर यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ और उसके बाद 10 बजे का समय रहेगा म्यूजिक मिक्स का लिपिका दास के साथ और फिर रंगे महफिल सज जाएगी आपके लिए विनीता बेदी के साथ में। तो फिलहाल मैं कहूंगी आपसे इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए, आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर बहुत ही जल्द। फिलहाल प्रोग्राम आपको कैसा लगा और क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या अच्छा था, वो सब आप बता सकते हैं प्रोग्राम बिंदास बोल में। फिलहाल अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, पूरा सुनिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

नमस्कार, लीजिए पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने कहा है कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी देश में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आपकी याद आती रही,
2: आपकी याद आती रही। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही में स्वागत है आपका। मैं हूं विनीता बेदी। रात की इस नरम सी खामोशी में कुछ यादें अपने आप चली आती हैं, बिना दस्तक दिए, बिना कोई सवाल किए।

कभी किसी चेहरे की तरह, कभी किसी आवाज की तरह, और कभी बस एक एहसास बनकर। दोस्तों, कुछ रिश्ते हमारे साथ नहीं होते, फिर भी हमारी जिंदगी में कहीं बहुत गहरे में मौजूद रहते हैं। और शायद इसीलिए कुछ गीत सुनते हुए लगता है जैसे कोई बहुत अपना, बहुत दूर होकर भी हमारे पास बैठा हो। उसी पास बैठने, उन्हीं यादों और उन्हीं नज़दीकियों के नाम आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।

आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत लंबा होता है। एक मुलाकात, एक मुस्कान और फिर जाने कैसी अनकही सी डोर बंध जाती है। फिर उस अपने से दूर रहकर सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है, तुम ठीक तो हो ना? दूरी चाहे कितनी भी हो, मन बार बार उसी पर लौटता है। और प्रेम भी शायद यही है कि अपनी खुशी से पहले किसी और की खैरियत याद आए। उस अनदेखे रिश्ते की बात करता है ये अगला गीत, बहुत दिल को छू लेने वाला।

कुछ रिश्तों में ना दोस्तों बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। चुप्पियाँ भी बोलती हैं, नज़रें भी, और कभी कभी कोई गीत भी। यूं भी जब खामोशी बोलती है तो धड़कनें खुद बखुद वो बातें सुन ही लेती हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना, जिस पल को हम दोनों हाथों से थाम लेना चाहते हैं वही सबसे तेज गुजर जाता है। और फिर बचता क्या है? बचती हैं कुछ तस्वीरें, कुछ यादें, और मन में ठहरा हुआ कोई मौसम और एक धीमी सी सरगोशी किसी की अनकही बातों की। शायद वही अनकही बातें जो दिल को बार बार चूर कर देती हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही और आज आपकी याद आती रही में आप हैं विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी का इतना गहरा हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना सब कुछ होते हुए भी बहुत कम लगता है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। इंसान कितना ही घुट के जी ले पर आंखों को समझाना कभी भी आसान नहीं होता। दिल जैसे याद करे, आंखें उसी की राह को तकती रहती हैं, और फिर इंतजार वो तो कभी खत्म ही नहीं होता ना, बस उसका अंदाज बदल जाता है, कभी आंसुओं के साथ और कभी ठंडी आहों के साथ। लेकिन ये इंतजार बढ़ता चला जाता है, हमेशा आंखों के रास्ते बहता चला जाता है। यही इंतजार जो कभी कभी एक आस बनकर सीने में अटक जाता है। आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।

आपकी याद आती रही। ये मन भी कितना अजीब है ना दोस्तों, भीड़ में भी कभी कभी बिल्कुल अकेला हो जाता है, और उस अकेलेपन में भी किसी की याद अगर आ जाए तो एक साथ दर्द भी देती है और उस अकेलेपन से सुकून भी।

0: आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफ़र का आखिरी पड़ाव। रात बीतती रहती है मगर कुछ इंतज़ार रात के साथ ख़त्म नहीं होते। कुछ यादें सुबह तक हमारे साथ चलती हैं, शायद इसीलिए कुछ लोग हमारे पास ना होकर भी हमारी रातों में, हमारी यादों में, हमारी हसरतों में मौजूद रहते हैं। मैं हूं विनीता बेदी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रात में, जब कोई पुरानी याद चुपके से कहे आपकी याद आती रही।
1: मुझे तो आदत पड़ गई कि जैसा क्लासिकल कोई राग को बेस करके गाना बनाना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कभी कभी फोक भी डाल देते हैं इसके अंदर। और इसका आप जैसे चलन बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स बोलिए, वो एक अपने आप एक राग बन जाता है फिल्म में।

क्या होता है फिल्म में आपको इंस्पायर करते रहता है हर सिचुएशन। ये गाना में एक्चुअली देखा जाए तो मध्यम से शुरू करेंगे तो थोड़ी में हो जाएगा और साथ अगर लेंगे तो फिर ललित जैसा हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई जैसे सुबह का वक्त हो वहाँ पे रात का भी राग बन सकता है। ये गाना बन गया बहुत अच्छा लग गया, लेकिन उसके बाद जब चार चांद तब लग गया जब पर्दे पे देखा कि रात का वक्त है, कोठे में एक औरत गाना गाए।

0: Herbie Hancock's classic Cantaloupe Island, given a wonderful interpretation by brilliant jazz guitarist Pat Metheny. Relaxed, rhythmic, and effortlessly cool, isn't it? All right, guys, let's now take a very tiny break, followed by a timeless rock favorite by U2.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर ही शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं रंग महफिल। रात के इस पहर में शहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं, दिन भर की भागती हुई जिंदगी जैसे कहीं पीछे छूट जाती है और तब मन अपने पास लौटता है। कुछ पुराने ख्याल, कुछ अधूरी बातें, कुछ चेहरे और कुछ ऐसी यादें जिन्हें हम दिन भर व्यस्त रहकर भले ही भुला दें, लेकिन रात उन्हें फिर हमारे सामने ले आती है। आइए आज के रंगे महफिल में कुछ ऐसी गजलों के साथ बैठते हैं जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी, और उन रिश्तों की खामोशी भी जिन्हें शब्द शायद पूरी तरह कह नहीं पाए। सिर्फ भावना, सिर्फ दिल से निकली एक हुक, एक आवाज और आंखों की कशिश।

कभी कभी किसी से मिलने की इच्छा इतनी सरल होती है कि उसके लिए कोई बहाना भी नहीं चाहिए। बस मन करता है कि वो आए, कुछ देर बैठे, कुछ कहे या फिर कुछ ना भी कहे और फिर चुपचाप चला जाए। कुछ मुलाकातें इसी तरह यादें बन जाती हैं। रिश्ते में कुछ रातें ऐसी भी होती हैं दोस्तों, जब चांदनी तो बहुत होती है लेकिन मन के किसी कोने में अंधेरा फिर भी बना रहता है। शायद इसीलिए कि उजाला बाहर नहीं भीतर चाहिए होता है, और बस यही उजाला शायद जिंदगी को रोशन रखता है।

कभी कोई एक रंग नहीं होता दोस्तों। कभी मिलना अच्छा लगता है तो कभी बिछड़ना बहुत कुछ सिखा जाता है। कभी किसी की मौजूदगी दिल को अपार खुशी देती है और कभी किसी की याद आंखें नम कर जाती है। और शायद यही तो जिंदगी की खूबसूरती है ना, हर रंग को महसूस करना। रंगे महफिल में आप आज हैं विनीता बेदी के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
9: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
8: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
9: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: आया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रंगे महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ रिश्तों की, कुछ यादों की, कुछ शिकायतों की, तो कुछ तन्हाइयों की। रिश्तों में शिकायतें भी होती हैं और समझौते भी। कभी हम किसी अपने को खोते

एक गुनाहगार नहीं होता, या फिर कई मर्तबा कहानी ही गुनाह बन जाती है ना। रंगी महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ।

रंग महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, हम सफर होना सिर्फ साथ चलना नहीं है, हम सफर तो वो है जो रास्ते की थकान को भी समझे, जो हमारी खामोशी को पढ़ सके और जिसके साथ चुप रहना भी बातचीत जैसा लगे। ऐसे साथ की कीमत वही जानता है जिसने कभी अकेले सफर किया हो।

0: और अब आज की महफिल की आखिरी गजल। दिल है तो धड़कता भी है, टूटता भी है, संभलता भी है, इसी दिल में शिकायतें भी रहती हैं और माफ कर देने की जगह भी। शायद इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि सब कुछ सह लेने के बाद भी दिल में मोहब्बत बची रहती है, उसी तरह जैसे कुछ गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनका असर देर तक हमारे साथ रहता है, जैसे कोई धीमी सी आवाज, जैसे किसी पुराने खत की खुशबू या जैसे किसी अपने की याद। चलिए वक्त है रुखसती का है। मैं हूँ विनीता बेदी, आपसे विदा लेती हूँ इसी ख्याल के साथ, गजल के साथ कि कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं दिल में रहकर उम्र भर साथ चलते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई महफिल में कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक विदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं, वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

एफएम रेनबो। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ताओं संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में यह 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं का निर्धारित मासिक प्रोत्साहन 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, और आइए सुनते हैं हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ शीतल गुप्ता।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 08 शो। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2000 रुपये

से अधिक के लेन देन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में ये 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं का निर्धारित मासिक प्रोत्साहन 3,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल और अब वक्त है कार्यक्रम सुहानी रात का। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

श्रोता, आप सुन रहे हैं AR FM रेनबो और कार्यक्रम है सुहानी रात। और देखिए, इस वक्त हमें एक मैसेज आया है और ये मैसेज हमें भेजा है रविंदर लखेरा जी। ये सिरसा हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने फरमाइश की है खलनायक मूवी से

तो श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ एक और श्रोता जो है वो जुड़ चुके हैं, एम राजकुमार त्रिची से। इन्होंने हमें मैसेज किया है कि हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और एक और श्रोता जो अंकित, ये हमें मैसेज कर रहे हैं, ये अमरोहा से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम आपके कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अगला अब गीत आपको सुनवाते हैं हम उदित नारायण की आवाज़ में।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: हाय
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों के मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में यह 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शीतल गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए

हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दो अलग अलग निमंत्रण भेजे थे, इनमें से एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2000 से अधिक के लेन देन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीतमय स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का विरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की घोषणा की है और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:03 और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, मिडनाइट मेलोडीज। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब वक्त हो चला है समाचारों का। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 2 अलग अलग निमंत्रण भेजे थे। इनमें से एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जनभागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीतमय स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का विरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शीतल और वक्त हो चला है कार्यक्रम सारे गामा का।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी।

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सारेगामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीत में स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और श्रोताओं वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।